शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः।
1: आइए दोस्तों, दिव्य दर्शन के इस बहुत ही पवित्र और प्यारे से प्रोग्राम में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। जैसा मैंने कई बार कहा, दिव्य दर्शन यानी कि अपने आप को पहचानने का ये प्रोग्राम है, जहां पर हम एक दूसरे से संबंधित बिल्कुल साधारण मनुष्यों से, साधारण इंसानों से बातचीत करते हैं कि ये विषय दरअसल आम जनता के लिए क्या है। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है वो है प्रवीण कुलकर्णी साहब। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि वो क्या समझते हैं, क्या हमें बताते हैं, कैसी वो प्रैक्टिसेस करते हैं, कैसा उनका जीवन है। तो मैं प्रवीण जी से आभार प्रकट करते हुए, उनका स्वागत करते हुए उनसे गुजारिश करूंगा कि प्रवीण जी अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, हमारे सुनने वालों को बातचीत कीजिए उनसे कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं।
2: सबसे पहले नमस्कार और अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहूंगा समीर जी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने सर्वसाधारण विचार आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो पेशे से मैं एक फ्रीलांस ट्रांसलेटर हूं
1: जी,
2: और कंटेंट राइटिंग करता हूं, माने वेब कंटेंट जो होता है वो
1: जी जी जी।
2: मैं कर्नाटका से हूं और बस अपनी 60 साल की जिंदगी में जो भी सीखा है वो आपके सामने बातचीत के थ्रू शेयर करना चाहूंगा बस।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, जाहिर से बात है, जब व्यक्ति, जैसे प्रवीण जी ने बताया कि वो कंटेंट राइटर हैं, तो उनके पास शब्द हैं, उन्होंने वाक्यों को बनाना सीखा है, वो जानते हैं शब्दों का मतलब क्या होता है, उनमें कितनी गरिमा होती है। मैं पूरी पूरी उम्मीद करता हूं कि आज का ये विषय, आज की ये बातचीत बहुत समझदारी से भरपूर होगी, हमें कुछ तयशुदा तौर पर सीखने को मिलने वाला है। तो प्रवीण जी, चलिए बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल साधारण इंसान के लिए बात करते हुए करें, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, यानी कि हिंदी में कहें तो आध्यात्म, इसको आप कैसे समझाएंगे, क्या मतलब है इसका?
2: आध्यात्म, आद्य माने सबसे पहला, आत्मा माने अपनी आत्मा, आध्यात्म माने जो अपने आत्मा से शुरू हो, आत्मा माने खुद, जो मुझे मुझे जो चीज पहले रखती है, समथिंग दैट कीप्स मी इन फ्रंट, समथिंग दैट ओरिएंट्स मी, दैट इज अध्यात्म। वैसे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करूं तो मेरी इंट्रोडक्शन हुई स्पिरिचुअलिटी में मेरे स्कूल के सालों में।
1: ओह, दैट्स नाइस।
2: अध्यात्म मेरे ख्याल से ये होता है कि खुद की आत्मा को समझें
1: जी,
2: खुद की आत्मा को समझें और वो जो निर्माता है उसके साथ अपना संबंध जोड़ें और वो संबंध समझें। मेरे लिए ये अध्यात्म है।
1: ओके, बिल्कुल ही सरल भाषा में, बिल्कुल ही आसान तरीके से प्रवीण जी ने जैसे हमें बताया है दोस्तों, उसको लिटरली ही लीजिए एक बार को, क्योंकि उससे समझने में, आगे की बातचीत को समझने में जरा आसानी हो जाएगी। सुंदर। अगर आज के जो

0: कुछ भी आध्यात्मिक आपको दिखाई देती है या सिर्फ बस मजे कर रही है, या फिर यूं कह लीजिए फैशन है तो उसको फॉलो करते चलो, कुछ ऐसा हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप?
1: अध्यात्म तो पहले से ही है, माने अनादि और अनंत है
0: जी।
1: अध्यात्म का, तो ना ही अध्यात्म की तो ना ही शुरुआत हुई ना ही उसका अंत होगा। जैसे मैंने कहा, आई वॉज इंट्रोड्यूस टू स्पिरिचुअलिटी ड्यूरिंग माई स्कूल डेज।
0: जी
1: आई स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम, एक जेसुइट स्कूल में पढ़ा मैं, और उन दिनों हमारे लिए एक माने पूरे दिन में एक क्लास वो होता था जिसे कहा जाता था मॉरल साइंस।
0: मॉरल साइंस
1: बीइंग अ जेसुइट स्कूल, जो कैथोलिक बच्चे थे वो बच्चे अपना रिलीजन पढ़ते थे, और हम लोग जो नॉन कैथोलिक थे हमें मॉरल साइंस का क्लास लिया जाता था। तो उस मॉरल साइंस के क्लास में आई वॉज इंट्रोड्यूस टू द टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स ऑफ यू नो स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। और ऐसे चलते चलते जब मैं कॉलेज के मेरे दिनों में मेरी इंट्रोडक्शन हुई स्वामी चिन्मयानंद के राइटिंग्स पे
0: जी,
1: तो ये तो मैंने बहुत सालों से है ही
0: जी।
1: और अध्यात्म ना, जैसे मैंने कहा, अध्यात्म अनादि है, अनंत है। आज की पहले की पीढ़ी में था, और हमारे पहले जो पीढ़ी थी उनको भी यही लगता था कि हमारे जैसे हमारे बच्चे नहीं हैं
0: जी।
1: लेकिन लेकिन आज हमें, हम में से भी कई लोगों को ऐसा लगता हो कि हमारे बच्चे हमारे जैसे है नहीं। लेकिन मैं यहां ये कहूंगा कि उतना वक्त भी तो मिलना चाहिए अगली पीढ़ी को कि पिछली पीढ़ी को पढ़ें, उनका काम समझें, जानें। उतना अगर हम उन्हें वक्त दें तो शायद वो पढ़ भी लें। सो लाइक आई सेड, स्पिरिचुअलिटी इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, द इनर सेल्फ एंड द हायर सेल्फ, विच कुड बी इंटरप्रेटेड एज द माइंड, द सोल एंड द यूनिवर्स।
0: राइट।
1: लेकिन इन चीजों को समझने के लिए हमारी जो पीढ़ी है, अगली पीढ़ी, उन्हें उतना वक्त भी देना चाहिए, उन्हें उतना अवेयरनेस और उतना एक्सपोजर भी देना चाहिए, जहां से ये बच्चे कुछ समझ सकें।
0: जी।
1: वो समझते नहीं है, इसका थोड़ा दोष तो हम पर भी आता है कि हमने उन्हें समझाया नहीं। ये होता है कि समझाने वाला और समझने वाला जब दोनों मोर और लेस एक ही प्लेन पे आ जाए तब चीजें आसान हो जाती हैं। स्पिरिचुअलिटी इज द जर्नी इनवर्ड, टू इंट्रोस्पेक्ट, टू अंडरस्टैंड, टू रियलाइज, टू मैनिफेस्ट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन एंड द अल्ट्रा ह्यूमन द सुपर ह्यूमन, यू नो द कॉस्मिक एनर्जी। स्पिरिचुअलिटी टू मी इज द कंपास ऑफ द माइंड एंड द सोल। लेकिन ये बात समझने के लिए बच्चों में कुछ समझ तो आनी चाहिए। दे नीड टू हैव और दे नीड टू डेवलप अ सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग।
0: करेक्ट। सो द पॉइंट इज, जी,
1: वो अचार इमीडिएटली मैच्योर नहीं होता है। अचार में इतने सारे मसाले डाले जाते हैं। जब मसाले उस चीज में, नींबू हो या आम हो, अचार में मिलजुल गुल जाने के बाद तब जाके अचार तैयार होता है। लाइकवाइज वी ऑल्सो नीड टू इन्वेस्ट इन अवर नेक्स्ट जनरेशन। We need to introspect for ourselves, and we need to introspect. We need to give them also time to introspect. Introspection पे एक छोटी सी कविता मुझे

0: याद आती है,
1: ओह प्लीज,
0: डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की
1: जी।
0: और ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का इसके साथ संबंध है या नहीं है मुझे पता नहीं है, बट माय स्पिरिचुअलिटी ऑफ लाइफ हैज बीन दिस, माय अप्रोच टू लाइफ हैज बीन दिस, कि हरवंश राय जी की वो कविता की कविता का शीर्षक है जीवन की आपाथापी में।
1: जी
0: कहते हैं कि जीवन की आपाथापी में कब वक्त मिला, जीवन की आपाथापी में कब वक्त मिला, कहीं कुछ देर बैठ ये सोच सकूं, जो भी किया कहा माना, उसमें क्या बुरा भला। तो ये समझ पहले, ये सोच हमने करनी है पहले, बाद में बच्चों को सिखानी है। है बच्चों को आज के पीढ़ी जो है काफी सृजनशील हैं, काफी हमसे ज्यादा होशियार हैं वो। दे एब्सॉर्ब थिंग्स मच फास्टर देन वी डिड। बहुत बहुत प्रगत पीढ़ी है आजकल की
1: जी।
0: व्हाई आई से दिस इज बिकॉज यू नो इन स्पाइट ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस, चेंजेस इन लाइफस्टाइल, वेस्टर्नाइज्ड थिंकिंग और द सो कॉल्ड मॉडर्न थिंकिंग, स्पिरिचुअलिटी ऑब्वियसली इज फॉलोड बाय टुडेज यूथ। हाँ, अब बात यह हो सकती है कि हमारे पीढ़ी में बहुत ज्यादा लोग धार्मिक थे या आध्यात्मिक थे, अध्यात्म ज्यादा प्रचलित था हमारे दिनों, लेकिन आज कम है। लेकिन आज कम है माने आज की पीढ़ी अभी 20-25 की है, उन्हें 30-35 तक आने दीजिए, वो ज्यादा प्रगल्भ हो जाएंगे, ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे
1: जी।
0: तो उसके लिए उन्हें वक्त भी देना चाहिए।
1: बिल्कुल ठीक बात है।
0: See, there are instances of people from foreign countries adopting our culture and our lifestyle, whereas our own youth are seen to be taken over by vices, by vulgarity, violence, and an overdose of so-called modernization.
1: Correct.
0: This said, the earlier we come back to our roots, the better it will be for our youth and our future generations. ये बात तो है, माने हम अपने पुराने आध्यात्मिक पद्धति के तरफ हमने आना जरूरी तो है, लेकिन इसमें हम जल्दबाजी भी नहीं कर सकते
1: जी।
0: उसके लिए वक्त भी देना चाहिए। एंड यहाँ एक लोहार की नहीं चलेगी सर, 100 सोनार के ही लगेंगे। क्योंकि हम हमारे हाथ में लोहा नहीं है सर, हमारे हाथ में सोना है। सो सोने के लिए सोनार के 100 ही लगेंगे। ये है।
1: यू आर वेरी ट्रू। बड़ी खूबसूरत तरीके से बात बताई आपने। कई बार मैं मानता हूं प्रवीण जी, और आपने इस बात को कहा तो उसी बात को मैं मान रहा हूं कि हम ये जनरेशन गैप की कहानी हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। हमारे से जो ऊपर थे वो हमारे बारे में ऐसा सोचते थे, हम अपने नीचे वालों के बारे में ऐसा सोचते हैं फिर। लेकिन आपने कहा भी कि उनको थोड़ा वक्त दीजिए, जैसे हमको दिया गया वैसे उनको भी दीजिए, तो दे विल कम अप विद समथिंग मोर ब्यूटिफुल देन वी डिड।
0: हमें वक्त दिया गया या नहीं ये अलग बात है सर। अगर हमें वक्त ना भी दिया गया हो तो भी हमने कहीं वो चेन ब्रेक करना है कि जो शक्ति हमारे साथ बरती गई वही शक्ति हमने आगे बरतनी नहीं है।
1: करेक्ट।
0: वी हैव टू मेक अ चेंज समवेयर, वी हैव टू प्ले द गेम चेंजर्स। इफ आवर पेरेंट्स वर लेस अंडरस्टैंडिंग, वी हैव टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन।
1: करेक्ट।
0: कहीं ना कहीं हमने ये जनरेशन गैप कम करना है,
1: ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, नो डाउट।
0: बिल्कुल,
1: बहुत सुंदर। तो दोस्तों बस 2 मिनट का एक पॉज लेते हैं, विचार करते हैं प्रवीण जी ने क्या कहा, और इस बीच में इस प्यारे से भजन को सुन लेते हैं और फिर वापस आते हैं प्रवीण जी के पास।

0: बहुत सुंदर भजन। प्रवीण जी, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा, बात अभी यंग जनरेशन की ही हो रही थी, आध्यात्म की, उनकी समझ की, तो जाहिर से बात है आज की यंग जनरेशन और यूं देखा जाए तो आज का पूरा जमाना सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डूबा हुआ है। अब
1: बिल्कुल
0: एक बहुत ही साधारण सा सवाल उठ के बाहर आता है कि साहब, सोशल मीडिया का आध्यात्म पर क्या असर पड़ता है, या उल्टा कह लें, आध्यात्म को सोशल मीडिया यूज कैसे करता है, इसके बारे में क्या विचार है आपका?
1: सोशल मीडिया आध्यात्म को यूज कैसे करता है? I may be called negative or I may be called a little blunt, but social media आजकल लेटी को यूज कर रहा है, वो एक तरह से मार्केटिंग के तौर पे यूज कर रहा है। ये मेरा हम्बल ओपिनियन है, ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अध्यात्म में कोई खर्चा नहीं होता। अध्यात्म has no pre-qualifications. लेकिन आजकल अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो इस कोर्स के उतने फीस भरिए, उस कोर्स के इतने फीस भरिए, ऑनलाइन कोर्स है, आपके वक्त पे हो जाएगा, ये सारी चीजें देख ऑल्दो आई मिट साउंड सिनिकल एंड नेगेटिव, सोशल मीडिया यू नो लाइक अ पर्टिकुलर जॉनर ऑफ फिल्म्स, जहां वायलेंस दिखाया जाता है, जहां गलत चीजें दिखाई जाती हैं, जहां वल्गैरिटी दिखाई जाती है, दीज थिंग्स हैव बीन डिस्ट्रैक्टिंग एंड डिस्टर्बिंग द यंग माइंड्स एंड इन टर्न अफेक्टिंग एंड करप्टिंग अवर सोशल फाइबर। बट इन स्पाइट ऑफ सच डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्टर्बेंसेस, टू स्टे ट्रू टू वंस कॉन्शियंस इज द टेस्ट ऑफ वंस स्पिरिचुअलिटी। ऑन अ वेरी होपफुल नोट, I could say, like all other aspects of our life, is like a matchbox. Sir, देखिए, एक माचिस की जो तीली होती है, उस माचिस की तीली से आप दिया जला सकते हैं भगवान के सामने
0: जी।
1: जब अंधेरा हो तो आप मोमबत्ती जला सकते हैं। बुरा काम करना हो तो आप किसी का घर भी जला सकते हैं। उससे बुरा काम करना हो
0: जी,
1: तो किसी पे पेट्रोल डाल के उसे जला भी
0: जला सकते हैं।
1: सर, ये रिसोर्स हमारे पास है। इस रिसोर्स का हम कैसे उपयोग करते हैं, ये हमारी सोच, हमारे माइंडसेट पर निर्भर है।
0: बहुत सुंदर। तो किस तरीके से सोशल मीडिया आध्यात्म को यूज कर रही है, या आध्यात्म में सोशल मीडिया का हम पदार्पण या कंट्रीब्यूशन या कोलैबोरेशन देखते हैं, वो चीज प्रवीण जी ने अभी हमें बताई। अमेजिंगली ब्यूटीफुल। इस बात को भी विचार करने की बहुत जबरदस्त आवश्यकता है। देखिए, सोशल मीडिया मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, एक दुधारी तलवार है, अगर हमें चलाना ना आया तो वो हमें काट देगी, और अगर उसको सही इस्तेमाल करना आया तो वो हमारा फायदा भी कर सकती है। जैसे बताया प्रवीण जी ने बड़ी खूबसूरती से कि किस किस तरीके से यूज करते हैं, किसी का नुकसान पहुंचाना चाहें तो हम अंधेरे में उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जला भी सकते हैं। तो देर आर थिंग्स विच वी नीड टू डिसाइड वॉट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू। बहुत सुंदर। चलिए, विचार करिए, दो मिनट का पॉज लीजिए, विचार कीजिए, हम वापस आते हैं इस भजन के बाद।

0: बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हुए चलिए, सोशल मीडिया की बात हो गई, यूथ की बात हो गई, अब सोशल स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्म की हमारे पर असर क्या होता है, इफेक्ट क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, प्रवीण जी थोड़ी सी उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या आध्यात्म हमारा जो तनाव है, एंग्जाइटी है, परेशानियां हैं और हम हमेशा बहुत ज्यादा सोचने में डूबे रहते हैं, अगर इसको साधारण भाषा में और कहें, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग, डूबे ही हैं हम उसमें, इसमें आध्यात्म हमारी मदद कैसे करता है, इससे आजाद होने में, मेरा कहने का मतलब है।
1: ये बात तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, लेकिन क्योंकि जिन जिन तीन चीजों का आपने जिक्र किया है, ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी एंड वन मोर थिंग, तो आई कैन रिलेट टू ऑल दोस थ्री सिचुएशंस इन व्हिच यू सेड यस, स्पिरिचुअलिटी डज हेल्प इन मैनेजिंग एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग एंड यू नो आवर डिफिकल्ट माइंडसेट।
0: जी,
1: इंसान जब समुद्र में गिर जाता है तो हाथ पैर तो चलाने ही पड़ते हैं, हाथ पैर चलाते वक्त जो धीरज होता है, वो धीरज होता है, होती है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज द फोर्स दैट पुशेस अस टू कीप गोइंग,
0: राइट।
1: स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग दैट हेल्प्स अस टू स्टे ग्राउंडेड एंड अवे फ्रॉम दी, हम क्या कहते हैं, उन छह चीजों को, षड्रिपु ना, कभी कभी एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, ऐसी चीजें ना हो और इंसान अगर कम कष्टों से सक्सेस मिल जाए तो एक तरह का अहम आ जाता है। तो वैसे हालात में स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स अस टू स्टे ग्राउंडेड एंड अवे फ्रॉम दी सिक्स पर्सनल एनिमीज। पर्सनल एनिमीज आई से बिकॉज षड्रिपु, षड माने छे, रिपु माने एनिमीज। षड्रिपु होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर।
0: जी,
1: अगर स्पिरिचुअलिटी से हम लेवल हेडेड रहें, अगर हम अपने मन पे काबू कर पाए तो हम इन षड्रिपु से दूर रह सकते हैं। मेरे पिताजी ने कुछ किया हो, उसके बाद मैंने कुछ किया हो, तो हम ये भूल जाते हैं कि मेरे पिताजी ने भी कुछ किया था, मुझे सिर्फ ये याद रहता है कि मैंने क्या किया है।
0: जी,
1: आज मेरे पास अगर 11-12 हैं तो मैं ये भूल जाता हूं कि मेरे पिताजी ने 10 किए हैं और मैंने सिर्फ एक या दो उसमें
0: ऐड किए,
1: बढ़ाए।
0: जी,
1: वो जो 10 का बेस है, आई बिल्ट अप ओनली 1 or 2 ऑन दैट बेस। So this level-headed thinking, this humility comes from spiritual thinking, spiritual way of life.
0: जी,
1: spiritual माने ये नहीं कि आप सिर्फ नाक पकड़ के meditation करें, ध्यान धारणा करें, प्राणायाम करें। Spirituality also, like I said, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कहीं कुछ देर बैठ ये सोच सकूं, जो भी किया कहा माना, उसमें क्या बुरा भला। अगर ये बात हम अपने ध्यान में रखें तो हम लेवल हेडेड आसानी से रह सकते हैं।
0: जी,
1: इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज, डिस्ट्रेस एंड एडवर्सिटी, इट इज दिस स्पिरिचुअल थिंकिंग दैट कीप्स अस गोइंग विथ रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स फुलफिलिंग अवर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स टुवर्ड्स एवरीवन। Those who are weak at heart and mind,
0: जी,
1: ऐसा नहीं कि हर कोई ऐसा करता है, लेकिन जिनका spiritual way of life, spiritual way of thinking जिनकी नहीं होती या कम होती है, they tend to harm themselves either through vices, बुरी आदतें हों, substance abuse हों, या फिर extreme steps जैसे suicide हों।
0: जी,
1: स्पिरिचुअलिटी सर्व्स एज अ लाइट हाउस ड्यूरिंग द स्टॉर्म इन आवर लाइव्स। as we undertake the journey through the ocean of life.
0: Wow, beautiful.
1: That is where spirituality helps us mm-hmm. in overcoming stress, anxiety, overthinking, and from my own example, depression also.
0: Okay.
1: Yes.
0: Right. Amazing. बड़ी गहरी बात बताई है साहब प्रवीण जी ने. इस बारे में बिल्कुल बहुत प्यार से विचार करने की आवश्यकता है. प्रवीण जी के इस बातचीत को मुझे लगता है बार बार सुनने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है. देन ओनली हम किसी एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि किस तरीके से हम अपने स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को, ओवरथिंकिंग को भी ओवरकम कर सकते हैं. बहुत सुंदर. लीजिए ना एक प्यारा सा भजन पेश करता हूं, फिर हाजिर होता हूं प्रवीण जी के पास.

0: प्रवीण जी, सिंपल बात अभी तक हुई जो थोड़ी सी गंभीरता से भरी हुई थी, हम लोगों को बहुत विचार करने की आवश्यकता है। वैसे भी दिव्य दर्शन का ये प्रोग्राम गंभीर ही है, हमारी जिंदगी के बारे में है। इट्स नॉट फन, इट्स सीरियस। तो अगर हम आगे बढ़े तो दो शब्द हैं जिनको बहुत आसानी से आपस में मिक्स कर दिया जाता है, हम कंफ्यूज भी रहते हैं। एक है अध्यात्म और दूसरा है धर्म, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। तो प्रवीण जी, आपको क्या लगता है, ये एक ही चीजें हैं या अलग अलग हैं?
1: अब देखिए, सिक्का तो एक ही है
0: जी,
1: लेकिन सिक्के के दो बाजू हो सकते हैं। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन आर टू सेपरेट कंसेप्ट्स।
0: ओके,
1: ऑल्दो देयर मे बी अ फ्यू सिमिलैरिटीज सच एज शोइंग द पाथ ऑफ राइचियसनेस, धर्म हो या स्पिरिचुअलिटी हो,

0: आपको सही रास्ते पे ही चलाएंगे। ना धर्म कहेगा ना स्पिरिचुअलिटी कहेगी कि आप कोई बुरा काम करो। देन दे बोथ स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन टीच यू बिलीफ एंड फेथ इन द हायर सेल्फ और द सुप्रीम सुपर ह्यूमन एंटिटी। बट देन इन स्पाइट ऑफ दीज सिमिलैरिटीज बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड राइटियसनेस एंड रिलीजन
1: जी,
0: द डिफरेंस विल डेफिनेटली आउट नंबर द सिमिलैरिटीज।
1: अच्छा सर,
0: बिकॉज मैंने मैंने कहीं पढ़ा था कि स्पिरिचुअलिटी बिगिंस वेयर रिलीजन एंड्स।
1: जी क्या बात है
0: जी, जहां जहां रिलीजन खत्म हो, जहां धर्म
1: रुकता हो,
0: जहां धर्म थम जाता है, वहां से अध्यात्म शुरू हो जाता है। आई से दिस बिकॉज रिलीजन बाइंड्स अ पर्सन टू अ पर्टिकुलर गॉड, टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स, टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रिलीजियस परफॉर्मेंसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस, कस्टम्स एटसेट्रा टू बी परफॉर्म थ्रू अ पर्सन, थ्रू अ पर्सन लाइफ जर्नी। धर्म कोई भी हो, हर धर्म के अपने अपने मायने होते हैं, अपने अपने फ्रेमवर्क होते हैं, अपने अपने ढांचे होते हैं
1: जी।
0: और उन उस धर्म के मार्ग पर उस ढांचे के अंदर ही आपको चलना पड़ता है।
1: ओके,
0: यू आर नॉट यूजुअली अलाउड टू ब्रेक द फ्रेमवर्क, यू कैन नॉट बी अ गेम चेंजर। वेयर एज स्पिरिचुअलिटी लिबरेट्स यू फ्रॉम ऑल बॉन्डेजेस एंड बाइंडिंग्स। देर आर नो डूज एंड डोंट्स इन स्पिरिचुअलिटी। ओनली थिंग इज योर एक्शंस हैव टू कन्फॉर्म टू योर कॉन्शंस। धर्म में क्या करना है यह आपको वेदों में, आपने बाकी के धर्म ग्रंथों में बताया गया है। अध्यात्म में क्या करना है यह कहीं लिखा हुआ नहीं है। आप जिनके जिनके बारे में पढ़े हो, आप जिनको पढ़े हो, उनके विचार अगर आपको सही लगते हैं तो आप उनके दिखाए मार्ग पर चलिए, बस इतना सा है। सी, रिलीजन इंट्रोड्यूसेस यू टू द कंसेप्ट ऑफ गॉड। इन कॉन्ट्रास्ट spirituality takes you on an inward journey and introduces you to the subconscious you, to the conscious you, which is your soul, your atma and your inner self.
1: Ji,
0: religion is an outside affair.
1: Mm-hmm.
0: Whereas spirituality is a total inside affair.
1: Oh, all right.
0: Aba आप एक 100 लोगों का एक एक ऑड ग्रुप ले लें तो पीपल कैन बी फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, येट दे मे शेयर द सेम कंसेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी।
1: ओह यस,
0: दैट इज व्हाई आई फील रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी आर टू वेरी सेपरेट थिंग्स।
1: So, it's not that difficult at all. ये बात को समझना बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों, कि अध्यात्म और धर्म दोनों एक चीज, अलग अलग चीजें हैं। और जैसा बहुत ही सिंपल भाषा में प्रवीण जी ने समझाया कि जहां पर धर्म एक तरीके से पूरा होता है, वहां से अध्यात्म शुरू होता है। बहुत खूबसूरत। ओके, विचार कीजिए इसी विचार पर एक बार और गहराई से, और तब तक लीजिए इस भजन को आनंद लीजिए। हम वापस आते हैं।

0: बहुत सुंदर प्रवीण जी, आपने अभी तक हमें बताया अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, आज की जेनरेशन के बारे में जो कि तयशुदा तौर पर स्मार्ट है, ज्यादा रिसेप्टिव है, सिर्फ उसको सिखाने की आवश्यकता है जो कि हमारा धर्म है, हमको करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल मीडिया का यूसेज के बारे में आपने बताया, फिर हमें बताया अध्यात्म के फायदे के बारे में, किस तरह से हम स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग से आज़ादी पा सकते हैं, और डिफरेंस रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बीच। अब आपकी ये सारी की सारी बातें सुनकर कोई व्यक्ति अगर प्रभावित हो जाए और उसे लगे कि चलिए छोड़िए, धर्म तो चलिए जो हो गया, मतलब मैं कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन में नहीं जाऊं लेकिन आध्यात्मिक हो जाऊं, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को, स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3, बिल्कुल सिंपल बेबी स्टेप्स, क्या करे कि वो आध्यात्म की तरफ चल पड़े?
1: वेल, आपने मेरे ख्याल से आप ही ने जवाब दे दिया।
0: मैंने समराइज किया सर जो आपने कहा।
1: जी जी बिल्कुल नहीं, आपने दो लब्जों में उत्तर दे दिया अपने प्रश्न का।
0: जी,
1: आपने कहा बेबी स्टेप्स, तो दैट इज एवरीथिंग। देखिए, जब हम चलना शुरू करते हैं, जब हम बच्चे होते हैं
0: जी,
1: एकदम से थोड़े ही ना चलते हैं,
0: लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं।
1: पता नहीं कितने सौ बार हम लड़खड़ाए, कितने बार हम गिरे, कितने बार हमने चोटें खाई, सर पे चोट खाई, पांव पे चोट खाई, कहीं और चोट खाया, और किसी ना किसी का हाथ पकड़ के हमने चलना सीखा
0: जी।
1: लाइकवाइज फिजिकली चलने की बात हुई, फिर हम स्कूल गए, पहले दिन हमें थोड़े ना कुछ आता था
0: जी,
1: वहां भी हमने वही बेबी स्टेप्स लिए। कॉलेज में हो तो स्कूल के जो बंदिशें थी, स्कूल के जो बंधन थे, वो कॉलेज में एकदम हम लोग फ्री हो गए। तो 11th में पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता था, लेकिन जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, कोई और हुए, आईएएस आईपीएस हो गए
0: जी,
1: तो पढ़ाई पूरी कंसंट्रेशन के साथ की हमने। दैट कंसंट्रेशन आल्सो वी लर्न्ड थ्रू बेबी स्टेप्स ओनली।
0: करेक्ट,
1: दैट इज व्हाई आई सेड कि आपने अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे दिया है। लाइकवाइज इवन इन स्पिरिचुअलिटी, कोई 10 ग्रंथ एक दिन में पढ़े ना तो ये मुमकिन है, ना ही ऐसा करना चाहिए, ना ही उसे कुछ हासिल होगा। तो स्पिरिचुअलिटी में भी बेबी स्टेप्स ही लेने हैं। स्पिरिचुअलिटी मेक्स द जर्नी इजियर।
0: प्रवीण जी, बहुत ही प्यारा संदेश, बहुत ही प्यारा व्याख्यान हमें ठीक से समझने के लिए आपने समझाया, बहुत बहुत आभार है आपका। थैंक यू सो वेरी मच यो इस प्रोग्राम में आकर आपने हमारे साथ।
1: प्लेजर ऑलवेज।
0: थैंक यू सर, प्लीज टेक केयर।
1: थैंक यू।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। एक छोटा सा चर्च और एक बड़ा सपना। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई कहानी में। आज की ये कहानी थोड़ी अलग है, ना ये फिल्मी है ना ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ है, लेकिन फिर भी ये कहानी इतनी पावरफुल है कि सुनते ही दिल से सीधा आसमान की तरफ देखने का मन करेगा। 1962, एक अलग इंडिया। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1962, एक नया देश अभी अभी आजादी के बाद खुद को संभाल रहा है। लोगों के पास बेसिक चीजें तक नहीं है, कई जगह लोग दो वक्त की रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और ऐसे वक्त में अगर कोई बोले हमें स्पेस प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, तो आप क्या कहोगे? सीरियसली क्या कहोगे अभी इस टाइम में? लेकिन कुछ लोग अलग सोचते हैं। दोस्तों, हर जमाने में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे वो हो सकती है। और ऐसे ही एक इंसान एक दिन चलते हुए पहुंचते हैं केरला के एक छोटे से फिशिंग विलेज में, जिसका नाम है थुम्बा। एक शांत जगह समुन्दर के पास, और वहां एक छोटा सा चर्च। एक अजीब सी रिक्वेस्ट। वो इंसान अंदर जाता है और बिशप से मिलता है, और फिर वो एक ऐसी रिक्वेस्ट करता है जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी। वो कहता है, क्या मैं ये चर्च बोरो कर सकता हूँ? बिशप थोड़े हैरान होते हैं। प्रेयर के लिए चाइल्ड? वो कहता है, नहीं, रॉकेट्स के लिए। सोचिए, चर्च और रॉकेट्स एक साथ। जी हाँ, एक साथ। और फिर हुआ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब नॉर्मली क्या होता है? इम्पॉसिबल, राइट? इम्पॉसिबल साउंड करता है। ये जगह प्रेयर के लिए है, ये काम कहीं और करो। लेकिन उस दिन एक अलग डिसीजन लिया गया। बिशप ने कहा, ठीक है, 100 दिन, और सब बदल गया। सिर्फ 100 दिन के अंदर फिशरमैन को रिस्पेक्टफुली रिलोकेट किया गया। उनके लिए नया चर्च बना और पुराना चर्च बदल गया इंडिया के पहले स्पेस रिसर्च लैब में। प्रेयर हॉल लैब बन गया, प्रीस्ट का घर डिजाइन ऑफिस बन गया, और चर्च के पास का कैटल शेड रॉकेट वर्कशॉप बन गया। दोस्तों, ये सिर्फ जगह का चेंज नहीं था, ये सोच का चेंज था। रिसोर्सेस कम लेकिन जुनून अनलिमिटेड। ना कोई एडवांस्ड मशीन्स, ना कोई बड़े लैब्स, ना कोई फैंसी टेक्नोलॉजी। रॉकेट्स के पार्ट्स साइकिल पर ले जाए जाते थे। हाँ, साइकिल पर। आज के टाइम में जहां हम डिलीवरी 10 मिनट लेट हो जाए तो कंप्लेंट्स करते हैं, वहां रॉकेट पार्ट्स साइकिल पर ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। सोच के देखिए दोस्तों, एक यंग साइंटिस्ट की कहानी। एक यंग साइंटिस्ट रात भर काम करता था। एक बार उसने पूरी रात एक नोज कोन को हाथ से फाइल किया ताकि प्ले लोड परफेक्टली फिट हो सके। सोचिए, मशीन नहीं, हाथ से। और क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं थे।
लेकिन जुनून फुल ऑन था। 21 नवंबर 1963, एक हिस्टोरिक दिन। और फिर वो दिन आया, 21 नवंबर 1963 का दिन, पहली बार इंडिया की जमीन से एक रॉकेट उड़ा, नाइक अपाचे रॉकेट। आसमान को चीरते हुए वो ऊपर गया और ग्लोइंग सोडियम क्लाउड से रिलीज हुआ, जो पूरे केरला के आसमान में दिखा। लोग रुक गए, ऊपर देखने लगे, हैरान, खुश और प्राउड। असेंबली भी रुक गई, केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में 20 मिनट के लिए प्रोसीडिंग्स रुक गई। क्यों? ताकि सब बाहर जाकर हिस्ट्री देख सके। और ये सब कहां से शुरू हुआ? एक छोटे से चर्च से, एक फिशिंग विलेज से और एक आइडिया से। एक इंसान जो सपना देख रहा था इस सब के पीछे, जिसने गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि एक गरीब देश भी सपने देख सकता है, एक नया देश भी स्पेस प्रोग्राम डिजर्व करता है। और हम सिर्फ जमीन तक लिमिटेड नहीं है, हम आसमान में चमकेंगे। सपने का स्केल बड़ा था, वो सिर्फ रॉकेट्स नहीं बना रहा था, वो एक जनरेशन बना रहा था, एक माइंडसेट बना रहा था, एक बिलीफ क्रिएट कर रहा था कि हम कर सकते हैं। और फिर कहानी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वो इंसान अपने सपनों का फ्यूचर देख नहीं पाया, सिर्फ 52 इयर्स की एज में वो चला गया, लेकिन उसने जो बीज बोया ना दोस्तों, वो आज भी ग्रो कर रहा है। लेगेसी जो रुकती नहीं, उसने इंस्पायर किया यंग साइंटिस्ट्स को, ड्रीमर्स को, और उनमें से एक थे एपीजे अब्दुल कलाम। और आज भी जब इंडिया आसमान की तरफ देखता है, जब भी रॉकेट लॉन्च होता है, जब भी हम स्पेस मिशंस की बात करते हैं, तो कहानी वहीं से शुरू होती है, थुम्बा। आज की सबसे बड़ी बात, ये कहानी रॉकेट्स की नहीं है दोस्तों, ये कहानी है सोच की। अगर उस वक्त लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते तो ये सब कभी नहीं होता, लेकिन किसी ने पॉसिबिलिटी देखी। और एक सवाल आपके लिए छोड़ के जाती हूं, आपकी लाइफ में कोई चर्च है, कोई सिंपल

लेकिन सिर्फ देखना मत, उन्हें सच करने की हिम्मत भी रखना। क्योंकि याद रखिए, आसमान उनका होता है जो जमीन से उठने की हिम्मत रखते हैं। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: इंसान प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कहानी खरीदता है। इसलिए 20 रुपए की कॉफी घर पर नहीं पीता, 200 रुपए देकर कैफे में बोलता है। यहाँ वाइब अलग है भाई। What?

एक किताब और एक एहसान जो जिंदगी बदल गया। दोस्तों, आज की कहानी बहुत सिंपल है, ना इसमें कोई बड़ा ट्विस्ट है, ना कोई ड्रामेटिक बैकग्राउंड स्कोर है, लेकिन फिर भी ये कहानी दिल के बहुत करीब लगती है, क्योंकि ये कहानी है इंसानियत की, दया की और एक छोटी सी मदद की, जो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक महान शिक्षक और उनका असर। चलिए शुरू करते हैं एक इंसान से, ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियर, एक बड़े शिक्षक, एक वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के। लेकिन सिर्फ डेजिग्नेशन ही उनकी पहचान नहीं थी, उनकी असली पहचान थी उनका दिल। वो उन लोगों में से थे जो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, जिंदगियां बदलते थे। उन्होंने कई स्टूडेंट्स की फीस माफ की, स्कॉलरशिप्स दी, उन्हें सपोर्ट किया। जिन लोगों के पास सपने तो थे लेकिन रिसोर्सेज नहीं थे, दोस्तों ऐसे टीचर सिर्फ पढ़ाते नहीं, रास्ते बनाते हैं। एक किताब जो सिर्फ एक किताब नहीं थी। एक दिन एक 25 साल का लड़का अपने हाथ में एक किताब पकड़े खड़ा था, लेकिन ये कोई नॉर्मल किताब नहीं थी, ये एक अवार्ड थी, एक अचीवमेंट थी, एक सपने का सिंबल थी। इस किताब के फर्स्ट पेज पर मुदलियार सर का हैंड रिटन नोट था, एनकरेजमेंट, मोटिवेशन, बिलीफ। और उसके अंदर एक और चीज थी, एक मुरझा हुआ सा लेटर, एक लेटर जिसने सब बदल दिया। ये लेटर उसके गांव से आया था, उसके पिताजी का मैसेज था, जो एक बोटमैन थे। लेटर में लिखा था, बेटा कल रात बहुत बड़ी बाढ़ आई, हमारी नाव बह गई, घर भी टूट गया, मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर हो सके तो कुछ दिन के लिए घर आ जाओ। एक तरफ सपना, एक तरफ जिम्मेदारी, एक तरफ फ्यूचर, एक तरफ फैमिली। एक फैसला जो आसान नहीं था। सुबह के 7 बजे वो लड़का खड़ा है एक सेकेंड हैंड बुक शॉप के बाहर, मूर मार्केट में। उसके हाथ में वही किताब है, दिल में कंफ्यूजन है और दिमाग में एक ही थॉट है, घर जाना है। लेकिन प्रॉब्लम पैसे नहीं है, और सोल्यूशन किताब बेचनी पड़ेगी। सबसे मुश्किल मोमेंट। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां आपको अपनी सबसे प्रेशियस चीज छोड़नी पड़ती है। वो किताब सिर्फ पेपर नहीं था, वो उसकी मेहनत थी, उसकी पहचान थी, उसका सपना था। लेकिन फैमिली के लिए वो सब छोड़ने को रेडी था। शॉप खुलती है, ओनर आता है, लैंप जलाता है, छोटी सी प्रार्थना करता है और फिर काउंटर पर बैठता है। वो लड़का धीरे से आगे बढ़ता है और किताब उसके सामने रख देता है। एक छोटी सी बात जो सब बदल देती है। ओनर किताब देखता है, हैरान हो जाता है, ये तो बहुत रेयर बुक है, बहुत डिमांड है इसकी, कितने में बेचोगे? लड़का कहता है, 150 रुपये। ओनर कहता है, ये तो कम से कम 350 की है। फिर वो किताब को खोलता है और उसे वो हैंड रिटन नोट दिखता है। वो पूछता है, ये अवार्ड मिला था तुम्हें, फिर बेच क्यों रहे हो? सच सामने आता है। लड़का अपनी कहानी बताता है, फ्लड, घर, पिताजी, जिम्मेदारियां। ओनर चुप हो जाता है, किताब बंद करता है और एक ड्रॉअर खोलता है, उसमें से पैसे निकालता है और काउंटर पे रखता है, 96 रुपीज, और वो लड़के की तरफ उसे स्लाइड कर देता है। और फिर आती है असली कहानी। ओनर कहता है, ये लो, इससे तुम्हारा ट्रैवल हो जाएगा, थोड़ा खाना भी मिल जाएगा, घर जाओ, अपने परिवार के पास रहो, ये मुश्किलें गुजर जाएंगी।
और फिर एक लाइन कहता है जो जिंदगी भर के लिए याद रह जाती है। लेकिन ये किताब, इसमें जो नॉलेज है, ये कभी रिप्लेस नहीं हो सकती। मैं इसे यहाँ सेफ रखूंगा, ये तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। जब वापस आओ ले जाना, बस 96 रुपये वापस कर देना। एक छोटी सी मदद पर एक बड़ा असर। ये सिर्फ पैसे देना नहीं था, ये ट्रस्ट था, ये एम्पथी थी और ये बिलीफ था कि ये लड़का वापस आएगा और अपना सपना पूरा करेगा। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। वो लड़का घर गया, अपने परिवार के साथ खड़ा रहा और फिर वापस आया, पैसे वापस किए और अपनी किताब ले गया। वो लड़का कौन था? वो लड़का बाद में बना APJ अब्दुल कलाम, एक साइंटिस्ट, एक टीचर, एक प्रेसिडेंट और सबसे इंपॉर्टेंट, एक इंसान। उन्होंने कई बार कहा कि उनकी लाइफ की हर अचीवमेंट ऐसे ही छोटे छोटे काइंडनेस पर बेस्ड है, ज्यादातर अननोन लोगों से मिली हुई काइंडनेस। आज का सवाल, जी हाँ, आपके साथ छोड़ के जा रही हूँ एक सवाल। हम सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने गोल्स, लेकिन कभी कभी किसी और के लिए 96 रुपये बन सकते हैं। किसी के लिए एक छोटी सी हेल्प, किसी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है। आपको नहीं पता दोस्तों कि आपकी एक काइंडनेस किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए अच्छा बनना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे एक प्यारी कहानी। अगली कहानी तक के लिए, अगर मौका मिले तो किसी के लिए 96 रुपीस बन जाना, क्योंकि याद रखना, जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी बस एक इंसान बनना काफी होता है। धन्यवाद।

चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय। ऑनलाइन शॉपिंग ने सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया है। फोटो में मॉडल को देख के लगता है ये जैकेट में तो मैं हीरो लगूंगा। पार्सल आता है, मैं पहनता हूँ, मिरर के सामने खड़ा होता हूँ और लगता है जैकेट नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशंस टाइट थी। फिर रिव्यू पढ़ता हूँ, एग्जैक्टली सेम एज शोन। तब समझ आता है प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं थी, मेरी एक्सपेक्टेशंस में थी।

देशभक्ति का जज्बा या जिम्मेदारी। स्वागत है आप सबका आज की एक और नई कहानी में। आज की ये कहानी थोड़ी दिल से है, थोड़ी सोचने वाली है और शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल भी है। लेकिन कभी कभी जो बातें हमें अनकंफर्टेबल करती हैं ना, वही हमें ग्रो भी करवाती हैं। तो चलिए आज एक सवाल से शुरू करते हैं। देशभक्ति क्या होती है? क्या देशभक्ति सिर्फ एक जज्बा है या एक जिम्मेदारी भी है? क्या देशभक्ति सिर्फ स्लोगन्स में होती है या वो छोटी छोटे एक्शंस में होती है? एक वक्त था दोस्तों, जब हमारी फिल्म्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती थी, वो सवाल पूछती थी और आपके साथ वो सवाल जीता था, आपके जहन में जिंदा रहता था और आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी खटखटाता था, ताकि आप उस पे एक्ट कर सकें, जिम्मेदार बन सकें। ऐसे सवाल जिनका जवाब देना आसान नहीं होता, ऐसे सवाल जिनको इग्नोर करना आसान होता है, लेकिन सामना करना जरूरी होता है। उस वक्त की देशभक्ति थोड़ी अलग थी, ना वो चिल्लाती थी ना वो प्रूफ करती थी, वो बस दिखाती थी और पूछती थी। एक फिल्म आई थी स्वदेश, लेकिन आज हम उस फिल्म की बात नहीं कर रहे, हम उस सोच की बात कर रहे हैं जो उस फिल्म के थ्रू आई थी। एक सिंपल कहानी, एक आदमी जो बाहर सेटल था, कंफर्टेबल लाइफ, एसी रूम, क्लीन रोड्स, सब कुछ परफेक्ट। फिर एक दिन वो अपने देश वापस आता है और जो वो देखता है वो सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं होता, वो सच्चाई होती है, रियलिटी होती है। गांव में बिजली नहीं, पानी की प्रॉब्लम, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, नौकरियां नहीं है, लोग अपनी बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और सबसे डेंजरस चीज, लोग इस सब के आदि हो चुके हैं। दोस्तों, कभी कभी प्रॉब्लम इतनी पुरानी हो जाती है कि वो प्रॉब्लम लगना भी बंद हो जाती है। यहीं से शुरुआत होती है किसी गलत चीज को न्यू नॉर्मल मान लेने की। एक मिरर जो हम सबको दिखाया गया। स्वदेश की कहानी किसी को ब्लेम नहीं करती, ना सिस्टम को ना लोगों को, ये बस एक मिरर रखती है और कहती है, देखो ये है रियलिटी और तुम बताओ तुम क्या करोगे। दोस्तों, ये सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन इसका आंसर बहुत पर्सनल है और बहुत जिम्मेदारी मांगता है। हम अक्सर देशभक्ति को एक रिएक्शन के रूप में देखते हैं, लेकिन शायद देशभक्ति एक एक्शन भी हो सकती है। नारे लगाना आसान है, लेकिन रोड पर कचरा न फेंकना बहुत मुश्किल है। दूसरे देश की बुराई करना आसान है, लेकिन अपने देश को अपने हाथों से बेटर बनाना एफर्ट लेता है। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े चेंजेस लाती हैं। सोचिए अगर एक गांव में बिजली नहीं है और सिर्फ कोई एक इंसान कंप्लेन ना करे बल्कि सोल्यूशन ढूंढे, तो क्या होगा? एक घर रोशन होगा, फिर दूसरा, फिर पूरा गांव। दोस्तों, चेंज कभी एक बार में नहीं आता, वो छोटी छोटी कोशिशों से ही आता है। और फिर आता है एक सबसे बड़ा सवाल। हम सब के पास अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या हम सबको ये सब करना चाहिए? नहीं, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं ना, अपने ही लेवल पे, अपनी ही कैपेसिटी में कुछ तो। क्योंकि देश सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं बनता, देश हम सब से मिलके बनता है। जो बातें हम सब इग्नोर कर देते हैं, जैसे रोजमर्रा के डिविजन्स, अनटचेबिलिटीज और क्या क्या नहीं, ये सब टॉपिक्स हम अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अनकंफर्टेबल हैं। लेकिन दोस्तों, जो बातें अनकंफर्टेबल होती हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर हम उन्हें इग्नोर करते रहेंगे तो वो खत्म नहीं होंगी, बस चुप हो जाएंगी। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो देशभक्ति क्या है? लव फॉर योर कंट्री
प्लस एंड माइंड यू अ वेरी बिग प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इट. सिर्फ प्यार काफी नहीं होता और सिर्फ कंप्लेंट उससे भी कुछ नहीं होता. दोनों के बीच एक्शन होना जरूरी है. हम सब बोलते हैं ये कंट्री कब सुधरेगी, लेकिन जब सिग्नल तोड़ते हैं तो बोलते हैं चलता है, मैं जल्दी में हूं, मुझे कहीं पहुंचना है वरना ये हो जाएगा, आसमान गिर जाएगा शायद. हम सब बोलते हैं सिस्टम खराब है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो बोलते हैं शॉर्टकट ले लेते हैं. दोस्तों, सिस्टम हम ही हैं. और आज की सबसे बड़ी बात, देशभक्ति लाउड नहीं होती, वो सटल होती है. वो स्लोगन्स में नहीं, चॉइसेस में होती है. रोज के छोटे डिसीजंस में, अपने बिहेवियर में, अपनी सोच में. एक सिंपल सवाल के साथ आपको छोड़ के जा रही हूं. आज रात जब आप अकेले हो ना, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूं. बड़ा आंसर जरूरी नहीं, लेकिन ऑनेस्ट आंसर जरूर दीजिएगा खुद को. दोस्तों, ये कहानी किसी एक फिल्म की नहीं है, ये एक सोच की कहानी है, एक अप्रोच की कहानी है, जहां देशभक्ति सिर्फ फीलिंग नहीं, एक जिम्मेदारी है. मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे आज की एक नई कहानी. अगली कहानी तक के लिए अपने देश से प्यार करिए, लेकिन सिर्फ फील मत करिए, थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट करिए. क्योंकि याद रखिए, देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाया जाता है. मेरा भारत महान. और नीचे छोटे शब्दों में बनाना पड़ेगा. नमस्कार.

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: सोशल मीडिया पे सबकी लाइफ बहुत सॉर्टेड चलती है। सुबह 6 बजे योगा, ग्रीन माचा, सनराइज की रील। मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे तो मेरी सिर्फ एक ही रील चल रही होती है, मेरी बेडशीट लपेटने की रील। लोग कहते हैं ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटिफुल लाइफ, मैं कहती हूँ ग्रेटफुल कि वाईफाई चल रहा है यार।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं अपनी खुद की पर्सनालिटी, अपनी खुद की प्रतिभा, अपने खुद के चरित्र और अपने खुद के बारे में। इस बात को आराम से समझिए दोस्तों, आप ऊपर वाले की बनाई हुई सबसे अच्छी क्रिएशन, रचना, कृति या कुछ भी कह लीजिए, प्रकृति में उपस्थित एक ऐसी चीज है जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई कंपटीशन नहीं, आप जैसा दूसरा कोई नहीं। मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, वो अच्छा है, वो बुरा है, मेरा कॉम्पिटिटर है, मेरा कुछ सामान ले जाएगा, मेरा हक छीन लेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। प्रकृति के नियम है, जो आपके लिए आया है वो कोई दूसरा ले ही नहीं जा सकता। होड़ में मत लगिए। सबसे जरूरी बात यह है कि अपने आप में धैर्यवान रहते हुए पूरी तरह से सुनिश्चित रखिए, करिए कि आप वही हैं जो ऊपर वाले ने आपको बना के भेजा है और सब कुछ आपके लिए तय है। अपना काम करते चलिए। आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते चलिए, आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते चलिए। यूं तो गीता में कहा है श्री कृष्ण ने कि काम करता चल, फल की इच्छा मत कर, लेकिन दोस्तों हम इंसान हैं, बिना फल की इच्छा किए हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो जितना मैंने समझा उसके हिसाब से मैं सुझाव दे देता हूं। आपको जमे तो रखिए, नहीं जमे तो जाने दीजिए। वो ये कि काम करते तो जरूर चलिए, फल भी अपने दिमाग में रखिए, लेकिन दूसरों के फल को देखकर तड़पिए मत। गौर कीजिए, हम इंसानों की यही तकलीफ है। किसी के पास कोई बेहतर गाड़ी, कोई बेहतर मकान, कोई बेहतर सुविधाएं, कोई बेहतर कपड़े और न जाने क्या क्या, हम अपने आप को बस उनसे कंपेयर ही करते चलते जाते हैं। जो हमें मिला, जो हमारे पास है, जो हमें मिलने वाला है, जो ऊपर वाले ने, कुदरत ने हमारे लिए तय कर रखा है, हम उसके बारे में जरा सा भी न तो शुक्रिया कहते और न ही खुश होते हैं। गौर कीजिए ना आप, क्या सचमुच आपके पास जो मोबाइल है उसके लिए आप शुक्रिया अदा करते हैं? क्या सचमुच आपके पास जो बाइक है, जो कार है, जो मकान है, जो परिवार है, उसके लिए आप शुक्रिया अदा करते हैं? जब आपने उनके लिए शुक्रिया अदा किया ही नहीं तो और कैसे मांगेंगे आप? ये तो कुछ ऐसा है ना कि आपको चाय दी गई पीने के लिए, मजे लेने के लिए, रिफ्रेश हो जाने के लिए, और आप कहते हैं नहीं साहब, मुझे तो कॉफी चाहिए। अरे, जो आया सामने वो ऊपर वाले ने आपके पास भेजा है, प्रकृति ने, कुदरत ने आपके पास भेजा है, पहले उसे स्वीकार कर उसका शुक्रिया अदा तो कहिए। मेरा बहुत तहे दिल से मानना है, जिंदगी में और बहुत सारा कुछ पाने के लिए आसान सा एक तरीका है शुक्रिया कहते चलना। जो भी है हमारे पास, शुक्रिया कहते चलिए। इससे कुदरत को एक संदेश मिलता है कि इस इंसान को और चाहिए, तभी तो जो कुछ भी मैंने इसे दिया वो उसका शुक्रिया अदा कर रहा है, तो इसे और दो। जिस भी वक्त आपने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो कुदरत को यह संदेश मिलता है कि ठीक है, इस इंसान को और नहीं चाहिए, ये चीज, ये सुविधा या ये समृद्धि मैं किसी और को दे देती हूं। इसलिए जो कुछ भी आए शुक्रिया कहिए और की उम्मीद में खुश रहिए दोस्तों।

चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं हरमन हेस से, जो एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ये मानव सभ्यता की नाकामी ही तो है कि ना तो मन की आग शांत होती है और ना ही युद्ध की। रह रह कर धधक उठती है और इंसान अपने ज्ञान की तमाम महान पवित्र पोथियों को किनारे रखकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। युद्ध के दिन दिलो दिमाग से मिटाई नहीं मिटते। उन दिनों भी दुनिया पहले विश्व युद्ध पर उतरी हुई थी। माहौल ऐसा बन गया था कि लगता था किसी ना किसी दिन सबको लहूलुहान होना पड़ेगा। वो दुबले पतले से भावपूर्ण नैन नक्श वाले लेखक भी युद्ध की आंच से तप रहे थे। जब पास ही आग लगी हो तो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा जाता। यूरोप के ज्यादातर कवि लेखक भी देश के लिए बंदूक थाम चुके थे। कुछ युवा लेखकों की तो जंगी मोर्चे पर जान भी जा चुकी थी। सभी पर युद्ध में जाकर दो दो हाथ करने का गजब का दबाव था। इस लेखक ने भी अपना नाम इंपीरियल सेना में बहाली के लिए लिखवा दिया, पर उस नाजुक मन रचनाकार को युद्ध लड़ने के अयोग्य पाया गया। उन्हें युद्ध बंदियों की देखभाल से जुड़ी सेवा में लगा दिया गया। ऐसा लगता था कि दुनिया अब लड़कर ही खत्म होगी। कवियों के बीच भी बहुत नफरत पसर गई थी। उन्हीं दिनों इस नफरत के खिलाफ इस लेखक ने एक लेख लिखा। उन्होंने सबको समझाया कि राष्ट्रवादी पागलपन और नफरत की खाई में ऐसे ना गिरें कि फिर निकलना ही मुमकिन ना हो। नफरत से बड़ा है प्यार, क्रोध से बड़ी है समझ और युद्ध से महान है शांति। दुर्भाग्य की बात है, कोई नहीं समझ पाया। लेखक बिरादरी दुश्मन हो गई और मीडिया शब्द बाण बरसाने लगा। बहुत धमकियां मिली। लेखक का घर से निकलना दूभर हो गया। उन्होंने अपने भारत प्रेमी मित्र लेखक रोमा रोला को पत्र लिखा, दोस्त, सियासी मामलों में प्यार आजमाने की मेरी कोशिशें नाकाम हो गई। निर्णायक पल था, दिल बिखर गया। अवसाद ने अपने भंवर में लपेट लिया। वैसे भी मुसीबतें खुदरा नहीं, थोक में आती हैं। पहाड़ की तरह साथ खड़े पिता जिंदगी की जंग हार गए। सगा पुत्र गंभीर बीमारियों में पड़ गया और पत्नी की मानसिक दशा अपनी दिशा भटक गई। फिर तो कुछ भी ना बचा, कौन संभालता। मन इतना डगमगाया कि दिमाग ने भी जवाब दे दिया और लेखक का शरीर एक मनोरोगी उपचार केंद्र में पहुंच गया। एक अच्छे लेखक के बारे में लगभग घोषणा ही हो गई कि उसे युद्ध की आंधी उड़ा ले गई है। पढ़ना लिखना तो छूट ही गया, पर सौभाग्य की बात थी कि उन्हें मनोचिकित्सकों ने बहुत सहारा दिया। जो अच्छी चीजें उनके अंदर सूख गई थी उन्हें फिर से हरा भरा करने की कोशिशें धीरे धीरे रंग लाने लगी। किसी भी तकलीफ या किसी एक हार पर दुनिया खत्म नहीं होती। सुख दुख भोग योग संयम त्याग उपवास की ओर मन बहने लगा। दुख के बादल भी ओझल होने लगे। धर्म चिंतन ने तमाम कष्टों और असुरक्षा बोध की गहरी गुफा से बाहर ला दिया। सनातन धर्म के साथ साथ गौतम बुद्ध बार बार याद आने लगे। लेखक महोदय कुछ वर्षों पहले जर्मनी से श्रीलंका तो आए थे, पर भारत आने से पहले बीमार पड़ गए थे और स्वदेश लौटना पड़ा था। पर भारत के पास से गुजरते हुए इस मोक्ष भूमि के प्रति प्रेम का बीज उनके मन में पहले से पड़ा हुआ था, वो अब अंकुरित हो गया। उन्होंने भारतीय दर्शन और बुद्ध को आधार बनाकर एक उपन्यास लिखा। नाम था सिद्धार्थ। भोग में भी योग तलाश करने की कला के साथ ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष का जो ज्ञान उन लेखक महोदय को मिला उसने कमाल कर दिया। साहित्य की दुनिया में जब सिद्धार्थ का आगमन हुआ तब विश्व युद्ध बीत चुका था और दुनिया विकास की नई लहर से पुलकित हो रही थी। दुनिया ने अपने एक महान लेखक हरमन हेस को भारतीयता से ओतप्रोत नई रोशनी में देखा। सिद्धार्थ लिखने के बाद हरमन न जाने कितनी वर्जनाओं और उलझनों से एक झटके में उबर गए।
तो फिर घर नहीं लौटे। उन्होंने पुराने जीवन के कारागार को तोड़ दिया और स्विट्जरलैंड में जा बसे। दुनिया को एक से बढ़कर एक कृतियों से संपन्न कर दिया और साहित्य के सर्वश्रेष्ठ सम्मान नोबेल से नवाजे गए। अकेले अमेरिका में इस उपन्यास की 50 लाख से ज्यादा प्रतियां बिकी हैं। गौर कीजिए, हरमन हेस 1877 से 1962 तक ये पुस्तक अपने भारत प्रेमी मित्र रोमा रोला के नाम समर्पित की थी इन्होंने। जी, वही रोमा रोला जिन्होंने कभी कहा था, यदि पृथ्वी पर कोई एक जगह है जहां जीवित मनुष्यों के सभी सपनों को शुरुआती दिनों से ही घर मिला हुआ है, जब मनुष्यों ने अस्तित्व का सपना देखना शुरू किया था, तो वो भारत है।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ।

आइए दोस्तों मिलते हैं कैडेंस लाइटनर से, जो एक समाज सेविका हैं। मां के मन को तो भगवान ही जानता है। मां की ममता का विस्तार वहां तक होता है जहां किसी की कोई पहुंच नहीं होती। मां ऐसे खतरों के प्रति भी सचेत होती है जो शायद कभी होते ही नहीं। बच्चे की हिचकी से जमीन पर पैर रखने तक और गोद से उतरकर कदम जमाते तक सब कुछ मां को महसूस होता है। पर यहां तो इस मां की एक बच्ची कुछ कदम नहीं, बल्कि इतनी दूर चली गई कि जहां से कोई नहीं लौटता। मन में दर्द के ज्वार उमड़ते हैं और मां बेचैन बावली हो उठती है। वो मां सोचती रहती है कि मेरी बच्ची का भला क्या दोष था। वो तो सड़क किनारे चुपचाप मस्ती से चली जा रही थी, पर पीछे से एक गाड़ी आई और 125 फीट दूर घसीटती ले गई। क्या ड्राइवर इतना बेहोश था कि सड़क से किनारे साइकिल पथ पर गाड़ी दौड़ाने लगा? लोगों ने बताया कि ड्राइवर नशे में था, नशे में ही सब तबाह कर दिया। वो मां भागती हांफती घर पहुंची। किसी ने बताया था कि हमने कैरी को खो दिया। मां ने विश्वास के साथ कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो यहीं कहीं पड़ोस में होगी, हम खोज लेंगे उसे। तब उस मां को दो टूक बताया गया कि सुनो, तुम्हारी बच्ची कैरी अब इस दुनिया में नहीं रही। एक कार वाले ने टक्कर मार दी और अब वो चल बसी, अब ना लौटेगी। ये सुनकर तो मानो अंधकार टूट पड़ा, बदहवासी छा गई। जब कुछ होश आया तो मन हुआ कि बच्ची के अंग अगर किसी के काम आ जाएं तो। तब डॉक्टर्स ने कहा, माफ कीजिएगा, दुर्घटना में एक भी अंग सलामत नहीं बचा। ये सुनकर तो दिल और बैठ गया। तब दुख और रोष की गठरी बनी हुई इस मां ने कहा, उस ड्राइवर को मत छोड़ना जिसकी वजह से मेरे आंगन ने अपनी प्यारी चिड़िया को हमेशा के लिए खो दिया, जिसने मेरे चहचहाते हुए संसार को हाहाकार में बदल दिया, उस अपराधी को मत छोड़ना। मन तो नहीं मानता था। वो मां अक्सर उस जगह से गुजरती थी जहां बच्ची के साथ दुर्घटना हुई थी और उस दिन वहां पुलिस वाले जांच में जुटे थे। सवाल से भरी हुई वो मां वहीं रुक गई तो पता चला कि दोषी ड्राइवर खुलेआम घूम रहा है, जमानत हो गई उसकी, उसके जेल जाने की भी कोई संभावना नहीं थी। और तो और यह भी पता चला कि वो शराबी आदतन दुर्घटनाएं करता ही रहता है। ये दुर्घटना तो उसके खिलाफ चौथा मामला है और वो कुछ ही दिनों पहले जमानत पर छूट गया। वो इस बार अपने घर में 3 दिन तक शराब पीने के बाद बस कार से तफरी करने निकला था। उसने एक मासूम की जान ले ली, लेकिन उसका एक बाल भी बाका नहीं हुआ। पुलिस वालों ने ही बताया कि क्या करें, कानून ही ऐसा है कि सड़क दुर्घटना में सजा नहीं होती। नशे में धुत गाड़ी चलाना आम बात है, मासूम लोग रोज ही सड़कों पर मारे जाते हैं। ये सब जानकर उस मां का दिल सिर्फ रोया नहीं, गुस्से से उफन पड़ा। ठान लिया कि ऐसे अपराधियों को छोड़ना नहीं है। ये रोज न जाने कितनी माओं की गोद सूनी करते हैं, ये सड़क पर ही नहीं बल्कि सभ्य समाज में भी चलने लायक नहीं है। ऐसे लोगों को इनके ठिकाने पर पहुंचाना ही होगा। गुस्से और जुनून से लैस उस विरल मां कैडेंस लाइटनर पर अमेरिका की निगाह पड़ गई। लाइटनर ने देश में सबसे ज्यादा जुर्म होने वाले इन मामलों में व्यवस्था और सामाजिक स्वीकृति के प्रचलित रवैये को बदल देने के लिए बगावत का बिगुल बजा दिया। वो घर से निकल पड़ी और मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग अभियान की शुरुआत की। उन्होंने न केवल नशे में गाड़ी चलाने को सामाजिक रूप से अस्वीकार्य करने का आंदोलन किया, बल्कि पीड़ितों की अग्रणी वकील भी बन गईं। उन्होंने पीड़ितों और दुर्घटना में बाल बाल बचे लोगों को सिखाया कि अदालत में न्याय के लिए कैसे लड़ें। अमेरिका की संसद में भी उन्हें ध्यान से सुना गया।
दोषियों को कटघरे में खड़ा करने के लिए और सड़कों पर इंसानियत की बहाली के लिए अमेरिकी राज्यों और देश में 100 से ज्यादा कानून बनाए गए या बदल दिए गए। एक मां ने अनगिनत माओं के साथ मिलकर देश का मिजाज ही बदल डाला। उनका यह अभियान दूसरे देशों में भी जा फैला। अकेले अमेरिका में ही उन्हें 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान बचाने का श्रेय मिला। वहां शराबी हत्यारों को 4 साल से लेकर 30 साल तक की सजा होती है। इस मां की संस्था के पास 20 लाख से ज्यादा सदस्य हैं और करोड़ों रुपयों का कोष भी है। अद्भुत मां कैडेंस लाइटनर को 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली अमेरिकी नागरिकों में गिना जाता है। उन्हें राष्ट्र की अंतरात्मा और आंदोलन की जननी भी कहा जाता है।

0: दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपके झाबुआ की आवाज पर। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
2: देखो भैया, छोटी छोटी बातों में खुशियां तलाश लेता हूँ। साइकिल पर चलता हूँ फिर भी फोन को फ्लाइट मोड पर डालता हूँ।
3: हंसो मत, बोलो

मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: अजय मुक्केबाज MC मेरी कॉम।
2: भारत की MC मेरी कॉम ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने रोमानिया की सेलुटा कुटा को 7-1 से हराया। अरे भाई कमाल हो गया, लगातार चौथी बार गोल्ड मेडल, कुल 5 प्रतियोगिताओं में 4 बार गोल्ड मेडल।
3: वो छोटी सी बामुश्किल 5 फुट ऊंचाई वाली मैरी कॉम,
2: हाँ?
3: अरे उसने तो अभी सितंबर 2007 में प्यारे से जुड़वा बेटों को जन्म दिया था।
2: हाँ, हाँ, तो
3: 27 साल की उम्र में 1 साल के 2-2 बच्चों के साथ लगातार चौथी बार, अरे वो कमाल है, मैरी कॉम कमाल है।
4: नवंबर 2008 के आखिरी सप्ताह में जब पूरी दुनिया मुंबई में आतंकवादी हमलों को लेकर भारत के प्रति दुख और चिंता व्यक्त कर रही थी, तभी देश के सुदूर उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की एक छोटे से कद की छरहरी महिला ने दुनिया को भारत की ताकत की वानगी पेश कर दी।
1: 2 साल तक घर गृहस्थी में व्यस्त रहने के कारण, मुक्केबाजी से दूर रहने और महज 4 महीने के अभ्यास के बाद MC मैरी कॉम ने 46 किलो संवर्ग में एक बार फिर अपना लोहा मनवा लिया। चीन की मिंगबो सिटी में संपन्न प्रतियोगिता में मैरी कॉम के मुक्कों के आगे कोई नहीं टिक पाया।
4: आश्चर्य की बात है कि मैरी कॉम पहले 400 मीटर दौड़ और भाला फेंक में हिस्सा लेती थी और राज्य की चैंपियन भी थी। 1999 के बैंकॉक एशियाई खेलों में मणिपुर के डिंको सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था और उसी से प्रेरित होकर मैरी कॉम ने मुक्केबाजी सीखने का फैसला किया। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। मैरी कॉम मुक्केबाजी सीख रही है, ये बात जब पिता को मालूम हुई तो,
5: बेटा मैरी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना?
6: पापा, मैंने, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैंने क्या किया है?
5: अरे गांव वाले कह रहे थे कि तुम स्कूल में मुक्केबाजी सीख रही हो। ये मारा पीटी लड़कों के खेल है बेटा, तुम्हें उसमें कूदने की कोई जरूरत नहीं है।
6: पापा, मेरे प्यारे पापा, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि ये खेल लड़कों का और ये लड़कियों का है? पापू, ये कोई मारा पीटी थोड़ा ही है, खास तो अपना बचाव है, सब कुछ कायदे कानून में होता है।
5: अरे बेटा, कहीं किसी के घूंसे से तुम्हारी नाक टूट गई या तुम्हारा जबड़ा टूट गया तो फिर टूटी नाक वाली लड़की से कौन शादी करेगा?
6: पापा, आप चिंता ना करें, मैं जो करूंगी उससे आपका नाम ऊंचा ही होगा।
5: मेरा नाम ऊंचा होगा? क्या कह रही है ये?
1: और हुआ भी ऐसा ही। सन 2000 में ही पहली राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीत लिया। मैरी कॉम ने भाला फेंकने की अपनी ताकत और दौड़ने के अपने कौशल को अपनी मुक्केबाजी में शामिल कर लिया था।
4: ये खबर अखबारों में छपी, मैरी का फोटो भी था और घर वालों को एहसास होने लगा कि उनकी बेटी अपने परिवार, अपने गांव और अपने राज्य और देश का नाम रोशन करने की राह पर बढ़ रही है। मणिपुर, 7 बहनें कहलाने वाले राज्यों में से एक सुंदर पहाड़ी राज्य। राज्य की राजधानी से सटा चूड़ाचंद्रपुर जिले का गांव कंगहुई। एम टोनिया कॉम मेहनत मजदूरी करने वाले एक गरीब व्यक्ति। घर के चूल्हे चौके में दिन भर खटती उनकी पत्नी एम अका कॉम और उनकी बेटी मैरी कॉम। दौड़ती खेलती दुनिया की दिक्कतों के बावजूद
1: सामाजिक संस्थाएं बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करने के इरादे से उनके परिवारों को कुछ आर्थिक मदद दिया करती थी
4: और इसी प्रक्रिया में मेनगेट चंग नेजंग मैरी कॉम यानी MC मैरी कॉम पहले लोकतक क्रिश्चियन मॉडल स्कूल और फिर सेंट जेवियर मोरांग में पढ़ाई करने लगी।
1: पढ़ाई से अधिक वो खेल कूद में आगे रहती। आदिम जाति लई स्कूल इम्फाल में वो हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकी, लेकिन मैरी कॉम के खिलाड़ी मन ने हार नहीं मानी और ओपन स्कूल के माध्यम से वो परीक्षा में फिर बैठी।
4: गरीब परिवार होने के कारण मैरी कॉम को समुचित पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता था, लेकिन मैरी का खेलों के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने महज 14 दिनों में मुक्केबाजी के आधारभूत गुर सीख लिए थे। उनके मुक्के में इतना दम था कि कई सालों से बॉक्सिंग सीख रही लड़कियां उनके शुरुआती दिनों में भी उनके सामने नहीं टिक पाई। गरीबी ने उनके आत्मसम्मान को सदैव ताकत दी।
1: ये घटना उनके स्कूली दिनों की है जब वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कॉलोनी से बाहर निकली।

0: अरे लगता है कोई सवारी आ रही है।
1: रिक्शे वाले भैया, एम्बेसी चर्च चलोगे?
0: अरे आपको ले जाने से कौन मना कर सकता है। बैठिए बैठिए बैठिए।
1: पैसे कितने लोगे?
0: अरे मैडम जी जो देना हो दे देना, आपको तो रेट मालूम ही है ना।
1: ठीक है चलो फिर।
0: आओ मैडम जी एक बात बोलूं आपसे?
1: बोलो।
0: अगर आप लाल रंग पहने तो बहुत सुंदर लगेंगी।
1: सुनो ज्यादा बकबक नहीं, अपने काम से काम रखो।
0: बात क्या है कि आप तो दिखती ही ऐसी हैं, कुछ बोले बिना मन नहीं मानता ना।
1: जरा रोको रिक्शा। अरे रिक्शा रोको, सुन रहे हो तुम?
0: अरे गुस्सा क्यों हो रही है? रोकता हूँ रोकता हूँ।
1: आइंदा किसी लड़की को अकेला देखकर कमजोर मत समझ लेना, समझे?
2: विषम परिस्थितियों में संयम से काम लेना, उनसे डटकर मुकाबला करना एक अच्छे खिलाड़ी का गुण होता है। इन्हीं गुणों के कारण एमसी मैरीकॉम सन 2000 से 2005 तक लगातार 5 बार महिला हॉकी की राष्ट्रीय चैंपियन रही। ऐसा नहीं है कि मैरीकॉम के साथ प्रत्येक

0: किया। उनके पति के ऑनलर ने इस घड़ी में उनका साथ दिया। ऑनलर मोटरसाइकिल पर होते और मैरी कॉम दौड़ लगाती। 15 किलो वजन कम करना लेकिन अपनी ऊर्जा को बचाए रखना कोई साधारण काम नहीं था। साथ में 2 बच्चों को भी पालना था। बच्चे केवल 2 महीने के थे और मैरी कॉम को गुवाहाटी में हुई एशियाई चैंपियनशिप के लिए कैंप में जाना पड़ा।
1: उनकी गैर मौजूदगी में उनके दोनों बच्चों की देखभाल उनके पति ने की।
0: तभी तो जब चीन में संपन्न 5वीं महिला अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम को गोल्ड मेडल मिला तो उन्होंने इस पदक को अपने पति और बच्चों को समर्पित किया। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास से वो यहाँ तक पहुंची थी। अपने बच्चों के प्रति भावुक पलों में उन्होंने कहा,
2: उन्हें छोड़कर आना बहुत मुश्किल था। वो अभी बोलते नहीं लेकिन रवानगी के समय मुझे हैरानी से देख रहे थे कि मम्मी उन्हें छोड़कर कहाँ जा रही हैं। उनसे दूर रहना मुश्किल था लेकिन मैं मुक्केबाजी को उतना ही प्यार करती हूँ।
0: मैरी कॉम को पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार सहित कई सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। इम्फाल के खेल गांव की ओर जाने वाली सड़क का नाम MC मैरी कॉम मार्ग रखकर मणिपुर सरकार ने इस जीवट वाली मुक्केबाज महिला को

0: किसी ने पूछा, यदि आप मुक्केबाज नहीं होती तो?
1: तो मैं गायिका होती, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: अब मैरी कॉम का लक्ष्य है ओलंपिक में हिस्सा लेना।
1: मेरा सबसे बड़ा सपना है ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करना, और उम्मीद करती हूँ कि सन 2012 में लंदन ओलंपिक में मेरा ये सपना जरूर पूरा होगा।
2: खेल जिंदगी को मैरी कॉम की तरह एक ऊंचे मकाम तक पहुंचा सकते हैं, बशर्ते इसके प्रति लोगों का नजरिया बदले।
3: एक अजेय मुक्केबाज, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
5: मेरा प्यारा दोस्त,
6: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
7: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
6: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
7: मेघालय की राजधानी है शिलांग। ये कहानी शिलांग की है।
6: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलांग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थीं। ऐसा लग रहा था

0: वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
1: यहीं कहीं तो थी वो दुकान, कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान, उसके बाद हाँ वो रही।
0: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था, पपीज फॉर सेल।
2: आइए खरीदिए, हमारे यहाँ हर नस्ल के पिल्ले उपलब्ध हैं।
0: यूजीन थोड़ा झिझका, कुछ पल बाहर खड़ा रहा।
2: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था, उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
0: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे, कोई उसे अपने साथ खिलाना ही नहीं चाहता था।
2: यूजीन बार बार दुखी होता और उपेक्षित अनुभव करता था, इसीलिए खेल का मैदान हो या कक्षा, अक्सर वो स्कूल में सबके बीच अकेला सा हो जाता था। कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
1: हाँ, यहां से अंदर चलता हूं। अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है और ले प्यारे प्यारे पपीस भी हैं। आजा आजा।
0: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
2: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है, अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है, इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
0: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
1: नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते बेटा।
1: मेरा नाम यूजीन है, मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
3: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के।
1: ओह।
3: लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
1: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
3: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
1: नहीं,
3: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे बिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो
1: नहीं ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं सच में खरीदूंगा, आप उनके दाम बताइए तो सही।
3: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
1: अच्छा,
3: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
1: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे, आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
3: बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, समझो मेरी बात। वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
1: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूं तो पसंद करके ही जाऊंगा, अभी 1500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
3: ठीक है, शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
4: हाँ जी, बताइए।
3: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
4: हाँ हाँ अभी लाते हैं, बस एक मिनट।
2: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कूं कूं करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। कोई लगभग दौड़ता हुआ आया तो कोई उछलता कूदता हुआ, कोई छोटी छोटी छलांगे मारता हुआ आया तो कोई गोल गोल घूमता सा। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
0: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था। उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
3: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो, तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
4: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है, अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश वापिस चलो।
1: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा इधर आ।
3: ये जन्म से ऐसा ही पैदा हुआ है, सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
1: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
3: हैं? अच्छा समझ गई बेटा, समझ गई, मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है। महंगा तो है लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
1: नहीं ये नहीं चाहिए मुझे। वो वाला कितने का है?
3: अरे बेटा कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
1: क्या?
3: लेकिन ये भी ऐसा शैतान है कि पहला मौका मिलते ही बाहर खुली हवा में भागता है। अरे इसे खरीदने की बात तो आज तक किसी ने नहीं की, वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
1: मैडम मैं खरीदूंगा इसे, मैं इसे ही खरीदूंगा।
3: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, उछल कूद नहीं कर पाएगा, ये तुम्हारे साथ दौड़ भी नहीं पाएगा, तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम अभी तक मुझसे मजाक ही कर रहे हो।
1: नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे यही चाहिए।
3: देखो बेटा मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो, शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
1: नहीं।
3: लेकिन सोचो कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
1: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ, मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा, ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा, चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले।
3: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
1: यूं ही?
3: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत?
1: क्या मतलब? अगर इसकी टांगे खराब हैं, तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
3: अच्छा अच्छा समझी, स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे, अच्छी बात है। तो ऐसा करो इसके तुम बस 50 रुपए दे दो, खुश?
1: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना, इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है वो ही इसकी भी है, मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
3: पर बेटा ये तो
1: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
3: बहुत महंगी है, 2000 रुपए, मेरा मतलब है कि।
1: तो यही इसकी कीमत भी है। इसकी खराब टांगें इसे किसी से कम तो नहीं कर देती। आप निश्चिंत रहिए, बाकी पैसे आपको आज शाम तक मिल जाएंगे। अब ये रहे 1500 रुपए।
3: अब
1: और अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त है ना, है ना मेरा दोस्त, तू यूजीन का दोस्त, तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
3: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
1: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
2: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
3: अरे बेटा, ये तुम्हारा?
1: जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा। अब बताएं मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच? मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
3: अरे अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो मैं बस।
1: मैं भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी ये कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया।
3: नहीं यूजीन बेटा, देखो हम सभी बराबर हैं बेटा, हम सभी बराबर हैं।
1: नहीं मैडम, लगता है ये बस कहने की बात रह गई है, क्योंकि ये बात कितनी बार झुठलाई गई है ये मैं ही जानता हूं, और 5 साल की उम्र से जानता हूं। मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूं, ये सब मुझे पता है
3: बेटा।
1: इसलिए मुझे लगता है कि ये पापी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ। आजा मेरा दोस्त, आजा।
3: यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा, और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ। लो।
1: आजा। अरे आजा आजा।
0: दुकानदार ने देखा वो नन्हा सा प्यारा सा पपी यूजीन की गोद में कुंकू करता हुआ अपनी पूंछ हिला रहा था, मानो यूजीन की गोद ही वो जगह है जहां उसे बेशर्त प्यार की नायाब ऊष्मा मिल सकती है।
2: वो ऊष्मा जो सभी खामियों को नजरअंदाज करती हुई समानता का एहसास दिलाती है, और ये एहसास ही वो भावना है जो मानवता के आकाश में ऊपर है, सबसे ऊपर।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
6: इंसुलिन की कहानी भाग दो।
7: बेंटिंग और बेस्ट की ये जोड़ी अपने शोध प्रयासों से खुश थी। संयोग से परिणाम भी अच्छे आ रहे थे, पर वो एक जैसे नहीं थे। कभी ये अर्क सफल रहता था तो कभी असफल। शोध के नतीजे इतने मिले जुले होने लगे कि उन्हें लगा कि खोज को दूसरी दिशा दी जाए। उनकी तलाश उन्हें स्थानीय बूचड़ खानों में ले गई, जहां मांस को डिब्बों में बंद करने का काम होता था। कई मुश्किल प्रयासों के बाद इन जानवरों के अग्नाशयों से इंसुलिन प्राप्त करने की विधि उनके हाथ लगी।
8: 9 अगस्त सन 1921 को बेंटिंग और बेस्ट ने जब प्रयोग के नतीजों को मैकलियॉट के सामने रखा तो वो इससे बहुत प्रभावित हुए, पर वो चाहते थे कि और प्रयोग किए जाएं ताकि ये साबित किया जा सके कि अग्नाशय का सार वास्तव में असरदार है।
9: प्रोफेसर मैकलियॉट, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कहां से शुरू करें।
10: डॉक्टर बेंटिंग, आप अपना प्रयास जारी रखिए और आगे बढ़िए।
9: जी सर। सर, जिस अर्क का हमने इंजेक्शन दिया है उससे डायबिटीज वाले कुत्ते की हालत में बेहतरी तो हुई है, उसके रक्त और पेशाब में शक्कर की मात्रा में कमी भी आई है।
10: वेरी गुड।
9: पर प्रोफेसर साहब, एक समस्या है।
10: कौन सी समस्या?
9: हमें इंसुलिन के रासायनिक गुणों का पता लगाना चाहिए।
10: डॉक्टर बेंटिंग, पतझर का मौसम आते आते हमारे शोध दल में एक तीसरा सदस्य भी शामिल होने वाला है।
9: अच्छा, वो कौन है सर?
10: जेम्स बर्ट्रम कॉलिप। वो टोरंटो से हैं। वो हमारे विश्वविद्यालय में सेबेटिकल के तौर पर आ रहे हैं।
9: अच्छा।
10: वो एक निपुण रसायन शास्त्री हैं। उनके पास जीव रसायन विज्ञान में पीएचडी की डिग्री के साथ तंतुओं से सार निकालने का अच्छा खासा अनुभव भी है।
9: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। सर, क्या वो अपना शोध भी हमारी प्रयोगशाला में ही करेंगे?
10: कोलिप मेरे साथ मेरी प्रयोगशाला में काम करेंगे।
9: जी सर।
10: उनका शोध कार्य होगा रक्त और पेशाब में शक्कर की मात्रा कैसे बढ़ती है और उससे अम्ल क्षार के संतुलन में कैसे बदलाव आता है, इस बारे में।
9: जी सर।
10: और ये जहां कुत्ते रखे गए हैं इससे कई ब्लॉक दूर पैथोलॉजी की इमारत में वो अपनी अलग प्रयोगशाला बनाएंगे।
9: जी। अब सर, हमारी शोध की प्रगति का क्या होगा?
10: मुझे उम्मीद है डॉक्टर बेंटिंग कि आप दोनों कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण कर सकते हैं।
9: जरूर।
10: अब तक आपने जो किया है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण।
9: बिल्कुल सर।
10: मैं आपके लिए और धनराशि का इंतजाम करूंगा।
9: धन्यवाद।
10: आप दोनों जल्दी ही सभी सुविधाओं से सजी बेहतर प्रयोगशाला में अपना शोध कार्य करने के लिए जा सकेंगे।
9: आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।
10: थैंक यू डॉक्टर बेंटिंग।
7: बेंटिंग और बेस्ट की शोध के परिणाम जर्नल ऑफ लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल मेडिसिन के सन 1921 के नवंबर अंक में छपी। इसका शीर्षक था द इंटरनल सेक्रेशन ऑफ द पैनक्रियाज।
8: एक बार फिर भाग्य उन पर मेहरबान हुआ। अब काम तेजी से होने लगा। सवाल ये था कि मानव प्रयोग के लिए पहले कौन सी प्रयोगशाला सफल होगी। जेबी कॉलिप अल्कोहल का इस्तेमाल कर निथारने वाली विधि से इंसुलिन विशुद्ध करने में लगे हुए थे। और फिर एक रात की बात है,
11: मैंने कर दिखाया।
9: कॉलिप, शाबाश।
11: थैंक यू।
9: मुबारक हो, ये जरूर एक यादगार लम्हा होगा।
11: हाँ दोस्त बेंटिंग, ये एक जादुई क्षण था।
9: लेकिन आखिर तुमने ये किया कैसे? हमें भी तो बताओ वो तरीका। मेरा मतलब विशुद्धिकरण के चरण।
11: मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैकलियॉट ने खासकर इस बात का किसी से भी जिक्र करने से मना किया है। अब मैं आगे इंजेक्शन की सही सही खुराक का पता लगाने का प्रयास करूंगा।
9: हाँ, जरूर। आप सफल हो, भगवान आपकी मदद करें।
11: जी जी, शुक्रिया।

0: पेंटिंग और बेस्ट की टीम अब मनुष्य पर अपना प्रयोग दोहराना चाहते थे, पर ये करें तो किस पर। अचानक दिसंबर के तीसरे सप्ताह उन्हें ये पता चला कि पाचन ग्रंथि का अर्क का कोई नमूना असर नहीं दिखा रहा था। इसी दौरान उन्होंने अर्क के इंजेक्शन को अपने पर आजमाने का इरादा किया। इंजेक्शन के बाद उन्हें कमजोरी और सिर में चक्कर महसूस जरूर हुए, पर कोई खास नुकसान नहीं हुआ।
1: सन 1921 के क्रिसमस से 5 दिन पहले फ्रेडरिक बेंटिंग के यहाँ एक मेहमान आया।

0: अंदर आ जाइए।
1: फ्रेडरिक बेंटिंग के उम्र के तकरीबन बराबर एक लंबे कद का शख्स जिसका नाम जोसेफ गिलक्रिस्ट था अंदर आया। कमजोर और दुबला वो शख्स टेबल की दूसरी तरफ रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया।
2: बेंटिंग,
3: अरे तुम जोसेफ कितने कमजोर हो गए हो, अरे तुम्हें हो क्या गया है जोसेफ? पिछली बार जब हम मिले थे तब के बजाय तुम्हारा वजन कितना घट गया है।
2: बेंटिंग, मुझे डायबिटीज हो गया है, शक्कर की वजह से मैं मर रहा हूं। और अब तो ये स्थिति है कि शक्कर मेरे लिए जहर बन चुकी है।
3: जोसेफ, हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
1: डॉक्टर बेंटिंग के लिए ये कबूल करना मुश्किल हो रहा था कि डॉक्टर गिलक्रिस्ट को मधुमेह है। दोनों 5 वर्ष पहले फौज में कैप्टन थे और दोनों ने एक ही तरह से एक ही वर्ष डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और एक ही पेशे को चुना। वो स्कूल के दिनों से बहुत अच्छे मित्र थे, एक साथ ही स्कूल की रेस में दौड़े थे, खुशी के कई घंटे गुजारे थे, साइकिल मुकाबले में एक दूसरे को मात दी थी। उन्होंने जिंदगी के 25 वर्ष जी भर कर जिए थे।
3: जोसेफ, हौसला रखो, हम डायबिटीज का इलाज जरूर ढूंढ निकालेंगे।
2: बेंटिंग, इससे पहले कि मैं इस बीमारी की वजह से दुनिया छोड़ दूं, क्या तुम्हें लगता है कि कुछ चमत्कार होने वाला है?
3: जोसेफ, चमत्कार भी होते हैं। याद है तुम्हें, मैंने डॉक्टर की राय मानने से इनकार कर दिया था जब उन्होंने मेरे हाथ काटने की बात कही थी, और देखो मैं बच गया।
2: बेंटिंग, तुम्हारे बचने की कम ही सही, लेकिन उम्मीद थी।
3: हाँ।
2: पर मेरे बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है।
3: क्या तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं नहीं जोसेफ, नहीं, यहां पर तुम गलत हो। देखना, मैं इलाज का जरूर पता लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा, बस ईश्वर मेरी मदद करे।
2: क्यों बचकाना बातें कर रहे हो?
3: नहीं,
2: इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है।
3: नहीं जोसेफ, नहीं, बुजदिलों वाली बातें मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे।
1: हाँ। 11 जनवरी सन 1922 को डायबिटीज के एक मानव मरीज पर इस हार्मोन को आजमाने का पहला मौका सामने तब आया जब लियोनार्ड थॉम्पसन नामक के 14 वर्ष का एक लड़का पहला ऐसा डायबिटीज का मरीज जिसे इंसुलिन के इंजेक्शन के लिए चुना गया।

0: डॉक्टर जेफरी?
1: यस।
0: वार्ड एच का वो लड़का जो यूनिवर्सिटी के प्रशिक्षण अस्पताल में दाखिल है, उसका क्या हुआ?
1: आपका मतलब है लियोनार्ड थॉमसन?
0: हाँ वही।
1: उसकी हालत तो बहुत गंभीर है।
0: हाँ?
1: वो अर्धमूर्छित अवस्था में है, वो रोग के आखिरी दौर में है।
0: अब डॉक्टर जेफरी, क्या एंटी डायबिटिक का अर्क हम उस पर आजमाएं?
1: जरूर।
0: तो ठीक है, आइए मेरे साथ। ये लीजिए, ये रहा इंजेक्शन, इसमें अर्क का 15 मिलीलीटर है।
1: ठीक है, तो चलिए मरीज के पास चलते हैं।
0: ठीक है, आइए।
2: डॉक्टर जेफरी ने मटमैले रंग के डायबिटीज के विरुद्ध काम करने वाले अर्क का इंजेक्शन उसके कूल्हे में लगा दिया। 12 रोज बाद 23 जनवरी को लियोनार्डो को पाचन ग्रंथि के अर्क का दूसरा इंजेक्शन दिया गया।
1: डॉक्टर बेंटिंग!
0: अरे डॉक्टर जेफरी, आइए ना।
1: डॉक्टर बेंटिंग, इंजेक्शन ने तो काम कर दिया, लियोनार्डो पहले से बहुत चंगा है।
0: अरे वाह!
1: उसकी भूख लौट आई है, वो देखने में भी अब तंदुरुस्त नजर आ रहा है। वो बताता है कि वो पहले से अब बहुत बेहतर और मजबूत महसूस कर रहा है। अब ये देखिए।
0: हाँ।
1: ये रिपोर्ट
0: लाइए।
1: ये लीजिए।
0: अरे वाह, उसके रक्त में शक्कर की मात्रा अब सामान्य है, पेशाब में भी अब करीब करीब गायब है
1: जी,
0: कीटोन भी गायब हो गए हैं। अरे वाह, ये तो सचमुच बड़ी अच्छी खबर है
1: जी।
2: एक मधुमेह के रोगी बच्चे के पहली बार स्वस्थ होने के इस ऐतिहासिक प्रकरण के एक महीने बाद अगला सवाल ये था कि हार्मोन के इंजेक्शन के इस प्रयोग के लिए दूसरा मानव कौन होगा। 11 फरवरी सन 1922 को डॉक्टर बेंटिंग ने निश्चय किया कि वो अपने मित्र जोसेफ पर ये प्रयोग करेंगे। बिना इलाज के जोसेफ वैसे भी मौत की ओर बढ़ रहे थे, अगर हार्मोन इंसुलिन काम कर गया तो वो बच भी जाएंगे और जी भी पाएंगे। उन्होंने जोसेफ के लिए संदेश भेजा, उसमें बता दिया था कि उनके दिमाग में क्या था।
3: डॉक्टर बेंटिंग।
0: हाँ जोसेफ।
3: आगे बढ़ो और इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दो। ये बीमारी मुझे धीरे धीरे मार रही है, इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है। अगर इंसुलिन काम कर जाता है तो हम जश्न मना सकेंगे, और अगर नहीं तो भी मेरी और ज्यादा क्या दुर्गति हो सकती है।
0: जोसेफ, मैं उम्मीद करता हूं कि इंसुलिन शरीर में जाकर अपना काम जरूर करेगा।
3: मेरे दोस्त, तुम्हारी इसी उम्मीद में मेरी जिंदगी के बचने की उम्मीद है,
0: और ये उम्मीद जरूर कामयाब होगी।
3: लगा दो इंजेक्शन।
0: बस हो गया।
2: मानव हृदय में कुछ न कुछ आशा हमेशा बनी रहती है, और यही हालत थी फ्रेडरिक जोसेफ और चार्ल्स की। फ्रेडरिक की सारी उम्मीद इंसुलिन पर टिकी थी, कोई वजह नहीं थी कि इसका कोई असर नहीं होगा। इसके बावजूद 2 घंटों तक जोसेफ की हालत में तब्दीली नहीं हुई, उनका चेहरा फीका पड़ रहा था, उनकी सांसें रुक रही थी। फ्रेडरिक को सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करें, और इसलिए वो विचलित थे।
3: बेंटिंग।
0: हाँ जोसेफ।
3: तुमने कोशिश की मेरे दोस्त, तुमने कोशिश की।
0: शुक्रिया।
3: जो भी मुमकिन था तुमने किया, और इन सब के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ।
0: अरे इसमें धन्यवाद कैसा, तुम देखना जोसेफ, दवा जरूर असर करेगी। हाँ, हो सकता है कि मानव शरीर में कुत्ते के मुकाबले दवा को असर करने में कुछ ज्यादा समय लगे, लेकिन लेकिन दवा अपना असर जरूर दिखाएगी।
3: कोई बात नहीं दोस्त,
0: बस तुम यही रुके रहो, बेस्ट आता ही होगा।
1: डॉक्टर ब्रेंटिंग।
0: अरे अरे आओ बेस्ट।
1: मैंने लेबोरेटरी में जाकर पेशाब का टेस्ट किया है।
0: अच्छा, तो पेशाब के टेस्ट में क्या नतीजा आया है?
1: डॉक्टर बेंटिंग, इसमें शक्कर की कोई मात्रा नहीं आई है।
0: अरे वाह, ये तो सचमुच बड़ी अच्छी खबर है।
1: जी, मैं उम्मीद करता हूं कि इंजेक्शन से आखिर में जोसेफ की स्थिति में सुधार होगा।
0: जरूर होगा। मैंने अपने लोगों को बताया है कि मैं आज ऑन्टारियो में पहुंच रहा हूं, पर मैं तुम्हारे संपर्क में जरूर रहूंगा।
1: जी,
0: अपना ख्याल रखना।

0: डॉक्टर बेंटिंग रेलगाड़ी पर रवाना हो गए और उनका ध्यान अभी भी चिंता मुक्त नहीं था। उन्होंने अपने को इतनी दयनीय अवस्था में इससे पहले कभी नहीं पाया था। उन्हें पूरा यकीन था कि इंसुलिन से जोसेफ अपनी समस्या से निजात पा लेगा। जब वो घर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि जोसेफ उनसे टेलीफोन से संपर्क करने का प्रयास कर रहा था। वो जोसेफ को टेलीफोन करने ही वाले थे कि टेलीफोन की घंटी बजी।
1: हेलो
2: हेलो बेंटिंग।
1: हाँ, मैं डॉक्टर बेंटिंग बोल रहा हूँ।
2: बेंटिंग, मैं जोसेफ।
1: अरे जोसेफ, कैसे हो तुम?
2: बेंटिंग, जैसे ही तुम अस्पताल से बाहर निकले, मेरी सांसें सहज हो गई।
1: क्या?
2: मेरी थकान गायब हो गई। मेरा दिमाग शांत हो गया।
1: सच जोसेफ?
2: और जानते हो बेंटिंग,
1: हाँ?
2: मेरी भूख वापस लौट आई।
1: थैंक गॉड।
2: एक लंबे अरसे के बाद मैंने भर पेट खाना खाया। मैं तो जैसे एक तरह से खाने का स्वाद बिल्कुल भूल सा गया था।
1: ओह जोसेफ, जोसेफ, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, मेरे सिर से बोझ उतर गया जोसेफ।
2: बेंटिंग, तुमने मुझे जीवन का अमृत दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बेंटिंग।
1: अरे नहीं नहीं, दोस्ती में शुक्रिया कैसा। जोसेफ, याद रखो, ये स्थायी निदान नहीं है। तुम्हें हर रोज इंसुलिन का एक टीका लगवाना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो तुम और भी लंबी उम्र जी पाओगे। हाँ
2: बेंटिंग, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा।
1: अरे नहीं,
2: मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं।
1: नहीं जोसेफ, नहीं।
2: कैसे करूं?
1: अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा, ठीक है?
2: हाँ।
1: अच्छा,
2: मैं भी बेचैन हूँ तुमसे मिलने के।
1: हाँ, जरूर मिलूंगा।
3: और उस दिन के बाद इंसुलिन की हर नई खोज किसी दूसरे मरीज पर आजमाने से पहले जोसेफ पर टेस्ट की गई। इंसुलिन के अनेक प्रयोगों के दौरान अपनी नसों से रक्त के जो नमूने वो आजमाने के लिए देते थे और उनकी प्रतिक्रिया का सच्चा और सटीक ब्यौरा जो उन्होंने दिया है, उससे चिकित्सा विज्ञान में एक नया अध्याय लिखा गया है।
0: दिसंबर सन 1922 को प्रोफेसर मैकलियोर ने शोध कार्य के परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए बेंटिंग को येल यूनिवर्सिटी में आयोजित अमेरिकन फिजियोलॉजिकल सोसाइटी कॉन्फ्रेंस भेजा। उनके व्याख्यान का शीर्षक था द बेनिफिशियल इन्फ्लुएंसेस ऑफ सर्टेन पैनक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट। 18 महीने से भी कम समय के इन चार शोधकर्ताओं के संयुक्त प्रयास ने विश्व को मधुमेह का कारगर इलाज दिया। ये और बात है कि वो अपने काम के दौरान एक दूसरे से लड़ते रहते थे और 26 अक्टूबर सन 1923 को नोबेल कमेटी ने फ्रेडरिक जी बेंटिंग और जॉन जी मैकलियोट को उनकी इंसुलिन के आविष्कार के लिए चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार देने का निर्णय लिया। बेंटिंग न तो व्यक्तिगत तौर पर और न ही पेशे से इसके लिए तैयार थे, पर ये खबर मिली जुली खुशी ले आई। इससे उनकी ईमानदारी को आघात पहुंचा, क्योंकि उन्होंने महसूस किया ये पुरस्कार उनके और उनके सहयोगी चार्ल्स बेस्ट में बटना चाहिए था, न कि उनके और मैकलियोट के बीच। अब जब वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे, बेस्ट को भुला दिया गया था।
1: सर, मैं इस बड़े अन्याय के विरोध में नोबेल पुरस्कार लेने से इनकार कर दूंगा।
4: डॉक्टर बेंटिंग, मैं टोरंटो विश्वविद्यालय के डीन की हैसियत से ही नहीं, बल्कि एक कनाडा निवासी की हैसियत से ये कहना चाहूंगा कि नोबेल पुरस्कार जीतना हमारे लिए एक गौरव की बात है।
1: जानता हूँ सर, जानता हूँ, लेकिन ये बेस्ट थे जो गर्मियों के मौसम में छोटी सी प्रयोगशाला में पसीने में तर लगे रहते थे मेरे साथ, ना कि मैकलियोट। ये बेस्ट थे जो बुनसेन बर्नर के लॉ पर बनाए थोड़े से भोजन को मेरे साथ बांट कर खाते थे। और ये बेस्टी थे सर, जो मेरे साथ रातों को कुत्तों की तलाश में लगे रहते थे। शहरों की गलियों में उन लोगों को ढूंढते रहते थे जो कुत्ते बेचने को तैयार होते थे।
4: डॉक्टर बेंटिंक, आप हमारे राष्ट्रीय नायक हैं। आपका कीर्तिमान कनाडा के दूसरे नौजवानों को विज्ञान शोध में जाने के लिए प्रेरित करेगा।
1: सर, मैं आशा करता हूं कि मैं कभी भी इतना खुदगर्ज, इतना स्वार्थी ना बन जाऊं कि मैं ये भूल जाऊं कि मैं सबसे पहले एक डॉक्टर हूं। मैं रोगियों का इलाज करना चाहता हूं सर, सिर्फ उन्हें आराम पहुंचाने तक अपने को सीमित नहीं रखना चाहता।
0: बेंटिंक पर उनकी देशभक्ति और अपने कर्तव्य के प्रति श्रद्धा उन पर हावी रही। बेस्ट को उनका हक मिले, इसलिए बेंटिंक ने तुरंत बोस्टन स्थित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल में टेलीग्राम का संदेश भिजवाया। उस टेलीग्राम में बेंटिंक ने ये लिखा था, आई एस्क्राइब टू बेस्ट इक्वल शेयर इन द डिस्कवरी, हर्ट दैट ही इज नॉट सो एक्नॉलेज्ड बाय नोबेल ट्रस्टीज। बेंटिंक की घोषणा के बाद प्रोफेसर जे जे मैक्लियोर ने भी अपने पुरस्कार की $40,000 की धनराशि डॉक्टर जे वी कॉलिप के साथ आधी आधी बांट ली।
3: कुल मिलाकर सन 1923 एक अत्यंत रोमांचकारी वर्ष था। कृतज्ञ कनाडा राष्ट्र की संसद ने बेंटिंक को $7,500 की सालाना आजीवन पेंशन देने की घोषणा की। उन्हें टोरंटो विश्वविद्यालय में चिकित्सा शोध के लिए अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। इस पद को नाम दिया गया बेंटिंक एंड बेस्ट चेयर ऑफ मेडिकल रिसर्च।
0: सन 1934 में ब्रिटिश साम्राज्य ने बेंटिंक को सर की उपाधि से सम्मानित किया। जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो बेंटिंक ब्रिटिश और उत्तरी अमेरिका की डॉक्टरी सेवाओं के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। वो उड़ान से संबंधित विमान चालकों के व्याप्त खतरनाक समस्या ब्लैकआउट का समाधान ढूंढना चाहते थे। ऐसी ही एक उड़ान T-9449 में अटलांटिक में सन 1941 को वो दुर्घटना का शिकार हो गए। उनकी उम्र केवल 50 वर्ष थी।

0: साथियों, मानवता इंसुलिन के इस अमूल्य योगदान हेतु उनका सदा आभारी रहेगी। 18 महीने के शोध से इंसुलिन का इजाद हुआ और ये ऐसी खोज थी कि जिसने मधुमेह की दुनिया ही बदल कर रख दी। आधुनिक चिकित्सा में ये एक अति महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इसका चिकित्सा इतिहास में अनोखा स्थान है। इसने लाखों लोगों को जीवन दान देकर एक कर्मशील और सामान्य जीवन प्रदान किया है।
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबा की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी RJ राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
3: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
4: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है जी। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
3: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
4: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
3: यानी कि आपके कहने के आधार पर क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
4: एक बार जब विसंगति आ जाती है जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है।
3: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
4: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसको इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूरी दूर होता है उससे। जी
3: डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
4: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
3: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर सिंह के मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
4: जी, ये 2 वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है, और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
5: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
3: जी बताइए।
4: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
3: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
4: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभावों से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
3: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
4: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
3: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
4: जी
3: और डॉक्टर साहब,
6: क्या फाइलेरिया की
3: बचा जा सकता
4: है? जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
3: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
4: ये जब अभियान चलता है हम सभी यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें, जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
3: जी और डॉक्टर साहब, एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इस रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
4: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
3: जी जी, रात की 10 बजे से 2 बजे तक जब आ जाता
4: है वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
6: जी, मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
3: जी बताइए।
4: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहां पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
3: जी
2: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: हूँ से आरजे राकेश
7: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
2: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती वाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है तमारो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। हूँ से आरजे राकेश अने रोजनी जेम तमारी वस मा आज फेर कार्यक्रम खेतीवाड़ी लीने हाजिर थायो से। अने किसान भाइयों, हूँ रोज तमारी वस मा खेतीवाड़ी देखा जोड़ायला मुद्दा, खेतीवाड़ी नी समस्याओं अने तिना समाधान नी वातियों लीने रोज इना समय पर હાજર થામશે. તો કિસાન ભાઈઓ, આજના ખેતીવાડી કાર્યક્રમમાં આપણો ચર્ચાનો નવો વિષય રહેવાનો છે મછલી પાલન, એટલે માછલા પાળવાની વાતો. બધી વાતો આપણને બતાડશે કૃષિતા જોડાયેલા વિશેષજ્ઞ અને એવા કિસાન ભાઈ જ્યાં માછલા પાલન કરીને ઘણો અસલ અને મોટો મુનાફો કમાઈ રહેશે. તો કિસાન ભાઈઓ, ઘણો મહત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમ છે, જાજો મતી કહેતા હામલતા રહેજો કાર્યક્રમ ખેતીવાડી.
8: इस बार का कृषि विशेष हम आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे देश के दक्षिणी छोर पर बसे राज्य तमिलनाडु से. तमिलनाडु वैसे तो अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति भी अन्य राज्यों से काफी भिन्न है. जहां पूर्वी तट पर ये एक समतल प्रदेश है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें उत्तरी और पश्चिमी भाग की, तो ये पर्वतीय क्षेत्र में विभाजित हो जाता है. इसके अलावा तमिलनाडु की कोस्ट लाइन भी काफी लंबी है, जो कि 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की है. और इसके पीछे वजह है, पूर्वी तट पर जहां यहां बंगाल की खाड़ी है, वहीं दक्षिण में ये अरब सागर से घिरा हुआ है. इसीलिए यहां के लोगों के जीवन की बात करें तो उनके जीवन और आजीविका का माध्यम है समंदर. आज हम बात करेंगे कि कैसे तमिलनाडु में मत्स्य पालन को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है और नई तकनीक से कैसे मछुआरों और किसानों के जीवन में बदलाव आ रहे हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की, जिसमें हम बात करेंगे आय की गारंटी मछली पालन.

0: आज के समय में बढ़ती आबादी की वजह से कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है, जिस कारण कम समय में अधिक उपज ले पाना भी बहुत ही मुश्किल होने लगा है। इस तरह की समस्याओं के लिए कुछ अलग तरह की कृषि का चयन एक बेहतर विकल्प हो सकता है, ताकि कम समय में अधिक पैदावार प्राप्त कर मूल्य भी अच्छा प्राप्त किया जा सके। ऐसा ही एक व्यवसाय है मछली पालन। इस व्यवसाय में मुनाफे वाले सभी गुण मौजूद हैं। यह एक उच्च कोटि खाद्य पदार्थ व्यवसाय है। देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में मत्स्य पालन का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही मछली पालन आर्थिक रूप से पिछड़ी आबादी के एक बड़े वर्ग के लिए आजीविका का साधन भी है। यह क्षेत्र रोजगार, पोषण सुरक्षा और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी सहायक है। मछली उत्पादन भारत को सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गिना जाता है। कारण है यहाँ के दक्षिणी राज्य। भारत में सामान्य तौर पर तीन देशी कतला, रोहू, मृगल और तीन विदेशी सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प मछलियों का पालन किया जाता है। बीते कुछ वर्षों में मत्स्य पालन क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए किसानों की रुचि भी मछली पालन की ओर बढ़ी है। देश के किसान या मछली पालक वैज्ञानिकों की सलाह पर नई तकनीकों के माध्यम से मछली पालन के व्यवसाय को अपनाकर उत्पादन में वृद्धि कर पोषक और संतुलित आहार की मात्रा को लोगों तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं और अपनी आय को दुगुना करने में भी प्रयासरत हैं।
1: मछली पालन आय की गारंटी में, आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि वर्तमान में तमिलनाडु में मछली पालन या फिर कहें मत्स्य पालन क्षेत्र की स्थिति क्या है, इसको लेकर सरकार की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं।
0: तमिलनाडु के समुद्री राज्य को 1076 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 41,412 किलोमीटर दो महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्र के साथ 1.9 लाख वर्ग किलोमीटर के विशेष आर्थिक जोन का आशीर्वाद प्राप्त है, जो 5.95 लाख टन समुद्री मछली उत्पादन में योगदान देता है। ये 5,830 मशीनीकृत और 45,685 पारंपरिक मछली पकड़ने वाले शिल्पों के माध्यम से 10.48 लाख समुद्री मछुआरों को आजीविका का समर्थन करता है, जो सक्रिय रूप से मछली पालन में लगे हुए हैं। तमिलनाडु के पास 3.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। प्रभावी अंतर्देशीय जल संसाधनों में जलाशय प्रमुख सिंचाई टैंक, लघु सिंचाई टैंक, छोटे मौसमी टैंक, तालाब, नदियाँ, बैक वाटर और परित्यक्त जल निकाय शामिल हैं। अंतर्देशीय मछुआरों की आबादी 2.35 लाख है। 56,000 हेक्टेयर का अनुमानित खारा जल क्षेत्र मत्स्य पालन और 6,115.68 हेक्टेयर क्षेत्र है, तटीय जलीय कृषि उत्पादन के अंतर्गत है। मुख्य रूप से झींगा जलीय कृषि, तमिलनाडु समुद्री

0: कुल समुद्री मछली उत्पादन में तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। तमिलनाडु ने 2021-22 के दौरान 1.14 लाख मीट्रिक टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया और 6,559.64 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की। राज्य के प्रति व्यक्ति मछली की खपत भी 2020-21 के दौरान 9.3 किलोग्राम से बढ़ गई है। केंद्र सरकार मत्स्य उत्पादन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चला रही है। इस योजना को मछली उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता से लेकर प्रौद्योगिकी, कटाई के बाद की बुनियादी ढांचे और विपणन तथा मत्स्य मूल श्रृंखला में बेहतरी के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य मूल श्रृंखला को आधुनिक बनाना और मजबूत करना है। मत्स्य योजना का मकसद नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कुल अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना में केंद्र की हिस्सेदारी 9,407 करोड़ रुपए है, जबकि राज्यों की हिस्सेदारी 4,880 करोड़ रुपए है और लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5,763 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य मछली उत्पादन को साल 2024-25 तक 220 लाख मीट्रिक तक बढ़ाने का है। इस महत्वाकांक्षी योजना से निर्यात आय दूनी होकर 1,00,000 करोड़ रुपए हो जाएगी और इस योजना के माध्यम से मछली पालन के क्षेत्र में लगभग 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने की संभावना है। इस योजना में कई नई गतिविधियों और क्षेत्रों जैसे जेनेटिक सुधार कार्यक्रम, एक्वा कल्चर स्टार्टअप, मछली की खपत के लिए प्रचार गतिविधियों, तटीय मछली पालन ग्रामों का विकास और अत्याधुनिक थोक मछली बाजार आदि पर ध्यान केंद्रित करना है। सरकार के द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों और नई नई योजनाओं के फलस्वरूप ही हमारे किसान भाई और मछली पालक अपने क्षेत्र में सफल हो पा रहे हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाएं हैं, जिससे मत्स्य पालन के क्षेत्र को अधिक बल मिल रहा है, जिसके कारण हमारे देश के मछली पालक पहले से और भी ज्यादा मजबूत और सुदृढ़ तरीके से काम कर रहे हैं और अपने कल को संवार रहे हैं।
1: तो आपने जाना कि कैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से हमारे मछुआरों को लाभ हो रहा है और उनकी आजीविका भी सुनिश्चित हो रही है। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा, कहीं मत जाएगा। इस बार का कृषि विशेष हम आप तक पहुँचा रहे हैं तमिलनाडु के मंडपम से।

0: पारंपरिक तरीके से समुद्र में फिशिंग यहाँ के लोगों की आय का मुख्य साधन रहा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में मछलियों की संख्या तटीय क्षेत्रों में घटने लगी, जिसकी वजह से मछुआरों की आय पर भी आशंका के बादल मंडराने लगे। आइए अब आपको बताते हैं कि सरकार की तरफ से जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं उससे मछुआरों को किस तरह से लाभ हो रहा है और इसको लेकर वो क्या कहते हैं।
1: खेती हो या फिर मछली पालन का क्षेत्र, सरकार इन्हें मजबूत बनाने के उद्देश्य से नित नई योजनाएं लेकर आती रही।

0: है, जिसके फलस्वरूप किसान और मछुआरे आत्मनिर्भर होकर अपने कार्य में सफल हो रहे हैं।
1: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கேன், திருவான வட்டம் தொண்டி புதுக்குடியில் மீனவராக இருக்கேன். நான் வந்து முன்ன வந்து படகு நாட்டு படகு வச்சுருந்தேன். அது இப்போ மீனவர் இதிலேருந்து எனக்கு போட்டு தந்திருக்காங்க. பிரதமர் திட்டத்திலேருந்து எனக்கு வந்து போட்டு தந்திருக்காங்க. இப்போ முன்ன வந்து சராசரி ஒரு நாளைக்கு 500 வருமானம் வந்தது, இப்போ வந்து 1000 பரவலமாக வருமானம் வருது. இந்த வசதி பண்ணி தந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. வனதுறைக்கு ரொம்ப நன்றி, மீன் வளத்துறைக்கு ரொம்ப நன்றி.
0: மச்சலி பாலன் கே கை பிரகார் ஹே ஓர் உன்ஹி மே சே ஏக் ஹே ஆதுனிக் தக்னீக் சே மச்சலி பாலன் யானி கேஜ் கல்ச்சர். केज कल्चर की बात करें तो ये पर्यावरण के अनुकूल है और ये खुले समुद्र में ही किया जाता है, जहां पर लहरों की गति कम होती है। इसके अलावा एक और फायदा है केज कल्चर का। जी हां, केज कल्चर की मछलियों की कीमत बाजार में अच्छी प्राप्त होती है, यानी इन्हें कभी भी बाजार में बेचा जा सकता है और अच्छी आय अर्जित की जा सकती है।
2: किसी भी व्यवसाय को सफल बनाने में नई और आधुनिक तकनीक बेहद उपयोगी साबित होती है। मछली व्यवसाय के लिए भी नई तकनीकों का अपना ही फायदा है। इस क्षेत्र के लिए नई तकनीक किसी क्रांति से कम नहीं। नई तकनीकों के माध्यम से मछली पालकों को काफी लाभ हो रहा है और उनकी आमदनी में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। अब उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं और वैज्ञानिक इसमें मददगार बन रहे हैं। मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी बेहद लाभदायक तकनीक है केज कल्चर। ये मछली पालन की नई तकनीक है, जिसमें जलाशयों में निर्धारित जगह पर फ्लोटिंग ब्लॉक बनाए जाते हैं। सभी ब्लॉक इंटरलिंक रहते हैं। जाली में 100-100 ग्राम वजन की मछलियां पालने के लिए छोड़ी जाती हैं। मछलियों को प्रतिदिन आहार दिया जाता है। फ्लोटिंग ब्लॉक का लगभग 3 मीटर हिस्सा पानी में डूबा रहता है और 1 मीटर ऊपर तैरते हुए दिखाई देता है। केज कल्चर में पंगेसिस प्रजाति की मछली का पालन होता है। 100-100 ग्राम की मछलियां 10 महीनों में 1.25 किलो की हो जाती हैं। बीते कुछ वर्षों से मछली पालक इस कल्चर को ज्यादा अपनाने लगे हैं और उन्हें लाभ भी मिल रहा है। मछली पालन के क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं भी देखी जाती हैं। एक तो जमीन और जलीय संसाधन में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा हो गई है और लागत भी काफी बढ़ गई है। इसके अलावा विदेशी प्रजातियां पालन से मूल किस्मों पर बुरा असर पड़ रहा है और बहुत अधिक बीज संवर्धन करने के कारण बीमारियां भी फैल रही हैं। ऐसे में नई तकनीकों को चुनना ही सरल उपाय है, जिसमें से एक है बायोफ्लॉक तकनीक। इस तकनीक के सहारे कम क्षेत्र में मछलियों का अधिक उत्पादन किया जा सकता है। बायोफ्लॉक दरअसल शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ, अनुपयुक्त खाना और मछली मल से बना होता है। इसमें 60-70% कार्बनिक और 30-40% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। बड़े बायोफ्लॉक नग्न आँखों से देखे जा सकते हैं। मछली पालन में बाहर से दिए गए फीड का 20-30% हिस्सा ही मछलियाँ उपयोग करती हैं, बाकी बचे पानी में ही रह जाते हैं। इन्हीं बचे हुए कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को बायोफ्लॉक विशेष सूक्ष्म जीवों के जरिए फिर से खाने लायक बना देती है। इस तकनीक से लगातार पानी में ऑक्सीजन मिलता रहता है।
0: मत्स्य पालन तकनीक कई प्रकार की होती है और तटीय क्षेत्र में खेती के लिए सबसे आदर्श है, लेकिन इसे और विकसित करने के लिए और नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हैचरी का विकास भी बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि हैचरी के विकास के लिए कौन कौन से नवाचारों को मत्स्य पालन से जोड़ा जा रहा है और इससे कौन से नए आयाम मत्स्य पालन के क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं।
2: मछली पालन करने के साथ ही मछली बीज उत्पादन हैचरी लगाकर भी किसान भाई अच्छी कमाई कर सकते हैं। बढ़ते मछली पालन के कारण आजकल मछली बीज की अच्छी खासी मांग है। ऐसे में मत्स्य बीज उत्पादन स्वरोजगार का अच्छा माध्यम बन सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार अनुदान भी दे रही है। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान मंडपम के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश कुमार ने इसके बारे में जानकारी दी।
3: हियर माय डिसिप्लिन इज वेटरनरी पैथोलॉजी। आई एम टेकिंग केयर ऑफ फिश हेल्थ स्टेटस इन हैचरी एज वेल एज इन द केज सिस्टम। So fish is totally depending upon the water environment. So at any stages from larvae culture to broodstock, nursery and larvae and grow out stages, at any stages disease will come. So the water, we have to keep it, the water environment very neat and clean. So the feed return, it will play a major role. So we have to take the feed return properly. Otherwise, there will be getting chances of ammonia formation. So in the rearing system, the larviculture and the nursery system, ammonia formation is the main thing, getting chances of mortality. From the larvae to broodstock, many diseases are coming, disease and disorders are coming. Particularly in hatchery system, they're getting chances of parasitic infestation. There is getting chances of ciliates, protozoal, and other crustacean parasites are the parasitic infestation which are affecting in the hatchery system. So for that one, water is the main thing. We have to prevent the ammonia formation. So the other water parameters like temperature, dissolved oxygen, ammonia and salinity, that and all for suit, we have to keep it the water in the suitable for the fish culture. So in cage system, once after completion of the nursery phase, we used to stock in the cage system. When it is going to the open system, getting chances of many infections. So we have to give more immunity or more immune boosting supplements to the fishes in larviculture. So for that, we are giving any vibriosis kind of vaccination.
2: नई नई तकनीकों का फायदा अब केवल खेती में नहीं बल्कि आधुनिक तकनीकों का साथ लेकर मछली पालक भी निश्चित ही सफलता हासिल कर सकते हैं, साथ ही अच्छी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं।
0: यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्या है CMFRI की भूमिका, कैसे नई तकनीक से हमारे किसान, हमारे मछली पालक मछली पालन को नए आयाम तक ले जा रहे हैं, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।

0: मत्स्य पालन के क्षेत्र में CMFRI की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि समंदर की कई ऐसी मछलियों की प्रजातियां हैं जो कि विलुप्ति की ओर है। ऐसे में CMFRI की तरफ से ऐसे अनुसंधान किए जा रहे हैं और ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इन प्रजातियों को बचाया जा सके और हमारे मछुआरों की इनकम में वृद्धि भी हो सके। आइए जानते हैं कि इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का क्या कहना है।
1: भारत सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन 3 फरवरी 1947 को केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई और बाद में वर्ष 1967 में संस्थान को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिवार से जोड़ दिया गया। स्थापना के बाद लगभग 65 वर्षों के दौरान संस्थान विश्व में ही अग्रणी उष्णकटिबंधीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान बन गया। बीते सालों में संस्थान ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। CMFRI की मुख्य उपलब्धि 8000 किलोमीटर से अधिक होने वाली तट रेखा से मत्स्य की पकड़ एवं प्रयास का आकलन करने के लिए विशेष तरीका, जिसे स्ट्रेटिफाइड मल्टी स्टेट रैंडम सैंपलिंग मेथड कहा जाता है, का विकास एवं शोधन है। इस प्रणाली से संस्थान भारत के सभी समुद्रवर्ती राज्यों से पकड़ी गई 1000 से अधिक प्रजातियों से संबंधित 9 मिलियन पकड़ एवं प्रयास के डाटा रिकॉर्डों सहित कई राष्ट्रीय समुद्री मत्स्यिकी आंकड़ा केंद्र का अनुरक्षण कर रहा है। समुद्री संवर्धन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसमें MFSC और PhD पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। समुद्री संवर्धन में मानव संपदा का भी सफलतापूर्वक विकास किया गया। CMFRI ने नए क्षेत्रों जैसे समुद्री पखमछली पालन, जैव प्रौद्योगिकी और जैव विविधता में अनुसंधान कार्य शुरू किए हैं। मत्स्य पालन के क्षेत्र में केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान मंडपम के निदेशक ने संस्थान की भूमिका और आने वाले सालों में किन किन मुख्य कार्यों पर संस्थान का फोकस रहेगा, इसके बारे में विस्तार से बताया। आइए जानते हैं।
2: The ICAR Central Marine Fisheries Research Institute is one of the premier fisheries research institute of the Indian Council of Agricultural Research. The CMFRI was initially started at Madras in the year 1947 and subsequently it was shifted to Mandapam camp in the year 1949 and then it continued to function as the CMFRI headquarters till 1971, and in 1971 the headquarters was shifted to Kochi in Kerala. In 1967, this institute, CMFRI, came under the aegis of the Indian Council of Agricultural Research. Now, Mandapam Regional Center is one of the oldest and the largest regional center of ICAR, Central Marine Fisheries Research Institute.
1: संस्थान ने तटीय आवास तंत्र और मछुआरों पर बुरा असर डालने वाले जलवायु परिवर्तन मुद्दों का संबोधन किया। समुद्री प्रग्रहण एवं पालन मत्स्यिकी में संस्थान के बहुविषयक पहल से विश्व के किसी भी सुव्यवस्थित समुद्री प्रयोगशाला की तुलना में अग्रणी संस्थान की मान्यता प्राप्त हुई है।
2: The center has achieved significant breakthrough in breeding two very important commercially important food fishes. One is the cobia, Rhachicentron canadum, and the silver pompano, Trachinotus blotchi. So these are the two important fishes which the center has bred. And we continue to work on standardization of captive breeding and seed production of many of the commercially important food fish resources. The center also focuses on the studies on fishery environment and also on marine biodiversity, particularly on the coral reef ecosystem, the mangrove ecosystems, and also on the protected species, the marine protected species. Another important aspect is when we talk about the seaweed farming as well as the captive breeding for seed production of commercially important food fishes, because the grow out of food fishes is mainly done in marine cages, the open sea cages. So along with that, we are trying to integrate the seaweed farming, which is popularly called as the integrated multi-trophic aquaculture, that is rearing fishes in open sea cages, and so in association to that, we are also having the rafts of seaweeds, so that a combination of fish rearing and seaweed farming is done. The focus for the next 1 year would be in the front of capture fisheries. We'll be focusing on the stock assessment and population dynamics of some of the important commercially food fishes and shellfishes, which are not attempted so far. And in fishery environment and biodiversity, like we are working on the jellyfish swarming dynamics. We have been working, this particular project has been on for the last 6 years, and we continue to work on the swarming dynamics of jellyfishes.
1: केंद्रीय समुद्री मत्स्यकी अनुसंधान संस्थान मंडब के निदेशक ने बताया कि यह संस्थान नई तकनीकों पर काम कर रहा है, जो कि किसी भी संस्थान को आगे बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण है.
0: पारंपरिक तरीके से समुद्र में फिशिंग यहाँ के लोगों की आय का मुख्य साधन रहा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में मछलियों की संख्या तटीय क्षेत्रों में घटने लगी, जिसकी वजह से मछुआरों की आय पर भी आशंका के बादल मंडराने लगे. आइए अब आपको बताते हैं कि सरकार की तरफ से जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, उससे मछुआरों को किस तरह से लाभ हो रहा है और इसको लेकर वो क्या कहते हैं.
1: इस संस्थान द्वारा विलुप्त हो रही मछलियों को बचाने के उद्देश्य से कई कार्य किए जा रहे हैं. ब्रूड स्टॉक प्रबंधन के माध्यम से यहाँ कार्य कर रहे वैज्ञानिक इन प्रजातियों को सुरक्षा दे रहे हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.
3: फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर कोबिया एंड सिल्वर पंपानो वर डेवलप्ड हियर एंड दीज फिशेस दे हैव अ वेरी हाई एंड फास्ट ग्रोथ रेट एंड ऑल्सो इट हैज अ वेरी गुड मार्केट. सो वी प्रोड्यूस द सीड्स एंड द फार्मर्स are taking the seeds from us and they are farming in their cages and the coastal ponds. This is a endemic species of this Gulf of Mannar and Park Bay. We carry out this activity to enhance the stock in the wild. We produce the host larvae and ranch them in the Gulf of Mannar and Park Bay, which is the natural environment for this shrimp, and they grow in their natural environment and they are caught by the fishermen.
1: मत्स्य पालन क्षेत्र 2,80,00,000 लोगों को रोजगार दे रहा है. इसमें समुद्र से मछलियां पकड़ने वाले मछुआरे भी शामिल हैं और तालाबों में मछली पालन कर रहे किसान भी. मछली उत्पादन व्यवसाय दिनों दिन लोकप्रिय होता जा रहा है, कारण अपार संभावनाएं. दुनिया भर में लगभग 500 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए मत्स्य पालन पर निर्भर हैं. बीते वर्षों में मछली उत्पादन में वार्षिक बढ़ोतरी देखी गई है. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे देश में मछली व्यवसाय का भविष्य उज्जवल है.
4: हूँ से आरजे राकेश
5: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
4: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती बाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर. तो किसान भाइयों, हमने आपकी बात हामली मछली पालन एतरे मासला पालवानी वातियो बड़ी बातियों आपुन कृषि था जोड़ाएला विशेषज्ञ अने अनुभवी लोगों ने बताड़ी. हाथे हाथ एक एवा किसान भाई तीनों ने स्टोरी आपड़ी वसमा साझा करी के केवी रीते मासला पालवानी खेती करी ने त्या घणो असल अने मोटो मुनाफो कमाई रहा से. किसान भाइयों जेवी रीते पानी पड़ी गयो से अने नाना नाना बांध मा पण आपु मासलाना बी सोड़ी ने घणो असल अने मोटो मुनाफो कमाई सकी. किसान भाइयों कार्यक्रम ने आगाड़ी बढ़ावी अने हाव हामलवाना से आपु झींगा पालन एतरे मासला पालवानी खाते हाथ आपु घेसा पाली सकी अने इनुथी पण घणो असल अने मोटो मुनाफो नजर आवे से. कार्यक्रम मा बन्या रहेजो, जाजो मती कहता हामलता रहेजो. रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबवानी आवाज.
6: दोस्तों, सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको देश के कोने कोने से ऐसे किसान प्रतिभाओं से मिलवाते हैं जो खेती किसानी में कुछ नया कर रहे हैं. सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें किसान भाइयों की ऐसी कहानियों को हम लेकर आते हैं जिससे किसानों को प्रेरणा मिल सके, आगे आकर वो खेती किसानी में अपार संभावनाओं का फायदा उठाकर कुछ नया स्थापित कर सके और अपनी आय को बढ़ाने के साथ साथ आसपास के क्षेत्र के किसानों को प्रेरणा भी दे सके. आज हम आपको गुजरात के नवसारी के एक ऐसे किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने मछली पालन के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है. जी हाँ, इस किसान ने मछली पालन और झींगा पालन में एक नया विकास कर नया आयाम स्थापित किया है. तो चलिए इस दास्तान को आगे बढ़ाते हैं.
7: गुजरात खेती के साथ मछली पालन के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि राज्य की समुद्र तट की लंबाई करीब 1214.7 किलोमीटर है, जो कुल समुद्र तट का लगभग 23% भाग कवर करता है।

0: और यही तटरेखा यहाँ किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करती है। हालांकि ऐसे भी कई क्षेत्र हैं जहां पर्याप्त पानी ना होने के कारण किसान बारिश के पानी का सही इस्तेमाल कर मछली पालन को सफल बना रहे हैं। हमारे आज के सफल मछली पालक भी ऐसे ही हैं, जो समुद्र के पानी का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि वो बारिश के पानी का संचय कर उसमें मछली व झींगा पालन करते हैं। रोहित पटेल इस समय करीब 40 एकड़ में मछली व झींगा पालन कर रहे हैं। वो मुख्य रूप से देसी नस्लों की मछलियां जिनमें रोहू, कतला, मृगल पालते हैं। उनका मानना है कि देसी प्रजाति की मछलियां आसानी से ढलकर विकास कर लेती हैं। इनका वजन तेजी से बढ़ता है, इससे कम समय में बढ़िया मुनाफा मिल जाता है।
1: यहाँ हम 40 एकड़ में मछली पालन कर रहे हैं और यहाँ पानी का थोड़ा दूसरा कोई सोर्स है नहीं बारिश के अलावा। इसके लिए पहले हमको एक साल यहाँ रखे, एक साल का ईयरलिंग बनाना पड़ता है, तो उसके बाद स्टॉकिंग पॉन्ड में हम लोग स्टॉक करते हैं, तो 6-8 महीने में वो एक मार्केटेबल साइज हो जाता है।
2: सफलता की इस दास्तां को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं मछली पालन पर एक खास रिपोर्ट के बारे में।
0: मछली भारत में भोजन, पोषण, रोजगार व आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मछली पालन क्षेत्र संभावनाओं से भरा है। प्राथमिक स्तर पर ये क्षेत्र करीब 2.8 करोड़ से अधिक मछुआरों और मत्स्य पालकों को आजीविका, रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करता है। मछली उत्पादन पिछले 75 वर्षों में 22 गुना की वृद्धि के साथ एक व्यावसायिक उद्यम में बदल गया है। साल 1950 से 51 में मात्र 7.5 लाख टन से शुरू हुआ भारत का कुल मछली उत्पादन 2021 से 22 में रिकॉर्ड 162.48 लाख टन प्रति वर्ष तक पहुंच गया है। भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी के साथ तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है।
2: कि देश हमारा मछली पालन के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ रहा है, कैसे किसान भाई इस क्षेत्र से जुड़कर भी अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, चलिए कार्यक्रम की तरफ वापस रुख करते हैं और जानते हैं रोहित जी की तालाब में मछली पालन के नई तकनीकों के बारे में।
0: रोहित जी करीब 40 एकड़ में मछली पालन कर रहे हैं, जिसमें इनका हर तालाब करीब 1 एकड़ का है। उनके तालाब में मछलियां महज 5 से 6 माह में ही तैयार हो जाती हैं, क्योंकि सही विकास के लिए वो हेचरी से मछलियों का बीज लेते हैं। इसके बाद उन्हें 1 साल तक पॉन्ड में रखते हैं और जब इन मछलियों के वजन करीब 100 ग्राम तक हो जाते हैं तो इन्हें मुख्य तालाब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां से मछलियां 6 माह में 1 से 1.5 किलो वजन ले लेती हैं और यही वो समय होता है जब ये बाजार भेजने के लिए तैयार है। लेकिन इन सारी प्रक्रिया के बीच इनके आहार का खास ख्याल रखा जाता है, साथ ही उन सारे पहलुओं को अपनाया जाता है जिससे मछलियों में बीमारी ना फैले।
1: इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं आता है, आरगुलस का कभी कभी प्रॉब्लम, हाई डेंसिटी स्टॉकिंग करते हैं तब आता है प्रॉब्लम, है तो फिशरीज वाला थोड़ा मदद करते हैं। 6-8 महीने में वो एक मार्केटेबल साइज हो जाता है, साइज 1 किलो 1.5 किलो तक हो जाता है और मार्केट 150 रुपये केजी पर लेके जाते हैं।
2: दोस्तों सफल किसान के इस कार्यक्रम में अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे झींगा पालन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। आप बने रहें कार्यक्रम सफल किसान।

0: हाँ बस
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि झींगा पालन को लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मछली पालकों को ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे उनका उत्पादन भी बढ़ेगा और उनकी आय भी बढ़ेगी।
2: मछली पालन के साथ साथ झींगा पालन भी करते हैं। हालांकि झींगों के लिए उन्होंने अलग से तालाब बनवाए हैं। करीब 5 हेक्टेयर के एरिया में झींगे पल रहे हैं, जिसमें एक एक हेक्टेयर का एक तालाब है। वो बताते हैं कि झींगा पालन के लिए उन्होंने जमीन लीज पर ली है, क्योंकि जिन तालाब में मछली पालन किया जा रहा है वहाँ झींगे नहीं पाले जा रहे। रोहित इसके पीछे रख रखाव के तरीकों में अंतर को वजह बताते हैं। उनके तालाब में टाइगर प्रजाति की झींगों को पाला जा रहा है, जिनकी बाजार में अच्छी मांग है।
3: जिला कलेक्टर 5 हेक्टर मेरे को जमीन लीज पे दिया हुआ है 20 साल के लिए। उसमें हम झींगा उच्छेर की प्रवृत्ति कर रहे हैं।
4: रोहित भाई के फार्म पे झींगा फार्मिंग चलता है। इधर टाइगर झींगा है, उसका प्रोसेसिंग 4 महीने जितना है, 4 महीने में पाकर तैयार हो जाता है, बाद में हार्वेस्टिंग होता है। इधर में 10 तालाब है। एक तालाब 100 मीटर बाई 100 मीटर का है। एक तालाब में कम से कम 6 एरेटर लगा हुआ है। वो पूरा पानी का सर्कुलेशन करता है, बाद में खुराक डालने का पहले सेंटर में जो कचरा जमा होता है उसको पंप से निकाल देते हैं, बाद में खुराक डालते हैं। ऐसा करके 4 महीने का प्रोसेस है झींगा फार्मिंग का। तो युवा लोग के लिए बहुत अच्छा है, इनकम के लिए ये सारा ये बिजनेस बहुत अच्छा है झींगा फार्मिंग का।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और झींगा पालन को लेकर कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में जान लेते हैं।
2: हमारे देश में इसे शुरू करने के लिए स्थान का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होता है। हालांकि हमारे देश में तटीय इलाकों और तालाबों में इनका पालन आसानी से किया जा सकता है, लेकिन तकनीकों की सहायता से अब किसान इसे खेतों में भी कर सकते हैं। विशेषज्ञ की माने तो एक बार के पालन में 3 से 4 लाख प्रति हेक्टेयर का मुनाफा कमाया जा सकता है। झींगों को भोजन के रूप में 80% शाकाहारी और 20% मांसाहारी भोजन देना फायदेमंद होता है।
3: झींगा कल्चर में उसको 4 टाइम खाना देना पड़ता है और 4 टाइम उसका चैप्टर देखना पड़ता है। और फार्म में कोई एंटर करेगा तो उसको KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट से बात लेना पड़ता है।
2: इसे छोटे पैमाने पर शुरू करने के लिए सबसे पहले तालाब की नर्सरी तैयार करनी होती है। इसके लिए तालाब का पूरा पानी निकालकर उसको अच्छी तरह से सुखा ले। इसके बाद एक जुताई कर तालाब में 1 मीटर की गहराई तक पानी भरे। इसके बाद नर्सरी में लगभग 20,000 बीज डालें। हालांकि इनका संचयन मुख्य रूप से अप्रैल जुलाई माह में ठीक रहता है। साथ ही इस समय भोजन के रूप में सूजी, मैदा व अंडा को एक साथ मिलाकर दें। इस तरह बीज से निकलने वाले लार्वों को करीब 45 दिनों तक रहने दें। इस दौरान ये लार्वा शिशु झींगों में बदल जाते हैं और इस समय इनका वजन करीब 3 से 4 ग्राम तक का हो जाता है। बस यही वो समय होता है जब इन शिशु झींगों को मुख्य तालाब में छोड़ा जा सकता है। इस दौरान किसान या पशुपालक चाहे तो झींगों के साथ देसी मछली पालन भी कर सकते हैं।
3: 1 हेक्टर बनाने के लिए 1.5 लाख तक वो बनाने का खर्चा हो जाता है। उसके बाद आउटलेट, इनलेट और एरेटर का ऐसा 3.5 लाख तक का एक तालाब बनाने में खर्चा लग जाता है। और हम लोग, हमारा खाड़ी खनाई क्रिक पड़ता है, उधर सिचुएशन के हिसाब से हमको फरवरी में स्टॉक करना पड़ता है और बारिश आएगा उसके बाद हम लोग हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो चार महीने का हार्वेस्टिंग कल्चर है, उसमें एरेटर, लेबर और फीड सीड का ये सब खर्चा मिलके 20% तक मिल जाता है।
1: दोस्तों, मछली पालन हो या झींगा पालन हो, तालाब में ऑक्सीजन का लेवल बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं रोहित जी से कि मछली पालन के और झींगा पालन के इस क्षेत्र में उन्होंने अपने तालाबों में ऑक्सीजन का लेवल कैसे मेंटेन किया है और बाकी किसानों के लिए वो क्या कुछ सलाह दे रहे हैं। अगर आप भी मछली पालन करना चाहते हैं तो इस चीज पर आपको बहुत बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है।
2: स्थित इन तालाबों के किनारे आप जो मशीनें देख रहे हैं, इन्हें एरिएटर कहते हैं। ये तालाब में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं। आमतौर पर एरिएटर को समय समय पर चलाते रहना चाहिए, लेकिन अगर आसमान में बादल छाने पर तालाब में जाकर देखें कि मछलियां पानी से बाहर मुंह तो नहीं निकाल रही, अगर ऐसा है तो ये पानी में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण है। ऐसे में तालाब में ऊंचाई से पानी गिराएं या ऑक्सीजन एरिएटर दिन में 2 से 3 बार चलाएं। इसका एक और फायदा है कि अगर तालाब में गंदगी एकत्रित हो गई है तो एरिएटर की सहायता से उसे आसानी से निकाला जा सकता है। इसके साथ ही मछली पालकों को चाहिए कि तालाब में जल स्तर को बनाए रखें, जिससे मछलियों को तैरने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके।
3: ट्रैक्टर देखने के बाद हम लोग एरेटर चलाते हैं, ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करने के लिए एरेटर चलाते हैं। 4 टाइम फीड डालते हैं और उसके बाद वो कितना कंज्यूम हो गया वो देखने के बाद फिर एरेटर चलाते हैं। एरेटर घूमता है तो उसका स्लज सेंटर एरिया में जमा हो जाता है, वो हम स्लज पंप से फिर बाहर निकालते हैं।
1: दोस्तों, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कैसे एक सफल मछली पालक मछली पालन क्षेत्र से जुड़कर कितना मुनाफा कमा सकता है और रोहित जी सालाना कितना मुनाफा कमा रहे हैं। आप बने रहें।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मछली पालन में अपार संभावनाएं हैं, अच्छा खासा मुनाफा किसान भाई से कमा सकते हैं। आइए अब जानते हैं रोहित जी के सालाना मुनाफे के गणित के बारे में।

0: इतने बड़े पैमाने पर मछली व झींगा पालन करने के लिए रोहित जी ने कई लोगों को काम पर रखा है, जो तालाब में आहार डालने से लेकर इन्हें बाजार भेजने तक की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। रोहित बताते हैं कि उनके यहाँ तैयार मछलियाँ बाजार में करीब 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची जाती हैं। एक तालाब से उन्हें 2 से 2.5 क्विंटल तक उत्पादन मिल जाते हैं। इसके अलावा झींगा पालन से भी बढ़िया आय हो जाती है। सालाना आय को देखा जाए तो रोहित जी की आय करीब 1.5 करोड़ जाती है। माल बेचने के लिए भी रोहित को मशक्कत नहीं करनी पड़ती। उनका माल सप्लायर के माध्यम से एक्सपोर्ट किया जाता है।
1: मार्केट तो एक्सपोर्ट क्वालिटी है, इसलिए एक्सपोर्टर को ही देना पड़ता है। हम लोग फार्मर है, इसलिए कल्चर करके उसको सप्लायर को देते हैं, सप्लायर फिर एक्सपोर्टर को देते हैं। वह साल हम लोग हार्वेस्टिंग किया था, उस टाइम 460 का रेट मिला था। हाँ, उसमें थोड़ा प्रॉफिट 50% तक रहता है, और 1 पाउंड में 3 टन तक, 3-4 टन ऐसा प्रोडक्शन निकलता है, और 150 रेट पर केजी मिलता है। और दूसरा हमारा फार्म है फ्रेश वाटर का, यहाँ हम फिश का कल्चर करते हैं, और उसके लिए जो छोटा बच्चा है वो हम हेचरी से लेके आते हैं, और उसको पहले 1 साल तक 1 पाउंड में रखता है, और वो 100 ग्राम का हो जाएगा उसके बाद उसको कल्चर पॉन्ड में ट्रांसफर करते हैं। वहाँ 6 महीना तक उसको फीडिंग कराना पड़ता है और पानी का लेवल मेंटेन करना पड़ता है, तो 6 महीने में वो 1 किलो तक हो जाता है। हमारे पास अभी 40 पॉन्ड है, लेकिन 20 पॉन्ड में ही हम लोग कल्चर कर पाते हैं, क्योंकि पूरा साल हमारे पास पानी का दूसरा कोई सोर्स नहीं है, कैनाल वाटर का फैसिलिटी नहीं है, बोर में थोड़ा सलाइन वाटर है, इसलिए बारिश का पानी से ही हम लोग फ्रेश वाटर फिशरी मछली पालन कर रहे हैं। और बनाने का तो खर्चा 1.5 लाख तक हो जाता है 1 पॉन्ड बनाने में, और उसमें इनलेट आउटलेट और फीस का सीड और फीड लेबर सब मिला के इतना 50% तक रह जाता है, तो 1 तालाब में 3-3.5 लाख 4 लाख तक का प्रोडक्शन होता है।

0: रोशनी।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, ये वो महफिल है जहाँ गीत सिर्फ बजते नहीं, जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। यहाँ हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, ठोकरें खाई, हौसले संभाले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड, जहाँ हम मुलाकात करते हैं उन लोगों से जिनकी जिंदगी खुद एक कहानी, एक सफर और एक प्रेरणा होती है। आज हमारी मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने रसोई को सिर्फ कुकिंग तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे कल्चर, स्टोरी टेलिंग और ह्यूमन कनेक्शन का एक खूबसूरत माध्यम बना दिया। शेफ, एंटरप्रेन्योर, एजुकेटर और जयपुर होम कुकिंग की फाउंडर शेफ पायल बियानी पिछले एक दशक से दुनिया भर के लोगों को भारतीय शाकाहारी भोजन की समृद्ध परंपरा से रूबरू करा रही हैं। जयपुर की पहली और अनोखी मार्केट टू टेबल टूर की शुरुआत करने वाली पायल जी ने न सिर्फ कुकिंग सिखाई, बल्कि राजस्थान की भोजन की परंपराओं को एक जीवंत अनुभव में बदल दिया। फिलोसफी में मास्टर्स डिग्री, न्यूजीलैंड से प्रोफेशनल कुकरी डिप्लोमा, इटली में कल्नरी ट्रेनिंग और अपने सफर में अनेक प्रयोगों के साथ पायल जी ने कुकिंग को एक कला और जीवन दर्शन दोनों बनाया है। शेफ पायल बियानी जी का जिंदगी अनप्लग्ड में दिल से स्वागत है। तो पायल बियानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी अनप्लग्ड प्रोग्राम में। कैसा महसूस कर रहे हैं मैम?
2: नमस्कार जी। नमस्कार जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपने आपने मुझे इनवाइट किया आपके इस प्रोग्राम में, आपके जो लिसनर्स हैं उनके साथ मुलाकात के लिए, एक वर्चुअल मुलाकात के लिए आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच
1: जी। हमारी पूरी SN रेडियो की फैमिली बहुत एक्साइटेड है आज आपसे बातचीत करने के लिए, आपको सुनने के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ, जैसे मैंने बताया, बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने गैदर किए हैं जीवन में। तो हम चलते हैं और शुरू करते हैं आपके करियर से ही, जहां पे आपने फिलोसफी में मास्टर्स किया, जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग लगा, और उसके बाद फिर आपने प्रोफेशनल कुकरी को अपना करियर बनाया। तो इन दोनों में पैरेलल क्या है मैम, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि फिलोसफी और कुकिंग को अगर हम देखते हैं तो देखने में अलग लगते हैं, बट इनका एक एक कॉमन ग्राउंड है कहीं ना कहीं, जहां पे लोगों को जीवन का स्वाद समझाना इन दोनों करियर पाथ्स या इन दोनों फील्ड्स का पर्पस है। तो आप इन दोनों में कैसे पैरेलल ड्रॉ करते हैं और कैसे फिलोसफी से आप कुकिंग की तरफ आए?
2: देखिए तनुषा जी, पढ़ी तो वो वैसे टेक्स्ट बुक होता है, सब आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ते पढ़ते मतलब मैंने ग्रेजुएशन भी फिलोसफी के साथ में की है एज अ माइनर, बट फिर मैंने मेजर सब्जेक्ट लेके मास्टर्स किया था। सो पढ़ने के दौरान ही हमारे डिस्कशंस होते थे, बिकॉज फिलोसफी यूजुअली जब क्लासेस होती है तो डिस्कशन क्लासेस होती है, देर इज नो राइटिंग क्लास, उसमें कुछ लिखवाया नहीं जाता, कुछ नोट्स नहीं मिलते, सिर्फ डिस्कशंस होते हैं टॉपिक पे। फिलोसफर्स जो होते हैं वो फिलोसफी की बात करते करते, आप जब पढ़ाई करते करते जब खत्म करते हैं, तब तक आपको ये रियलाइज होने लग जाता है कि जिंदगी में हर चीज में फिलोसफी है। हर चीज में आप कुछ भी चीज, कोई काम करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, कोई या आप लाइफ में कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, हर चीज के पीछे एक फिलोसफी होती है। तो जिसको हम बहुत कॉमन भाषा में एक आइडिया बोलते हैं, आइडिया। सो हर चीज का एक आइडिया होता है जो कि वर्चुअल होता है, जो कि जिसे आप कहते हैं इमेजिनेटिव होता है, और वो आउट ऑफ द जो भी कुछ आप ठोस में बनाने वाले हैं, जो भी आप प्रैक्टिकली बनाने वाले हैं, वो उसका एक फॉर्म होता है जो आपके दिमाग में बनता है।
1: जी
2: बाकी फिलॉसफी हर चीज के पीछे होती है, पेड़ उगाने के पीछे फिलॉसफी होती है, घर बनाने के पीछे फिलॉसफी होती है, परिवार बनाने के पीछे फिलॉसफी होती है, रिलेशन बनाने के पीछे, कुछ भी चीज, एनी थिंग, यू जस्ट पिकअप एनी सब्जेक्ट, एनी रिलेशनशिप, एनी कुछ भी चीज आप उठा के दुनिया में से देखेंगे, उसके पीछे कोई फिलॉसफी जरूर होती है। साइंस के पीछे भी फिलॉसफी होती है।
1: बिल्कुल।
2: तो कुकिंग इसी तरीके से, यू नो, कुकिंग भी एक ऐसा चीज है जो कि हमने, मतलब ह्यूमन बींग्स की एक ऐसी स्किल है जो हम लोगों ने इतने अपने जितना भी डेवलपमेंट हुआ है हजारों साल करोड़ों सालों का, उसका एक स्किल डेवलप है। कुकिंग के पीछे भी एक फिलॉसफी होती है।
1: राइट।
2: वही चीज, उसी चीज ने मेरे को इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाने का, एक मतलब मैं एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज पे कैसे आई उसमें हेल्प कर।
1: हाँ,
2: तो मैं वो, हाँ मतलब मैं उस तरीके से अपने प्रोफेशन को देखती हूँ।
1: Right.
2: तो फाइनली इसको मैंने अपना प्रोफेशन बना लिया।
1: वाओ, हाउ ब्यूटीफुल
2: अबाउट दैट। या
1: अमेजिंग अमेजिंग जर्नी, और बहुत ही खूबसूरती से आपने दोनों में पैरेलल ड्रॉ किया। जीवन में हर चीज में फिलॉसफी है, हर चीज में एक फलसफा है। बहुत ही सही बात है। और कैसे एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की जर्नी है ये बेसिकली हर चीज में। तो हम बहुत हैप्पी हैं कि आप कुकिंग की तरफ आए, क्योंकि हमें आपके बहुत अमेजिंग खाने का जायका चखने को मिल रहा है। अब आगे चलते हैं मैम, आपने बहुत सारे लोगों को इंडियन वेजिटेरियन कुजीन सिखाई है, तो आप और आपने बहुत सारे फॉरेनर्स के साथ भी डील किया है। बेसिकली आपका क्लाइंटेल जनरली फॉरेन क्लाइंट्स ही रहे हैं, जिस तरह का आपका कैरियोग्राफ रहा है। तो आपके अनुभव में जब आप किसी फॉरेन गेस्ट से पहली बार इंटरेक्ट करते हैं एक ट्रेडिशनल इंडियन किचन सेटअप में, तो उन्हें सबसे ज्यादा क्या अट्रैक्ट करता है आपके एक्सपीरियंस में? वो रेसिपीज से अट्रैक्ट होते हैं, मसालों से हमारे अट्रैक्ट होते हैं, हमारी मेहमान नवाजी से अट्रैक्ट होते हैं, या इन सबका एक ब्लेंड होता है?
2: एक्चुअली देखिए, वैसे हमें इसमें थोड़ा सा, मैं अपना मतलब जब आप फर्स्ट टाइम, हम क्योंकि हम मैं फर्स्ट टाइम मिल रही होती हूँ बिल्कुल ही, मतलब मेरे से कोई इंट्रोडक्शन नहीं है किसी का भी। जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो जिंदगी में मेरे से पहली बार मिल रहे हैं। अधिकतर रिपीट क्लाइंट होते हैं, वो अलग बात हो गई। बट जब मैं पहली बार किसी से मिलती हूँ और वो कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आया है कि कुछ वो भारतीय खाना इंजॉय करेगा, यू नो, कुछ हम खाएंगे, कुछ नई जगह का नया कल्चरल फूड हमें मिलेगा, तो उसके उसका जो फर्स्ट जो उसके दिमाग में जो भी पिक्चर्स होती हैं वो होती हैं बढ़िया सी सुंदर सी थाली, कुछ बढ़िया सा सुंदर सा कुछ चीजें, कुछ इंटरेस्टिंग, समथिंग न्यू विच ही हैज नॉट एक्सप्लोर्ड। बट जो उनको, यू नो, सबसे ज्यादा जब हम प्रोसेस चालू करते हैं अपना, पहले हम यू नो चीजें दिखाते हैं उनको, मार्केट लेके जाते हैं, वो सब चीजें करते हैं, तो सबसे ज्यादा मजा आता है हमारे मसालों को देख के। सबसे एक्साइटमेंट उनको किसी चीज से होता है, अगर मैं आपके प्रश्न का सही जवाब दे रही हूँ, तो वो मसालों से होता है। क्योंकि हर दुनिया में हर खाने में मसाले होते हैं, बट जिस तरीके से भारत के अंदर भारतीय पारंपरिक भोजन में जो मसालों का समागम हुआ है, जो उसका इंटीग्रेशन हुआ है, वो यूनिक है।
1: बिल्कुल।
2: सो आई थिंक सो फ्रॉम फर्स्ट मोमेंट टू द लास्ट मोमेंट ऑफ आवर होल एक्सपीरियंस, जो चीज उनको बार बार एक्साइट करती है वो मसालों का इंटीग्रेशन है। सो एंड देन यू नो दैट दैट गिव्स देम

0: क्या खूबसूरत गीत हैं, क्या खूबसूरत गीत हैं ये, सच में जीवन के छोटे छोटे फलसफे हैं। और क्या गायकी है मुकेश साहब की, बहुत ही उम्दा। वेलकम बैक पायल मैम।
1: धन्यवाद।
0: आगे चलते हैं। आपने पहला जयपुर का एक बहुत ही अनोखा अनूठा सफर शुरू किया जिसको हम मार्केट टू टेबल टूर बोलते हैं। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मार्केट टू टेबल टूर होता क्या है हमारे श्रोताओं के लिए, और मेरा दूसरा सवाल इसी के अंदर छुपा हुआ है तो वो ये है कि जयपुर की किसी सब्जी मंडी, किसी मसाले की दुकान या किसी पुरानी गली को अगर एक आवाज मिल जाए तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप उन गलियों में इतना घूमते हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस है वहां की ग्राउंड रियलिटीज और सब यू नो माहौल का, तो आपको क्या लगता है कि हमें राजस्थानी खाने के बारे में क्या कहानी सुनाएंगी वो गलियां?
1: तो तनुषा जी, अगर आपके सवाल का जवाब मैं शुरुआत से शुरू करती हूँ कि हम इसको मार्केट टू टेबल टूर क्यों कहते हैं, जैसा कि लिटरल मीनिंग है

0: दिन भर का सफर होता है वो क्या होता है, वो सामान खरीदती है, मंडी जाती है, सामान खरीदती है, आज की सब्जियां खरीदती है, कुछ मसाले वगैरह, कुछ तेल घी, जो आपके मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं आटा वगैरह, सब चीज खरीद के थैले में भर के घर लाती है और फिर उससे सोचना चालू करती है कि अब चलिए क्या बनाया जाए। तो ये छोटा सा सफर वही दिखाता है, हम वही करते हैं और ये बिल्कुल मार्केट टू टेबल है, जैसे उस खाने का सफर जो मार्केट से चालू हुआ और आपकी टेबल पे आके खत्म हुआ। तो ये तो आपके ये तो हमारे ने अपने मतलब हमारे नाम के पीछे की कहानी बताई आपको
1: जी।
0: और जैसा कि आपने पूछा कि राजस्थान की गलियां या मार्केट्स या हमारी मंडियां हमें क्या क्या क्या कहानी कहती होंगी, तो वो आपको कहेंगी कि इतनी इतनी बंजर जमीन जो है राजस्थान की जमीन बहुत ही मुश्किल ज्योग्राफी है, बहुत ही टफ ज्योग्राफी कहलाती है, बहुत ही मुश्किल जगह है, बहुत आसान, बहुत आसानी से यहाँ कुछ भी नहीं होता।
1: बिल्कुल।
0: सो हमने जो भी कुछ अनाज, जो भी कुछ वनस्पतियां, जो भी कुछ सब्जियां या उगती हैं, तो साल में अब तो बहुत फर्क आ गया टेक्नोलॉजी की वजह से, बट ओरिजिनली जो देखा जाए कि हमारा खाना जो है वो बहुत ही मुश्किल से पाई हुई छोटी छोटी कम चीजों का बनाया हुआ बड़ा ही स्वादिष्ट मेल है।
1: बिल्कुल।
0: तो लेस इंग्रेडिएंट्स एंड मोर फ्लेवर्स।
1: बिल्कुल।
0: तो सारी कहानी उसी की है, सारी कहानी उसी की है कि कम चीजों में यहाँ की महिलाओं ने, जो कि एक्चुअल में जिनको जो सबसे बड़ी शेफ है दुनिया की, वो एक्चुअली इसीलिए यू नो लेडीज हैं, उन्होंने हमेशा से खाने की परंपरा को बहुत रिच बनाया, बहुत रिच बनाया। उनके पास कुछ भी नहीं होता, आज छाछ है तो वो छाछ से आपको कड़ी बना देंगी, आज यू नो खाली प्याज बची है तो वो रोटी इतनी स्वादिष्ट बनाएंगी कि रोटी के साथ तो वो प्याज ही अच्छी लगेगी। सो हम राजस्थान का व्यक्ति जो है ना, वो बहुत खाना जो उसका है बहुत सादा खाना है।
1: बिल्कुल।
0: कम चीजों में वो संतुष्टि पाता है। सो हमारे जो भोजन है, हमारा जो राजस्थान का जो पारंपरिक भोजन है, वो उसकी कहानी असली यही है, कम चीजों में बेहद जिंदगी का स्वाद।
1: बिल्कुल। सादा जीवन, सरल जीवन, सुंदर जीवन।
0: एब्सोल्युटली।
1: आगे चलते हैं मैम, आपने बहुत तरह के पिकल्स और सॉसेस में एक्सपेरिमेंट किया है, आई थिंक 12 पिकल्स की एक रेंज है आपके पास।
0: yes.
1: तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप फिलोसफी भी पढ़ चुके हैं, तो एक बहुत फिलोसफिकल सा सवाल है कि अगर जिंदगी को एक आचार की बरनी माना जाए तो उसमें कौन से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो जरूरी हैं ताकि वक्त के साथ उसका स्वाद और बेहतर होता जाए।
0: क्या बात, और क्या बात?
1: इसी के साथ एक और सवाल मैंने इसमें जोड़ दिया है, एक कोई आपके फेवरेट अचार की अगर रेसिपी आप बता सके तो हमारे लिसनर्स नोट डाउन कर लें।
0: ओके जी। सो चलिए, पहले आपको देखा जाए अचार का मतलब, सो अचार और लाइफ को अगर एक सेम मायने में रखा जाए तो अचार की बरनी और लाइफ की बरनी, अचार में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, 3 मेन चीजें हैं जिसकी वजह से कोई भी चीज अचार बनती है। उसमें फर्स्ट है नमक, सेकंड है ऑयल तेल, और तीसरी चीज है मसाले। अगर आप इसको थोड़ा सा डिफाइन करें तो नमक क्या काम करता है, नमक बेसिकली उसको मतलब जो भी आपने इंग्रेडिएंट का अचार डाला है उसका उसको गलाता है, उसको इंग्लिश में उसको कहते हैं क्योर करना, उसको आगे वो उसका प्रोसेसिंग करता है उसके अंदर, राइट
1: जी।
0: और तेल जो होता है वो उसको बाहरी आबो हवा, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, हर चीज से दूर रखता है, तो वो बेसिकली प्रिजर्वेशन का काम करता है।
1: बिल्कुल।
0: और जो मसाले होते हैं वो उसका स्वाद बढ़ाते हैं।
1: क्या बात है।
0: तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं अचार के, राइट। अगर इसको हम लाइफ के रूप में देखें तो लाइफ का जो नमक है वो है परिपक्वता, मैच्योरिटी,
1: ब्यूटीफुल,
0: राइट। तेल जो प्रिजर्वेशन का काम करता है, मेरे हिसाब से जिंदगी में आपको प्रिजर्व, आपकी लाइफ के सारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस के जो इफेक्ट्स हैं उनसे प्रिजर्व आपको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी कर सकती है, तो आध्यात्मिकता आपको आपका तेल बन जाता है,
1: ल्यूब्रिकेंट है। यस जी।
0: सो इट्स सो यू नो इन टर्म्स ऑफ अचार, इट्स गोइंग टू प्रिजर्व यू, इट्स गोइंग टू सेव यू फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स,
1: एब्सोल्युटली
0: आउटसाइड इफेक्ट्स, सो इट विल कीप यू जस्ट द वे यू आर, प्योर,
1: राइट।
0: देन आपकी लाइफ का जो

0: जो स्वाद है वो बढ़ेगा आपके एक्सपीरियंसेस से, आपके हंसी खुशी के पल, सुख दुख के साथ, आपकी मेमोरीज, ये सब चीजें लाइफ का स्वाद बढ़ाती है। सो इन तीनों का सही मिश्रण, कुछ भी चीज ज्यादा नहीं, कुछ भी चीज कम नहीं, तो अचार की फिलॉसफी आपको लाइफ में ऐसे काम आएगी।
1: बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने हमें समझाया, और बिल्कुल सच है कि सच में एक आचार की बरनी और जीवन जिंदगी में बहुत पैरेलल्स हैं, और ये तीन चीजें जो हैं वो सच में जीवन को जीवन बनाती हैं। खूबसूरती से आपने इसका जवाब दिया मैम। इसी के साथ अगर आप एक रेसिपी बता दें हमारे श्रोताओं के लिए तो।
0: अच्छा चलिए, बड़ा क्विक तो होता है, सबसे आसान होता है हरी मिर्च का अचार।
1: जी
0: हरी मिर्च का बहुत ही आसान होता है, कोई भी बना सकता है। बट अगेन कॉम्पोनेंट्स वेरी सेम सिमिलर, आपको नमक चाहिए, हरी मिर्चियां बढ़िया सीजनल चाहिए। सो अगेन जो भी अचार आप डालेंगे उसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत सीजनल होना चाहिए। जो वेजिटेबल या फ्रूट आप जिसका भी अचार डाल रहे हैं या जैम बना रहे हैं उसको बहुत सीजनल होना चाहिए, वो उसी सीजन में उगा हुआ हो और बेस्ट क्वालिटी हो। तो बढ़िया हरी थोड़ी सी पकी हुई मिर्चियां, मतलब हम थोड़ा सा उसकी पतली होनी होती है, मैं ज्यादा डीप नहीं जा पाऊंगी आपके साथ इस समय, समय की उसके वजह से। तो हरी मिर्चियों को आप स्लिट कर सकते हैं बीच में से एक चीरा लगा करके, पुछी हुई हरी मिर्ची, हाथ से कपड़े से पुछी हुई हरी मिर्ची को आप फटाफट चीरा लगा के एक प्लेट में रख दीजिए। तो पाव भर हरी मिर्चियां आपने ली है, उसके अंदर आप 50-50 ग्राम तीन मेन चीजें मिला सकते हैं। थोड़े से भुने हुए मसाले हैं ये, सो राई जो खटाई पैदा करेगी, सौंफ जो स्वाद लाएगा, और थोड़ी सी एक चम्मच दाना मेथी।
1: जी
0: ये आपके मसाले हैं। इसके अलावा नमक, लाल मिर्च और हल्दी, ये आपका कलर और उसकी शार्पनेस बनाएगी। और इन सबको पिसे हुए मसालों को आप मिला करके थोड़ा सा तेल के साथ में एक गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे हम। एक चम्मच सिरका आप इसमें डाल सकते हैं ताकि वो थोड़ा प्रिजर्व हो जाए। एक चीज जो हमने पहले बात करी थी, नमक, वो इसमें डलेगा। सो नमक थोड़ा सा बाकी मसालों से ज्यादा पड़ता है, आपने आम खाने से ज्यादा पड़ेगा, हम ये ना सोचे कि नमक तेज हो जाएगा, क्योंकि नमक इसको पकाएगा इस अचार को। सो आम आम एवरीडे रेसिपीज से आप नमक थोड़ा सा डबल लिखिए। इन सब चीजों को आप मिला के पेस्ट सा बना के हरी मिर्ची के बीच में जो स्लिट बनाया है उसके अंदर आप भर दीजिए, और इनको एक जार के अंदर आप सूखा बिल्कुल कांच का जार ट्रांसपेरेंट उसके अंदर आप लगा दीजिए। एक एक करके स्टैंडिंग खड़ी कर सकते हैं या दबा सकते हैं एक के ऊपर एक स्टैक करके। फिर तेल को हम सरसों के तेल को गर्म करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, और फिर इस जार के अंदर ऊपर तक लबालब भर देते हैं ताकि ऊपर कोई उसका कोई एयर पॉकेट ना रह जाए, और जार को आप कस के टाइटली बंद करके 12 घंटे के लिए तपती हुई धूप में, मतलब खुली हुई धूप होनी चाहिए, प्योर दिन होना चाहिए, अच्छा बढ़िया साफ, उसमें आप रखिए और अगले दिन आप उसको एंजॉय कीजिए।
1: अरे वाह, मेरे तो मुंह में स्वाद आ गया, मेरे दिमाग में पिक्चर आ गई, मेरी प्लेट एक पराठा और उसके ऊपर ये अचार,
0: उसके ऊपर एक बढ़िया सी लंबी सी मिर्ची।
1: बिल्कुल बिल्कुल स्वाद आ गया सच में। और श्रोताओं, जैसे आपने सुना बहुत ही क्लैरिटी से हमें ये रेसिपी मिली है, आई होप आपने नोट डाउन की हो, तो आप इसे जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई करिएगा। मैम इसी मोड़ पे, इसी चटपटे अचार के स्वाद में हम एक और गीत का ब्रेक लेंगे। अगर एक और गीत की फरमाइश मैं आपसे करना चाहूँ तो वो कौन सा होगा?
0: एक मूवी है, बहुत ही खूबसूरत मूवी जिसपे, जो एक्चुअली बुक से बनी है, आर के नारायण जी की बुक है गाइड
1: जी,
0: और उसी के ऊपर देवानंद जी ने एक मूवी बनाई थी गाइड के नाम से। एस जी बर्मन का इसमें संगीत है और ये गाना उन्हीं का गाया हुआ है
1: जी।
0: वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ,
1: ब्यूटिफुल अनदर फिलोसॉफिकल सॉन्ग। यस
0: जी, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ।
1: खूबसूरत खूबसूरत। चलिए सुनते हैं एक और बहुत ही सुंदर गीत जो पूरी जीवन का एक सार है, एक फलसफा है, और ये खैर फिल्म भी, जैसे कि मैम ने बताया, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, फ्रॉम द फिल्म गाइड।

ना आई, कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक पायल मैम।
1: नमस्ते जी।
0: एक और बहुत ही खूबसूरत गीत सुना हमने, आगे चलते हैं। मैम, आपने बहुत सारे अचीवमेंट्स लाइफ में, पढ़ाव आपने पार किए हैं, अचीवमेंट्स आपने रहे हैं आपके, जैसे न्यूजीलैंड में आपने प्रोफेशनल कुकरी की पढ़ाई की, इटली में आपने हैंड्स ऑन कल्नरी ट्रेनिंग की, कैलिफोर्निया वॉलनट्स के प्रमोशनल इवेंट्स में काम किया, सेलिब्रिटी शेफ वरुण इमामदार के साथ आपने कोलैबोरेट किया और विवाना कल्चर होटल के लिए एक स्पेशल शेखावटी मेन्यू क्यूरेट किया। तो इतनी सारी जब उपलब्धियां रही हैं आपकी इंटरनेशनल एंड नेशनल, तो उन सबके बीच में आपके दिल के लिए, आपके दिल के सबसे करीब, जिसको आप सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे एक प्राइज्ड आपका पोजेशन है, वो मेमोरी या वो अचीवमेंट कौन सा है आपके जीवन का?
1: तनिषा जी, मैं आपका क्वेश्चन बड़ा ही खूबसूरत है, बट मैं आपको मैं कहना चाहूंगी कि मेरे लिए कभी भी अचीवमेंट्स, उपलब्धियां बहुत ही मायने नहीं रखे। वो सब चीजें इन्होंने ऑब्वियसली ये आपके बहुत ये ये पड़ाव होते हैं जिंदगी के, और मैं इसको ऐसा मानती हूँ कि ये बहुत ही बहुत मैं वर्ड जैसे जो कहते हैं अपन मंडेन है, बहुत ही कॉन्सेप्ट है ये अचीवमेंट्स मेरे लिए पर्सनली। मुझे ऐसा लगता है दुनिया में किसी को भी अपने अचीवमेंट्स पे खुशी होनी चाहिए, बट वो बहुत दिन तक उस चीज का कोई फायदा नहीं होता। उस चीज का कोई आपकी लाइफ में कोई उस चीज का असर नहीं होता, क्योंकि सिर्फ उसका अनुभव जो है, जो आप अचीव कर रहे हैं उस समय जो आपको अनुभव होता है, जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं तो आपका डेस्टिनेशन एक खत्म हुआ है और उसका एक अनुभव होता है, वो कुछ क्षणों का होता है और उसके बाद में वो गुल हो जाता है,
0: बिल्कुल बबल फ्लेम जैसा
1: बंद होता है। तो वो अचीवमेंट कोई मिलना, किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस, कोई भी ऐसी कोई चीज उपलब्धि हासिल करना, वो एक क्षण होता है और वो क्षण गुजर जाता है।
0: करेक्ट।
1: लेकिन मैं उसको मानती हूँ कि जिंदगी के जैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं और ये कहीं आप पहुंचते हैं तो कभी आपको बहुत सुंदर वैली मिलती है, कभी कोई बहुत बड़ा कोई चीज, कोई मोड़ पे आपको सुंदर झरना मिल गया। तो ये मेरे लिए लाइफ में वैसी चीज है जिनको मैंने देखा, उनसे उस समय अनुभव लिया, अपने आप को गेन किया और मैं आगे बढ़ गई।
0: सो
1: इस तरीके से मैं इसी तरीके से देखती हूँ। बट इसके उसके साथ साथ मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपके साथ में रह जाते हैं ना, वो आपको इनसे मिले हुए दोस्ती, इनसे मिला हुआ प्यार, इनसे मिली हुई इज्जत, तो आपकी उपलब्धियों से जो भी ये चीजें आपको अगर मिलती हैं तो वो आपके साथ जरूर एज अचीवमेंट चल सकती है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि इटली से मैंने वहां पे अपना एक्सपीरियंस लिया रह के वहां के लोगों के साथ में, तो उनसे मैंने खाने से रोमांस करना सीखा है। तो वो लेडी, उससे मैंने खाने से प्यार करना सीखा। मेरा प्रोफेशनल डिप्लोमा, मेरी जो पढ़ाई हुई, उसने मुझे किचन में डिसिप्लिन सिखाया। जो इवेंट्स और बड़े लोगों के साथ, बड़े शेफ्स के साथ में या बड़ी कंपनीज या रेस्टोरेंट्स के साथ काम किया, तो वो मेरे लिए उन्होंने मेरे को एक्सपीरियंस दिया है किचन के लिए। सो एज अ प्रोफेशन उन्होंने मेरे को एक्सपीरियंस दिया है कि किस तरीके से क्या चीजें हैंडल की जाती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अगर मैं सच में कहूँ तो मेरा अचीवमेंट, अगर मैं कभी अपनी जिंदगी में आखिरी मोमेंट पे अपने आप को मानूंगी कि मैंने कुछ हासिल किया है, तो वो होगा दो मेरे बेटे। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उनको अच्छा इंसान और संवेदनशील व्यक्ति बना पाई और जो हमेशा खुश और एक संतुष्ट ह्यूमन बीइंग बने, तो वो अभी वो टीनेजर्स ही है, अभी बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। सो अगर मैं कभी अपने आप को ये मान पाऊंगी कि मेरे अचीवमेंट्स अच्छे रहे, तो मैं सिर्फ वो दो इंसानों को बड़ा करके एक अच्छा इंसान बना पाई, उसमें एक अपना अचीवमेंट मानूंगी और वो मेरे सबसे प्राइज्ड पोजिशन होंगे।
0: ब्यूटिफुली आंसर्ड, बहुत ही स्पिरिचुअली आंसर्ड। सच है कि ये सब चीजें ट्रांजिएंट होती हैं, इनके पीछे जो रह जाते हैं वो सच में लोग हैं जो हमें मिलते हैं सफर में, जो हमें निखारते हैं अपने सफर के लिए। और ऑफ कोर्स योर ब्यूटिफुल सन्स, अगर उनके नाम मैं जान पाऊं तो हमारी एसएन फैमिली उनको हेलो कहना चाहेगी।
1: मेरे बड़े बेटे का नाम है नभास.
0: वाओ
1: नभास. या नभास, नभास का मतलब होता है नभ और ओस,
0: आकाश और ओस,
1: आकाश में ओस. तो आकाश की मिस्ट, अगर इंग्लिश में सिंपली बोलना चाहे तो मिस्ट उसका मतलब होता है.
0: ब्यूटिफुल.
1: एंड द सेकेंड वन ही इज नेम्ड एज कुशाग्र.
0: वाओ.
1: So it is because of its intellect. So Kushagra is basically intellect.
0: जी. बहुत ही खूबसूरत नाम है. तो नाभास और कुशाग्र, आपको पूरी SN रेडियो फैमिली की तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कि आपकी मदर आज यहाँ पे हैं. हम सब उन्हें सुन पा रहे हैं और वो इतनी ब्यूटिफुल एक पर्सनैलिटी है. तो आपको बहुत कंग्रेचुलेशन टू हैव अ मदर लाइक हर एंड इन योर लाइफ एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेज आपके फ्यूचर के लिए. गॉड ब्लेस यू.
1: थैंक यू.
0: आगे चलते हैं मैम. आजकल सोशल मीडिया पर फूड की बहुत ही खूबसूरत फोटोग्राफ्स वायरल होती हैं. बहुत सारी रेसिपीज का भरमार है, फ्लड है एक्चुअली बेसिकली. तो अब आपके हिसाब से अच्छे कंटेंट और अच्छे खाने में क्या फर्क है? आई एम श्योर बहुत फर्क है. तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं हमें. और क्या कभी हम प्रेजेंटेशन के चक्कर में, सिर्फ दिखावे के चक्कर में जो एक्चुअल इमोशंस हैं, जो एक्चुअल टेस्ट है वो खो देते हैं खाने का?
1: बिल्कुल. मैं आपका सवाल पीछे से चालू करूंगी.
0: जी.
1: आपने जो बात बोली कि हम प्रेजेंटेशन के चक्कर में खाने का स्वाद खो चुके हैं. तो अगर आप आज किसी सोशल इवेंट में जाते हैं तो एक ही चीज मायने रखती है, उसका प्रेजेंटेशन. उसकी उसका वो मुंह में कैसा स्वाद कर रहा है, ये बहुत बाद में आता है. द फर्स्ट थिंग इज हाउ इट इज प्रेजेंटेड. ये तो बड़ी बात हो गई. मतलब प्रोफेशनल जगह है, आप उसकी बात पार्टी है, कोई बात कर रहे हैं उससे भी. बट अगर आप किसी के घर भी जाते हैं, द फर्स्ट थिंग उनको जिस चीज के डर रहता है वो है कि चीजें दिखने में कैसे प्रेजेंटेड है टेबल के ऊपर. जो पुराने जमाने में नहीं हुआ करता. पुराना जमाना नहीं, बहुत पुरानी बात नहीं कर रही मैं. 10-12-15 साल
0: की.
1: तो अपने अपने दोस्तों के घर या अपने रिश्तेदारों के घर अगर आप जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपकी यू नो आपसे एक्सपीरियंस करती थी वो थी खुशबू. आप घर में घुसे हैं तो एंटर करती सबसे पहले खुशबू आती थी. क्योंकि वो खाना वही बना है और कुछ घंटों से वहां पे प्रिपरेशन चल रही है, पिसाई हो रही है, धुलाई हो रही है, तलाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है. तो वो घर की आबो हवा में फैल जाता है और बाहर तक पड़ोसियों को पता लग जाता है कि साहब आज तो कोई
0: ये बना है आज ये बना है.
1: खास बात है, कोई खास बात है,
0: कोई आ रहा है, यस यस,
1: या कोई मेहमान आ रहा है. नहीं तो कोई ना कोई खुशखबरी है साहब. इसलिए जो मैं बड़ी कहानियां हमेशा ये सुनाया करती हूँ अपने गेस्ट को कि भाई अगर घर में पूरी बन रही है और हलवे बन रहे हैं तो इसका मतलब घर में खुशखबरी है.
0: खुशखबरी है,
1: है? तो ये हमारे यहाँ खाना एसोसिएट होता था फ्लेवर से, उसकी खुशबू से, उसकी महक से, उसके इमोशन से, राइट?
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: अब प्रेजेंटेशन जहाँ तक आती है वो प्रोफेशनली जरूरी होता है, होटल में जरूरी है. क्योंकि मैं उस शेफ को नहीं जानती हूँ जिसने वो खाना बनाया, लेकिन मैं उस चाटी को जानती हूँ जिसने मेरे लिए आज लंच प्रिपेयर किया. यू नो आप समझ रहे हैं उस रिलेशनशिप को.
0: बिल्कुल.
1: तो जो शेफ है वो उन्होंने बहुत खाना तो बहुत अच्छा बनाया, बहुत ही ध्यान से बनाया, लेकिन अब वो उस तक पहुंचाए कैसे? तो उसको प्रेजेंट ऐसे करना पड़ता है कि वो आने वाला जो गेस्ट है उनका वो फटाफट उस चीज के लिए अट्रैक्ट हो सके.
0: बिल्कुल.
1: क्योंकि उसने वो प्रोसेस नहीं देखा जब वो बन रहा है.
0: बिल्कुल.
1: तो उसको कनेक्ट कैसे करेगा? वो दिखा के कनेक्ट करते हैं. सो प्रेजेंटेशन वहां मायने रखती है. लेकिन हम आजकल क्या कर दिए हैं बिकॉज ऑफ कंटेंट एंड रील्स एंड एवरीथिंग, और क्योंकि ये मोनेटाइज हो चुका है तो लोग भेड़ चाल में अगेन रैट रेस में फंस गए हैं कि हम कौन ब्यूटीफुल प्लेट ऑफ फूड बनाएगा. ना तो किसी को ये पता है कि वो प्लेट ऑफ फूड उसकी वेस्टेज क्या है, उसका स्वाद क्या है, क्या चीज है. सो कलर्स आर बिकमिंग इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द आईज.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: तो मेरे लिए कभी भी ये मायने नहीं रखते. मेरे लिए ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग है. तो मैं ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी अगर हम बहुत ज्यादा डीप जाएंगे तो. बट मैं आपको शॉर्ट में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि मेरे लिए तो यही आज भी किसी के घर से किचन से आती हुई खुशबू बहुत ही ज्यादा اچھی ہوتی ہے. میں اس کے کچن کے باہر سے مجھے ہینگ کی بھی خوشبو آ رہی ہے نا, تو میرے لیے وہ ان کے گھر کے ماحول کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے کہ ارے واہ آج بڑھیا سا تڑکا لگایا ہوا ہے تین کا دال میں, سب کچھ ٹھیک ہے, سب بڑھیا ہے. I'll leave this question to this point only. It's experience, basically.
0: بیوٹیفل بیوٹیفل کی کیسے یہ ایک سینسری ایکسپیرئنس زیادہ ہے, ایک سینسری ٹریٹ ہے ویژول ٹریٹ سے زیادہ. تو یہ بات اگر ہم سمجھ جائیں تو شاید ہمارا کھانا اتنا سوادشت ہو جیسا ہوا کرتا تھا, صرف ایک ویژول ٹریٹ نہ رہ کے ایک سچ میں سینسری ٹریٹ ہو جو آپ کے ایک سواد کو, آپ کے یو نو مہک کو

0: एक एक टिंगल करे और आपको एक्साइट करे कि आज क्या बना है इस गली में, इस घर में. तो जैसे कहते हैं कि हर घर कुछ कहता है, तो उसी तरह उस घर का खाना भी कुछ कहता है और उसकी खुशबू भी कुछ कहती है. बहुत ही खूबसूरती से आपने इसका जवाब दिया. मैम, इसी मोड़ पे हम एक और गीत का ब्रेक लेंगे, आपकी ही फरमाइश पे एक और गाना.
1: अच्छा, अब मैं आपको सुनाना चाहूंगी एक बड़ा ही अच्छा मुकेश जी का गाया हुआ गाना है, राज कपूर जी पे फिल्माया गया है. एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल. बड़ा ही खूबसूरत एंड अगेन वेरी फिलोसॉफिकल, बट बहुत बहुत प्यारा गाना है.
0: बहुत प्यारा गाना है सच में. और आप मुकेश के फैन हैं, तीनों ही गाने हमने मुकेश के सुने और बहुत खूबसूरत गाने आपने चुने हमारे लिए. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तो चलिए सुनते हैं एक दिन मिट जाएगा माटी के बोल फ्रॉम द फिल्म धर्म करम.
1: जरूर.
2: एक दिन

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक पायल मैम।
1: थैंक यू
0: मैम। आगे चलें तो आपने बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में कुकिंग सिखाई है, एक मेंटोर के रूप में, एक ट्रेनर के रूप में
1: जी।
0: तो आपको एक ऐसा लाइफ लेसन अगर चुनना हो जो रसोई ने आपको सिखाया है और जो आप सोचते हैं कि हर इंसान में पास ऑन होना चाहिए, वो एक ट्रेट, वो एक क्वालिटी, तो वो क्या होगा?
1: क्वेश्चन बड़ा जोरदार है।
0: सबने फिलोसफी ऐड करने की कोशिश की है हमने।
1: नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए मुझे मजा आ रहा है क्योंकि मैं मेरा पर्सपेक्टिव फिलोसफी बन गया है।
0: जी जी
1: मैं कहूंगी कि देखिए खाना जैसे पहले वाले जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जो खाने का जो भोजन की इम्पोर्टेंस है वो उसके इमोशंस, उसके सेलिब्रेशन, उसके उन चीजों से आती है। तरीके से ही उसी उसी उसी लय में मैं आगे बात करना चाहूंगी कि इट्स यू नो

0: किचन कुकिंग आपको जो सिखाती है वो खराब चीज को अच्छा बनाना सिखाती है. सो कई क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे अपन परफेक्ट पिक्चर की बात कर रहे थे, तो हमेशा जो पिक्चर में होता है वो परफेक्ट नहीं हो सकता.
1: करेक्ट.
0: खाने में हाँ, खाना आप रोज सेम रेसिपी से बना लीजिए तो भी वो ऐसा हो सकता है कि बेस्ट ऑफ द यू नो इंग्रेडिएंट लेने के बावजूद भी, फैसिलिटी होने के बावजूद भी, एकदम मॉडर्न किचन होने के बावजूद भी आप घटिया खाना बनाए एकदम जो खाने लायक ही नहीं है.
1: बिल्कुल.
0: सो इट इज पॉसिबल राइट.
1: बिल्कुल.
0: सो इट्स अबाउट द प्रोसेस, अबाउट द प्रोसेस हाउ एवरीथिंग कम्स टूगेदर. सब चीजें कैसे आप उनको एक सार करके एक चीज में, एक भोजन के रूप में उसको पेश
1: कर सकते हैं.
0: हाँ, कर सकते हैं. तो आप मतलब खाना बनाना इज नॉट रेसिपीज. इसलिए महिलाओं का काम जो है वो क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि वो बिना वो सबके लिए सोचते हुए, अपने फ्रिज को देखते हुए, अपनी ग्रोसरीज की लिस्ट को देखते हुए, आज की जो भी है मेरे पास में उसको देखते हुए, रोज सबकी पसंद का और उनके न्यूट्रिशन का खाना बना पाती है.
1: बिल्कुल.
0: तो ये उनकी उपलब्धि है सबसे बड़ी, ये उनका एप्टीट्यूड है बहुत ही बड़ा. नॉट उपलब्धि, देयर एप्टीट्यूड, देयर क्वालिटी.
1: सच है.
0: तो मुझे किचन ने यही सिखाया है कि कैसे जब चीजें बिगड़ रही होती हैं, ऐसा लाइफ को भी आप मान सकते हैं, तो लाइफ में कई रोज आपके इंग्रेडिएंट्स अच्छे चल रहे होते हैं, फिर बुरे हो जाते हैं, कुछ गड़बड़ कुछ ना कुछ होती रहती है, लेकिन एंड ऑफ द डे क्योंकि दिन जिंदगी एक दिन सुबह चालू होती है और रात को खत्म हो जाती है, एंड ऑफ द डे आपका जो खाना निकल के आया, जो आपका वापस जो आपका बाय प्रोडक्ट आया है दिन भर का, कितना स्वाद है. तो स्वाद बनाना इज नॉट अबाउट इंग्रेडिएंट्स, इट्स अबाउट हाउ यू मेक देम, हाउ यू प्रोसेस देम. सो आई विल सम अप टू दैट, आई थिंक सो आई विल, मैं उसी पे रहना चाहूंगी कि इट्स अबाउट हाउ दिस इज व्हाट किचन हैज टॉट मी.
1: ब्यूटिफुल.
0: टेकिंग एवरी वर्स्ट थिंग इनटू अ गुड थिंग.
1: बिल्कुल बिल्कुल. अपने इम्परफेक्शन से परफेक्शन तक रीच करने की जर्नी, और इवन इफ एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट, आपके पास इम्परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उससे भी जो क्या आप बेस्ट बना सकते हैं वही आपकी कला है, वही आपकी कुकिंग है, और वही कुकिंग की कला है एक्चुअली. और आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट यू नो यहाँ पे हमें बताया कि कैसे गृहिणियां जो हैं हमारे घरों की, जो वुमेन फोक हैं, जो किचन में रोज जाती हैं और रोज तीन टाइम का खाना बनाती हैं, और सच में ये एप्टीट्यूड ही है कि वो हर तीन बार उतना ही न्यूट्रिशियस और उतना ही अच्छा खाना बना के सर्व करती हैं जो घर में सब खा पाते हैं. आई नो एक्सेप्शंस होते हैं, कई बार बच्चों को नहीं पसंद आता, बट अल्टीमेटली तीन बार का खाना इंटू 365 डेज और उसी एप्टीट्यूड से चीजों को बनाना इज कमेंडेबल. आई थिंक वी शुड क्लैप फॉर आवर वुमेन फोक एंड वी शुड गिव देम दैट क्रेडिट कि उनके पास वो एप्टीट्यूड है और वो क्वालिटी है जो बहुत इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली हैव एंड इट जस्ट कम्स नेचुरली टू एवरी वुमेन इन इंडियन इंडियन हाउस होल्ड. तो विच इज अमेजिंग एंड कमेंडेबल. आपने ये पॉइंट आउट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. और आपके सारे ही जवाब आपके सारे अनुभवों का एक समावेश है जो बहुत खूबसूरती से हमें बताते हैं कि किस तरह का आपका एक सफर रहा है, ग्राउंडेड सफर रहा है. सिर्फ ऐसे नहीं कि आप यू नो इन इलीट जगहों पे जाके काम कर रहे हैं और इन लोगों से मिल रहे हैं तो आपकी जर्नी एक डेवलप हो रही है, बट बहुत ग्राउंडेड लेवल से आपने अपना जीवन को जिया है और कनेक्टेड रहे हैं कहीं ना कहीं, वो बहुत खूबसूरती से आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होता है मैम. हम अब आगे चलते हैं और आज का हमारा जो आखिरी सवाल है उस तक पहुंचते हैं. एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आई थिंक ये भी, कि अगर आपको अपनी जिंदगी को एक सिग्नेचर डिश के रूप में सर्व करना हो तो उस डिश का नाम क्या होगा और इसकी इंग्रेडिएंट्स में कौन कौन सी यादें, कौन कौन से लोग और कौन कौन से सपने शामिल होंगे?
0: ओहो, बड़ा ही घुमा के आपने क्वेश्चन बनाया है, बड़ा ही सवाल आपका और बड़ा मजेदार भी है और सोचने पे मजबूर कर रहा है मुझे बहुत ज्यादा.
1: जी जी.
0: तो क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा. मैं बड़ी सिंपल फिलोसफी और सिंपल फूड को पसंद करने वाली व्यक्ति हूँ. मैं दाल रोटी खाने
1: वाली, चावल, चलिए मान लीजिए दाल चावल. जी जी जी जी.
0: लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा
1: जायकेदार बनाते हैं.
0: या जायकेदार बनाते हैं फिलोसफी का तड़का लगा के. तो बात ऐसा है कि यू नो मेरे हिसाब से जिंदगी का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट जो होता है वो प्यार, प्रेम, इश्क, जुनून.

की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं अपनी खुद की पर्सनालिटी, अपनी खुद की प्रतिभा, अपने खुद के चरित्र और अपने खुद के बारे में। इस बात को आराम से समझिए दोस्तों, आप ऊपर वाले की बनाई हुई सबसे अच्छी क्रिएशन, रचना, कृति या कुछ भी कह लीजिए, प्रकृति में उपस्थित एक ऐसी चीज है जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई कंपटीशन नहीं, आप जैसा दूसरा कोई नहीं। मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, वो अच्छा है, वो बुरा है, मेरा कॉम्पिटिटर है, मेरा कुछ सामान ले जाएगा, मेरा हक छीन लेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। प्रकृति के नियम है, जो आपके लिए आया है वो कोई दूसरा ले ही नहीं जा सकता। होड़ में मत लगिए। सबसे जरूरी बात यह है कि अपने आप में धैर्यवान रहते हुए पूरी तरह से सुनिश्चित रखिए, करिए कि आप वही हैं जो ऊपर वाले ने आपको बना के भेजा है और सब कुछ आपके लिए तय है। अपना काम करते चलिए। आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते चलिए, आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते चलिए। यूं तो गीता में कहा है श्री कृष्ण ने कि काम करता चल, फल की इच्छा मत कर, लेकिन दोस्तों हम इंसान हैं, बिना फल की इच्छा किए हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो जितना मैंने समझा उसके हिसाब से मैं सुझाव दे देता हूं। आपको जमे तो रखिए, नहीं जमे तो जाने दीजिए। वो ये कि काम करते तो जरूर चलिए, फल भी अपने दिमाग में रखिए, लेकिन दूसरों के फल को देखकर तड़पिए मत। गौर कीजिए, हम इंसानों की यही तकलीफ है। किसी के पास कोई बेहतर गाड़ी, कोई बेहतर मकान, कोई बेहतर सुविधाएं, कोई बेहतर कपड़े और न जाने क्या क्या, हम अपने आप को बस उनसे कंपेयर ही करते चलते जाते हैं। जो हमें मिला, जो हमारे पास है, जो हमें मिलने वाला है, जो ऊपर वाले ने, कुदरत ने हमारे लिए तय कर रखा है, हम उसके बारे में जरा सा भी न तो शुक्रिया कहते और न ही खुश होते हैं। गौर कीजिए ना आप, क्या सचमुच आपके पास जो मोबाइल है उसके लिए आप शुक्रिया अदा करते हैं? क्या सचमुच आपके पास जो बाइक है, जो कार है, जो मकान है, जो परिवार है, उसके लिए आप शुक्रिया अदा करते हैं? जब आपने उनके लिए शुक्रिया अदा किया ही नहीं तो और कैसे मांगेंगे आप? ये तो कुछ ऐसा है ना कि आपको चाय दी गई पीने के लिए, मजे लेने के लिए, रिफ्रेश हो जाने के लिए, और आप कहते हैं नहीं साहब मुझे तो कॉफी चाहिए। अरे जो आया सामने वो ऊपर वाले ने आपके पास भेजा है, प्रकृति ने, कुदरत ने आपके पास भेजा है, पहले उसे स्वीकार कर उसका शुक्रिया अदा तो कहिए। मेरा बहुत तहे दिल से मानना है जिंदगी में और बहुत सारा कुछ पाने के लिए आसान सा एक तरीका है शुक्रिया कहते चलना। जो भी है हमारे पास शुक्रिया कहते चलिए। इससे कुदरत को एक संदेश मिलता है कि इस इंसान को और चाहिए, तभी तो जो कुछ भी मैंने इसे दिया वो उसका शुक्रिया अदा कर रहा है, तो इसे और दो। जिस भी वक्त आपने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो कुदरत को यह संदेश मिलता है कि ठीक है, इस इंसान को और नहीं चाहिए, ये चीज, ये सुविधा या ये समृद्धि मैं किसी और को दे दे।

चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं हरमन हेस से, जो एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ये मानव सभ्यता की नाकामी ही तो है कि ना तो मन की आग शांत होती है और ना ही युद्ध की। रह रह कर धधक उठती है और इंसान अपने ज्ञान की तमाम महान पवित्र पोथियों को किनारे रखकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। युद्ध के दिन दिलो दिमाग से मिटाई नहीं मिटते। उन दिनों भी दुनिया पहले विश्व युद्ध पर उतरी हुई थी। माहौल ऐसा बन गया था कि लगता था किसी ना किसी दिन सबको लहूलुहान होना पड़ेगा। वो दुबले पतले से भावपूर्ण नैन नक्श वाले लेखक भी युद्ध की आंच से तप रहे थे। जब पास ही आग लगी हो तो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा जाता। यूरोप के ज्यादातर कवि लेखक भी देश के लिए बंदूक थाम चुके थे। कुछ युवा लेखकों की तो जंगी मोर्चे पर जान भी जा चुकी थी। सभी पर युद्ध में जाकर दो दो हाथ करने का गजब का दबाव था। इस लेखक ने भी अपना नाम इंपीरियल सेना में बहाली के लिए लिखवा दिया, पर उस नाजुक मन रचनाकार को युद्ध लड़ने के अयोग्य पाया गया। उन्हें युद्ध बंदियों की देखभाल से जुड़ी सेवा में लगा दिया गया। ऐसा लगता था कि दुनिया अब लड़कर ही खत्म होगी। कवियों के बीच भी बहुत नफरत पसर गई थी। उन्हीं दिनों इस नफरत के खिलाफ इस लेखक ने एक लेख लिखा। उन्होंने सबको समझाया कि राष्ट्रवादी पागलपन और नफरत की खाई में ऐसे ना गिरें कि फिर निकलना ही मुमकिन ना हो। नफरत से बड़ा है प्यार, क्रोध से बड़ी है समझ और युद्ध से महान है शांति। दुर्भाग्य की बात है, कोई नहीं समझ पाया। लेखक बिरादरी दुश्मन हो गई और मीडिया शब्द बाण बरसाने लगा। बहुत धमकियां मिली। लेखक का घर से निकलना दूभर हो गया। उन्होंने अपने भारत प्रेमी मित्र लेखक रोमा रोला को पत्र लिखा, दोस्त, सियासी मामलों में प्यार आजमाने की मेरी कोशिशें नाकाम हो गई। निर्णायक पल था, दिल बिखर गया। अवसाद ने अपने भंवर में लपेट लिया। वैसे भी मुसीबतें खुदरा नहीं, थोक में आती हैं। पहाड़ की तरह साथ खड़े पिता जिंदगी की जंग हार गए। सगा पुत्र गंभीर बीमारियों में पड़ गया और पत्नी की मानसिक दशा अपनी दिशा भटक गई। फिर तो कुछ भी ना बचा, कौन संभालता। मन इतना डगमगाया कि दिमाग ने भी जवाब दे दिया और लेखक का शरीर एक मनोरोगी उपचार केंद्र में पहुंच गया। एक अच्छे लेखक के बारे में लगभग घोषणा ही हो गई कि उसे युद्ध की आंधी

ही उड़ा ले गई है। पढ़ना लिखना तो छूट ही गया, पर सौभाग्य की बात थी कि उन्हें मनोचिकित्सकों ने बहुत सहारा दिया। जो अच्छी चीजें उनके अंदर सूख गई थी उन्हें फिर से हरा भरा करने की कोशिशें धीरे धीरे रंग लाने लगी। किसी भी तकलीफ या किसी एक हार पर दुनिया खत्म नहीं होती। सुख दुख, भोग योग, संयम त्याग, उपवास की ओर मन बहने लगा। दुख के बादल भी ओझल होने लगे। धर्म चिंतन ने तमाम कष्टों और असुरक्षा बोध की गहरी गुफा से बाहर ला दिया। सनातन धर्म के साथ साथ गौतम बुद्ध बार बार याद आने लगे। लेखक महोदय कुछ वर्षों पहले जर्मनी से श्रीलंका तो आए थे, पर भारत आने से पहले बीमार पड़ गए थे और स्वदेश लौटना पड़ा था। पर भारत के पास से गुजरते हुए इस मोक्ष भूमि के प्रति प्रेम का बीज उनके मन में पहले से पड़ा हुआ था, वो अब अंकुरित हो गया। उन्होंने भारतीय दर्शन और बुद्ध को आधार बनाकर एक उपन्यास लिखा। नाम था सिद्धार्थ। भोग में भी योग तलाश करने की कला के साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जो ज्ञान उन लेखक महोदय को मिला, उसने कमाल कर दिया। साहित्य की दुनिया में जब सिद्धार्थ का आगमन हुआ, तब विश्व युद्ध बीत चुका था और दुनिया विकास की नई लहर से पुलकित हो रही थी। दुनिया ने अपने एक महान लेखक हरमन हेस को भारतीयता से ओतप्रोत नई रोशनी में देखा। सिद्धार्थ लिखने के बाद हरमन न जाने कितनी वर्जनाओं और उलझनों से एक झटके में उबर गए, तो फिर घर नहीं लौटे। उन्होंने पुराने जीवन के कारागार को तोड़ दिया और स्विट्जरलैंड में जा बसे। दुनिया को एक से बढ़कर एक कृतियों से संपन्न कर दिया और साहित्य के सर्वश्रेष्ठ सम्मान नोबेल से नवाजे गए। अकेले अमेरिका में इस उपन्यास की 50 लाख से ज्यादा प्रतियां बिकी हैं। गौर कीजिए, हरमन हेस 1877 से 1962 तक ये पुस्तक अपने भारत प्रेमी मित्र रोमा रोला के नाम समर्पित की थी इन्होंने। जी, वही रोमा रोला जिन्होंने कभी कहा था, यदि पृथ्वी पर कोई एक जगह है जहां जीवित मनुष्यों के सभी सपनों को शुरुआती दिनों से ही घर मिला हुआ है, जब मनुष्यों ने अस्तित्व का सपना देखना शुरू किया था, तो वो भारत है।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ।

आइए दोस्तों मिलते हैं कैडेंस लाइटनर से, जो एक समाज सेविका हैं। मां के मन को तो भगवान ही जानता है। मां की ममता का विस्तार वहां तक होता है जहां किसी की कोई पहुंच नहीं होती। मां ऐसे खतरों के प्रति भी सचेत होती है जो शायद कभी होते ही नहीं। बच्चे की हिचकी से जमीन पर पैर रखने तक और गोद से उतरकर कदम जमाते तक सब कुछ मां को महसूस होता है। पर यहां तो इस मां की एक बच्ची कुछ कदम नहीं, बल्कि इतनी दूर चली गई कि जहां से कोई नहीं लौटता। मन में दर्द के ज्वार उमड़ते हैं और मां बेचैन बावली हो उठती है। वो मां सोचती रहती है कि मेरी बच्ची का भला क्या दोष था। वो तो सड़क किनारे चुपचाप मस्ती से चली जा रही थी, पर पीछे से एक गाड़ी आई और 125 फीट दूर घसीटती ले गई। क्या ड्राइवर इतना बेहोश था कि सड़क से किनारे साइकिल पथ पर गाड़ी दौड़ाने लगा? लोगों ने बताया कि ड्राइवर नशे में था। नशे में ही सब तबाह कर दिया। वो मां भागती हांफती घर पहुंची। किसी ने बताया था कि हमने कैरी को खो दिया। मां ने विश्वास के साथ कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो यहीं कहीं पड़ोस में होगी, हम खोज लेंगे उसे। तब उस मां को दो टूक बताया गया कि सुनो, तुम्हारी बच्ची कैरी अब इस दुनिया में नहीं रही। एक कार वाले ने टक्कर मार दी और अब वो चल बसी, अब ना लौटेगी। ये सुनकर तो मानो अंधकार टूट पड़ा, बदहवासी छा गई। जब कुछ होश आया तो मन हुआ कि बच्ची के अंग अगर किसी के काम आ जाएं तो। तब डॉक्टर्स ने कहा, माफ कीजिएगा, दुर्घटना में एक भी अंग सलामत नहीं बचा। ये सुनकर तो दिल और बैठ गया। तब दुख और रोष की गठरी बनी हुई इस मां ने कहा, उस ड्राइवर को मत छोड़ना जिसकी वजह से मेरे आंगन ने अपनी प्यारी चिड़िया को हमेशा के लिए खो दिया, जिसने मेरे चहचहाते हुए संसार को हाहाकार में बदल दिया, उस अपराधी को मत छोड़ना। मन तो नहीं मानता था। वो मां अक्सर उस जगह से गुजरती थी जहां बच्ची के साथ दुर्घटना हुई थी और उस दिन वहां पुलिस वाले जांच में जुटे थे। सवाल से भरी हुई वो मां वहीं रुक गई तो पता चला कि दोषी ड्राइवर खुलेआम घूम रहा है, जमानत हो गई उसकी, उसके जेल जाने की भी कोई संभावना नहीं थी। और तो और यह भी पता चला कि वो शराबी आदतन दुर्घटनाएं करता ही रहता है। ये दुर्घटना तो उसके खिलाफ चौथा मामला है और वो कुछ ही दिनों पहले जमानत पर छूट गया। वो इस बार अपने घर में 3 दिन तक शराब पीने के बाद बस कार से तफरी करने निकला था। उसने एक मासूम की जान ले ली, लेकिन उसका एक बाल भी बांका नहीं हुआ। पुलिस वालों ने ही बताया कि क्या करें, कानून ही ऐसा है कि सड़क दुर्घटना में सजा नहीं होती। नशे में धुत गाड़ी चलाना आम बात है, मासूम लोग रोज ही सड़कों पर मारे जाते हैं। ये सब जानकर उस मां का दिल सिर्फ रोया नहीं, गुस्से से उफन पड़ा। ठान लिया कि ऐसे अपराधियों को छोड़ना नहीं है। ये रोज न जाने कितनी माओं की गोद सूनी करते हैं, ये सड़क पर ही नहीं बल्कि सभ्य समाज में भी चलने लायक नहीं है। ऐसे लोगों को इनके ठिकाने पर पहुंचाना ही होगा। गुस्से और जुनून से लैस उस विरल मां कैडेंस लाइटनर पर अमेरिका की निगाह पड़ गई। लाइटनर ने देश में सबसे ज्यादा जुर्म होने वाले इन मामलों में व्यवस्था और सामाजिक स्वीकृति के प्रचलित रवैये को बदल देने के लिए बगावत का बिगुल बजा दिया। वो घर से निकल पड़ी और मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग अभियान की शुरुआत की। उन्होंने न केवल नशे में गाड़ी चलाने को सामाजिक रूप से अस्वीकार्य करने का आंदोलन किया, बल्कि पीड़ितों की अग्रणी वकील भी बन गई। उन्होंने पीड़ितों और दुर्घटना में बाल बाल बचे लोगों को सिखाया कि अदालत में न्याय के लिए कैसे लड़ें। अमेरिका की संसद में भी उन्हें ध्यान से सुना गया।
दोषियों को कटघरे में खड़ा करने के लिए और सड़कों पर इंसानियत की बहाली के लिए अमेरिकी राज्यों और देश में 100 से ज्यादा कानून बनाए गए या बदल दिए गए। एक मां ने अनगिनत माओं के साथ मिलकर देश का मिजाज ही बदल डाला। उनका यह अभियान दूसरे देशों में भी जा फैला। अकेले अमेरिका में ही उन्हें 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान बचाने का श्रेय मिला। वहां शराबी हत्यारों को 4 साल से लेकर 30 साल तक की सजा होती है। इस मां की संस्था के पास 20 लाख से ज्यादा सदस्य हैं और करोड़ों रुपयों का कोष भी है। अद्भुत मां कैडेंस लाइटनर को 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली अमेरिकी नागरिकों में गिना जाता है। उन्हें राष्ट्र की अंतरात्मा और आंदोलन की जननी भी कहा जाता है।

0: दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपके झाबुआ की आवाज पर। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
2: देखो भैया, छोटी छोटी बातों में खुशियां तलाश लेता हूँ। साइकिल पर चलता हूँ फिर भी फोन को फ्लाइट मोड पर डालता हूँ।
3: हंसो मत, बोलो

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में आज की कलाकारा हैं हेलन। जी हाँ, हेलन जो बहुत प्रसिद्ध डांसर रहीं, एक्ट्रेस रहीं हमारी हिंदी फिल्मों की। हेलन का असली नाम है हेलन एंड रिचर्डसन खान। जी हाँ, हेलन दरअसल एक क्रिश्चियन हैं। आइए उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत सुनते हैं।

0: श्रोताओं, हम स्वागत करते हैं महेंद्र गौतम जी का जयपुर से। गौतम भाई, जरा ये बताइए अदाकारा हेलेन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: शी वॉज अ वेरी गुड डांसर एक्चुअली। उनकी केमिस्ट्री जो आयशा भोसले के साथ में है और उनके जो गाने हैं वो आपको वैसे ही थिरकने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो वो उनके गाने अपने आप में बहुत मजेदार गाने होते थे, आप थिरकते थे उनके, आज भी थिरक उठते हो।
0: बेहतरीन बेहतरीन गौतम भाई, थैंक यू सो मच गौतम, आपका बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

हेलन का जन्म 21 नवंबर 1938 को बर्मा में हुआ। उनके पिता की मौत वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हो गई, तभी उनकी फैमिली भारत में शिफ्ट हो गई। यहीं पर हेलन का करियर बॉलीवुड फिल्मों में शुरू हुआ। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

बड़ी ही मजेदार बात है कि एज एक्ट्रेस हेलन और उनके लिए गाना गाने वाली हमारी प्रसिद्ध गीत गायिका आशा भोसले जी की बेहद गहरी दोस्ती थी। आशा भोसले जी ने हेलन के करीब करीब सारे गाने गाए हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

हेलन ने सलीम खान जी से शादी की, जिसकी वजह से वो सलमान खान जी की फैमिली से जुड़ी। यूं देखा जाए तो सलमान खान उनके सौतेले बेटे हैं, बट दोनों के बीच बेहद प्यार है। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

हेलन को सबसे पहला बढ़िया ब्रेक हावड़ा ब्रिज नाम की मूवी में मिला, जिनका बहुत ही फेमस गाना है, बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, मेरा नाम चिंग चिंग चू। आइए दोस्तों सुनते हैं यही गीत।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि हेलन को ऐश्वर्या राय और अक्षय कुमार के साथ साथ पद्म श्री अवार्ड्स के लिए भी चुना गया। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुहारा।
1: मैंने जब दरवाजा खोला ना भैया, तो उसकी आंखों में आंसू थे, सांसों में तेजी थी, दिल में बेबसी थी। परली ने पहले बताया ही नहीं कि दरवाजे में उसकी उंगली फंसी थी।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं दिव्या भारती। दिव्या भारती जी का जन्म 25 फरवरी 1974 में हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की ऐसी अभिनेत्री थीं जिनकी अभिनय विविधता ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे आकर्षक युवा अभिनेत्री होने का गौरव दिया। लीजिए पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ।
1: दोस्तों, 90 की दशक से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दिव्या ने कई बेहद सफल फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे

यो दोस्त समीर के साथ 1992 से लेकर 1993 यानी कि सिर्फ एक साल में ही दिव्या भारती ने मात्र 19 साल की उम्र में 7 हिंदी फिल्में और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। इतने कम समय में इतनी सारी फिल्मों करने का उन्हें ये उपलक्ष्य हमेशा दिया गया। लीजिए सुनिए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

राम चुराने आए, चमचा चिलम चकोर चिरैया चूचू चू चल रहा है, भैया चूचू का मुरब्बा, भैया चूचू का मुरब्बा। टकला टकलू टाक टवोरी टकिया टपकी जा।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। हालांकि दिव्या भारती को अपने पूरे करियर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को ढूंढ ही निकाला और बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाया। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: माना कि उन तक पहुंचती नहीं तपिश हमारी, माना कि उन तक पहुंचती नहीं तपिश हमारी, इसका मतलब ये तो नहीं कि सुलगते नहीं हैं हम। मजा चख लेने दो उनको भी गैरों की महफिल का, मजा चख लेने दो उनको भी गैरों की महफिल का, इतनी चाहत के बाद जो मेरा ना हुआ वो किसी और का क्या होगा। फिर ये भी के शौक ही नहीं रहा अब खुद को साबित करने का, शौक ही नहीं रहा अब खुद को साबित करने का, जिसने जैसा समझ लिया बस वैसा ही हूँ मैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, 90.8 FM की तरंगों पर, SN रेडियो और रेडियो टांटिया भील पर मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों कहते हैं जिंदगी हम सब का कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्तहान जरूर लेती है। जिंदगी हर शख्स की हैसियत, उसकी ख्वाहिशें, उसकी हसरतें, उसके शौक, उसके कारनामे बुरे या अच्छे देखकर ये तय करती है कि उस शख्स का किस तरीके का और कौन सा इम्तहान लिया जाए। शायद इसीलिए इस दुनिया में किसी के सब्र की आजमाइश मुश्किलों के दौर में होती है, तो किसी ज़र्फ यानी सेल्फ इस्टीम को बड़ी बड़ी कामयाबियों के बीच में परखा जाता है। मगर सच तो ये है कि इन इम्तहानों के साए में जब भी हमारा दिल उदास या तन्हा होता है तब अदब की दुनिया और सुरों की महफिल ही हमारे टूटे हुए हौसले को एक नया मोड़ देती है। जब जहन थक जाता है तो खालिस नज़मों का एक मिसरा भी हमारी बिखरी हुई सोच को मखमली तसल्ली अता करता है। आज की ये नफीस शाम भी कुछ इसी कश्मकश को समेटे हुए आगे बढ़ेगी। आज के हमारे प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक की महफिल में सुरों के इस सफर को हम कुछ ऐसे अनोखे फनकारों की मेराज से सजाने जा रहे हैं जिनके गाए कलाम आपकी रूह को इस जिंदगी के अलग अलग फलसफों से रूबरू कराएंगे। तो अपने जहन की मसरूफियात को कुछ देर के लिए एक तरफ रख दीजिए और इन ताज़ा तरीन एहसासों के साथ इस हसीन शाम को अपने नाम कर लीजिए। फिर चलते हैं सुरों के इस नए मरहले की तरफ और आगाज करते हैं आज की हमारी पहली नायाब पेशकश का। दोस्तों आप में से कई जन आर्ट ऑफ लिविंग और गुरुदेव रविशंकर से जुड़े होंगे। जिंदगी की जिन मुश्किल इम्तहानों का जिक्र मैंने आपसे किया उन इम्तहानों की धूप में अपने मुर्शद यानी गुरु का साया ही वो मंजिल है जहाँ पहुँच कर हर कश्मकश खत्म हो जाती दिखती है। दिखती क्या, हो ही जाती है। जब हम रूहानी रहनुमाई की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक बेहद मुकद्दस पाक नाम उभरता है, आर्ट ऑफ लिविंग के बानी परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया को अमन, मोहब्बत और जीने का सही सलीका सिखाने के सुपुर्द कर दी है। उनकी मौजूदगी ही इंसानी वजूद को एक नई राह दिखाती है। और जब एक सच्चे मुरीद की अकीदत यानी आस्था अपने मुर्शिद यानी गुरु के कदमों में झुकती है तो अल्फाज इबादत बन जाते हैं। श्री श्री रविशंकर जी के बेहद अजीज और बाकमाल शागिर्द स्वामी नित्यानंद प्रज्ञा जी ने गुरु भक्ति के इसी जज्बात को इस नगमे के जरिए पेश किया है। स्वामी जी की आवाज़ में जो एक रूहानी कशिश है वो इस बात की गवाही है कि ये नगमा उन्होंने गाकर सिर्फ रिकॉर्ड नहीं किया बल्कि अपने मुर्शिद की बारगाह में मुकम्मल तौर पर वक्फ कर दिया यानी समर्पित कर दिया। मोहम्मद रफी साहब के गाए इस फिल्मी नगमे को जब स्वामी नित्यानंद प्रज्ञा ने गुरु वंदना का रूप दिया तो इसके मायने ही बदल गए। जरा इस बंदगी के जज्बात को महसूस कीजिए। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। दोस्तों, यहाँ मोहब्बत का मतलब दुनियावी चाहत नहीं है बल्कि रूह का वो रूहानी मिलन है जहाँ एक मुरीद अपने मुर्शिद की पनाह में हमेशा के लिए खो जाना चाहता है। तो आइए सुनते हैं स्वामी नित्यानंद प्रज्ञा जी की इस बेहद भावुक और सुरीली पेशकश। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है जो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। आपकी नज़र।

मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिजां से उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूँ। और फिर ऐ फातिया कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों, मैं वो बेकसी का मजार हूँ। दोस्तों, जिंदगी के इम्तहानों की जिस कश्मकश का जिक्र आज हमारी इस महफिल की बुनियाद है, उसी सिलसिले को एक तारीखी मुकाम अता करता है हमारा ये नगमा। ये शाहकार फिल्म लाल किला का है, जो कि मुगल सल्तनत के आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर की कलम से निकला था। ये कलाम इंसान की मुकम्मल बेबसी, तन्हाई और वक्त की बेरहमी का सबसे साफ आईना है। असल तौर से मोहम्मद रफ़ी साहब की पाक आवाज़ में रिकॉर्ड हुए इस दर्द को आज हम एक और नायाब अंदाज में पेश करने जा रहे हैं। आज इस नफीस कलाम को अपनी आवाज़ का पैरहन दिया है हिंदुस्तान के एक बेहद सुरीले और संजीदा गुलुकार संजय सावंत ने। दोस्तों, संजय सावंत जी की अदबी ज़िंदगी भी बेहद दिलचस्प है। वो संगीत के उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने हमें टेलीविज़न इतिहास के शो इंडियन आइडल के पहले इंडियन आइडल अभिजीत सावंत जैसे सिंगर को हमें हमारा तारुफ कराया। अभिजीत को संगीत अभिजीत की संगीत की शुरुआती रहनुमाई और तालीम देने वाले उनके अपने सगे चाचा यानी संजय सावंत ही थे। संजय सावंत का अपना अंदाज रफ़ी साहब की गायकी से बेहद मुतासिर रहा है और यही वजह है कि उनकी इस ठहरी हुई पुरअसर आवाज़ में ये गज़ल का सोज सीधे सुनने वालों के जहन पर तारी हो जाता है। तो आइए वक्त की इस बेहद संजीदा आजमाइश में डूबने के लिए रुख करते हैं इस खास पेशकश की तरफ। मुलाहिज़ा फरमाएं, संजय सावंत की खूबसूरत आवाज़ में ये अमर शाहकार।

ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ। जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। शौक फरमाए।

0: दोस्तों, हमारी आज की महफिल की बुनियाद ही उन जज्बातों पर टिकी है जो ज़िंदगी के आजमाइशों में टूटकर बिखर जाते हैं, जब इंसानी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं तो वजूद की उस मायूसी को ज़बान देता है हमारा ये अगला कलाम। ये नगमा है फिल्म शाहजहां का, जिसे संगीत से संवारा था नौशाद साहब ने। बुनियादी तौर पर कुंदन लाल सहगल साहब की आवाज़ में अमर हुए इस दर्द को जब हम सरहदों के पार से आई एक ऐसी आवाज़ में सुनेंगे तो सुनकर बेशक हैरान हो जाएंगे। इस नज़्म को अपनी रूहानी तासीर दी है अफ़गानिस्तान के बेहद इल्मी और बाकमाल गुलूकार डॉक्टर मोहम्मद सादिक फितरत साहब ने, जिन्हें मौसीकी की दुनिया में नाशनस के नाम से जाना जाता है। नाशनस का मतलब होता है अजनबी या गुमनाम, जो कि अपनी पहचान छुपाकर सुरों की इबादत करता रहा हो। सहगल साहब की गायकी से इस कदर मुतासिर हुए कि ज़माने ने उन्हें अफ़गान सहगल का खिताब दे डाला। उनकी आवाज़ में वो धीमापन और बेदाग उर्दू लहजा इस बिखराव के दर्द को और भी गहरा कर देता है। वह महज एक गायक नहीं हैं, बल्कि मॉस्को यूनिवर्सिटी से पश्तो अदब में पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले एक काबिल स्कॉलर भी हैं। उनका जन्म 1935 में अफ़गानिस्तान के कंधार के एक संभले हुए मजहबी घराने में हुआ, जहां संगीत सीखने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन वो बचपन से ही रेडियो पर केएल सहगल को सुनते थे और उनके दीवाने भी थे। इस गज़ल के मशहूर मिसरे कुछ इस तरह हैं, उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था, उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था, एक भेदी लूट गया हम जी के क्या करेंगे, फिर मालूम ना था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मालूम ना था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, अरमां के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें, हर साथी रूठ गया हम जी के क्या करेंगे। तो आइए तन्हाई के इस बेहद संजीदा मरहले की और सुनते हैं इस खास पेशकश को। मुलायजा फरमाएं नाशनस के इस मखमली और तारीकी वर्जन में ये कलाम, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। नाशनस की आवाज़ में
1: जब

दोस्तों, ज़िंदगी के इम्तिहानों की धूप जब बहुत कड़ी हो जाती है तो सच्ची मोहब्बत करने वाला इंसान अपने महबूब की तकलीफ को दूर से सिर्फ देखता नहीं रहता, वो आगे बढ़कर उसके तमाम दुखों को अपने नाम कर लेना चाहता है। राजा मेहदी अली खान साहब ने इस कलाम में रूहानी वफा के उसी ऊंचे मकाम को लिखा है जहां आशिक अपने महबूब से कहता है कि अपने हिस्से की सारी बेचैनी और ये खामोश तन्हाई मुझे सौंप दो। बुनियादी तौर पर ये गज़ल जगजीत कौर ने गाई है और ख़याम साहब की लाजवाब मौसिकी में, लेकिन आज हम आज के दौर की एक बेहद इल्मी और बाकमाल गुलकार डॉक्टर राधिका चोपड़ा जी के अंदाज में पेश करने जा रहे हैं। जम्मू की सरजमी पर पैदा हुई डॉक्टर राधिका चोपड़ा जी ने बनारस घराने की शालीन बंदिशों और बेगम अख्तर की मखमली विरासत में ढलकर गज़ल गायकी को एक नई ताजगी अता की है। इस गज़ल के साथ मेरी भी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, ये गज़ल न जाने क्यों मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थी। तो घर में जब कोई बड़े भाई बहनों के दोस्त आते तो अच्छी खासी महफिल सज जाती थी। मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था ना कि मेरे बड़े भाई बहुत अच्छा गाते थे, तो महफिलें अक्सर ऐसे सजा करती थी घर पे कई बार। तब मैं भी वहाँ जाकर चुपके से बैठ जाती थी, बहुत छोटी थी तब मैं। तब एक दिन भाई के फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि तुम्हें भी कोई गाना आता है? तो मैंने कहा हाँ आता है। तो उन्होंने बड़े प्यार से यही सोचकर कहा होगा अच्छा चलो सुनाओ तो सही, और मैंने ये गज़ल पूरी की पूरी गा दी। फिर क्या था, महफिल में अचानक चुप सी लग गई। बड़ी बेपरवाही से सुनते बैठे सब दोस्त दोस्तियाँ मुंह उठाकर बस मुझे ही देख रहे थे और सुन रहे थे। उनकी ऐसी तवज्जो देखकर मैं अंदर से घबरा गई कि शायद मैंने गलत गा दिया है। लेकिन गज़ल ख़त्म होने पर सबने जो तालियां बजाई और मुझे प्यार दिया, तारीफ की, वो मैं आज भी नहीं भूली हूँ। वो शायद मेरी पहली नन्ही सी पब्लिक परफॉर्मेंस थी दोस्तों। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर राधिका चोपड़ा की आवाज़ में ये खूबसूरत कलाम।

दोस्तों, ज़िंदगी के इम्तहान की जिस आजमाइश का ज़िक्र आज हमारे सफ़र की बुनियाद रहा, उसका सबसे बड़ा सच यही है कि इंसान अक्सर उन चीज़ों या उन रिश्तों के पीछे भागता रहता है जो शायद उसकी किस्मत के दायरे में कभी थे ही नहीं। जॉन एलिया ने इस कलाम में दिल के उसी गहरे मलाल और एक कड़वी हकीकत को लफ्ज़ों में बयां किया है। वो कहते हैं, जो वजूद जो मोहब्बत तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा कभी थी ही नहीं, उसके खो जाने का ज़माने से शिकवा करना महज एक नादानी है। जॉन एलिया की शायरी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो किसी बनावटी तसल्ली का सहारा नहीं लेते, बल्कि ज़माने के कड़े सच को सीधे आईने की तरह सामने रख देते हैं। उनकी इसी नफीस नज़्म को जब एक मखमली और ठहरे हुए सूफियाना अंदाज में सुना जाता है तो वो हर दिल में सुकून पैदा करता है जो किसी अधूरेपन की कशमकश से गुज़र रहा हो। गज़ल का मिसरा कुछ यूं है, एक उम्र हुई है खुद से जुदा हुए हमें, एक उम्र हुई है खुद से जुदा हुए हमें, अब तो अपना भी कोई सिलसिला ही नहीं। फिर कहते हैं, हर मोड़ पे मिले हैं वही अजनबी लोग, हर मोड़ पे मिले हैं वही अजनबी लोग, इस शहर में कोई हमें अपना मिला ही नहीं। तो आइए अल्फाज से एहसास तक के इस आखिरी और सूफियाना मुकाम पर ध्यान से सुनते हैं जॉन एलिया साहब की इस लाजवाब पेशकश को, जो था ही नहीं कभी मिला ही नहीं।

दोस्तों, ज़िंदगी के इम्तहानों की धूप छाँव से गुज़रता हुआ अल्फाज से एहसास तक का ये कारवां आज के इस सफ़र के आखिरी मोड़ तक आ पहुँचा है। स्वामी नित्यानंद प्रज्ञा जी की रूहानी अकीदत से शुरू हुआ ये सिलसिला संजय सावंत की कसक भरी आवाज़ से और नाशना साहब के सरहद पार के अफगानी अंदाज, फिर डॉक्टर राधिका चोपड़ा के बेहद संजीदा झुकाव और आखिर में जॉन एलिया साहब के इस बेबाक कड़े सच तक आते आते हमारे जहन को एक नई सोच सौंप गया है। हकीकत ये है कि जब रेडियो की ये खामोश तरंगें खामोश हो जाएंगी, तब भी इन अजीम फनकारों की आवाज़ें और ये नफीस लफ्ज़ आपकी तन्हाई के साथी बनकर आपके साथ रहेंगे। किसी शायर ने महफिल के इसी खामोश असर को क्या खूब बयां किया है कि हवा में तैरती महक को कोई बांध नहीं सकता, हवा में तैरती महक को कोई बांध नहीं सकता, साज भले ही थम जाएं मगर सुरों का असर कभी नहीं मरता। इसी खूबसूरत असर को अपने दिलों में महफूज रखते हुए अब वक्त हो चला है आज की इस महफिल को यहीं समेटने का और आपसे विदा लेने का। अब मुझे यानी आपकी रेडियो दोस्त आरती को दीजिए इजाज़त। आप सुनते रहें अपना प्यारा SN रेडियोज़ और रेडियो टांटिया भीड़। अपनी सेहत का, अपनी चाहने वालों का और अपनी सोच का भी ख्याल रखिएगा। आप सभी कदरदानों को मेरी तरफ से पुरसकून शबा खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

तो दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम
1: भावना।

0: આપણ હંગલા ભાઈઓનો ઘણું ઘણું સ્વાગત કરીએ છે આપણા ઝાબુઆના સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટ્યાવેલ 90.8 FM ઝાબુઆની આવાજ પર.
1: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपरो रेडियो आपरी बातें.
2: आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज. किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्रोग्राम खेती किसानी पर. किसान साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जैविक खेती के ऊपर. जैसा कि किसान साथियों ने अपनी समस्याओं को साझा किया है और साथ ही किस तरीके से उन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है, इन सब जानकारियों को लेकर रेडियो टंटिया भील 90.8 FM ने आप लोगों के सामने आज के इस कार्यक्रम को कुछ एक्सपर्ट की मदद से उन महत्वपूर्ण जानकारियों को आपके लिए एकत्रित करके रेडियो टंटिया भील 90.8 FM आपके लिए लेकर आया है. साथ ही हम चर्चा करेंगे उन्नत बीज की फसलों के ऊपर. किसान भाइयों के फोन आते रहे हमारे पास, किस तरीके से उनकी जमीन में जो बदलाव आ रहे हैं इससे कैसे निजात पाया जा सकता है. निरंतर हम किसान भाइयों के पास जाकर उनके खेतों पर जाकर उनसे चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से हमारी जमीन में बदलाव आ रहे हैं और क्या क्या समस्याएं हैं हमारे किसानों की और किस तरीके से हम अच्छी किस्मों के बीज ला सकते हैं और उन्नत कृषि कैसे कर सकते हैं, नई तकनीकी से हम कैसे कृषि कर सकते हैं. अन्य जानकारियों को रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आप तक ये सारी जानकारियां पहुंचाता रहा है. आइए इन जानकारियों को जानने से पहले सुनते हैं एक सुंदर से भीली गीत को.

0: इस सुंदर से गीत के बाद आइए बढ़ाते हैं हम अपनी खेती किसानी की चर्चा को।
1: देखिए, खेती करने की जो हमारी जैविक खेती है वो ऐसी पद्धति है जिसके अंदर हम किसी भी जो हमारे रासायनिक खाद है उनका इस्तेमाल नहीं करते, या हमारे जो है जीवाणुनाशी हैं या कवकनाशी हैं या हमारे जो हर्बिसाइड है उनका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम एक इस तरीके से खेती करते हैं जिसमें जो है पोषक तत्व का प्रबंधन ऑर्गेनिक सोर्सेज के माध्यम से करते हैं, जैसे गोबर की गली सड़ी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, या हम रॉक्स एंड मिनरल्स को भी डालते हैं ग्राउंड करके, या रॉक फॉस्फेट को भी डाल सकते हैं। तो ऐसी पद्धति के द्वारा जो हम खेती करते हैं जहाँ पे पोषक तत्व का प्रबंधन ऑर्गेनिक सोर्सेज के माध्यम से किया जाता है, क्रॉप रोटेशन के माध्यम से किया जाता है, और खरपतवारों का नियंत्रण जो है वो हम यांत्रिक विधि से करते हैं, इंटरकल्चर ऑपरेशन से करते हैं, तो ऐसी पद्धति को हम जैविक खेती कहते हैं। और इसका जो है आजकल क्योंकि समय की मांग है, बाजार में जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, और उसके साथ साथ जैसे हमने बहुत ज्यादा रासायनिक खादों का या हमारे बहुत से केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आई है और वातावरण में भी प्रदूषित हुआ है, तो उसको दूर करने के लिए जैविक खेती जो है एक अच्छा हमारा पर्याय हो सकता है, प्रयास हो सकता है।
0: किसान साथियों, जैसे कि हमने सुना कि किस तरीके से हमारी भूमि में जो बदलाव आए हैं उससे निजात पाने के लिए हम किस तरीके से जैविक खेती कर सकते हैं, आइए बढ़ाते हैं अपनी इस चर्चा को थोड़ा और आगे।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
3: हरित क्रांति के दौरान देश की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। ज्यादा उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल शुरू हुआ। फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए भी रासायनिक दवाएं छिड़की जाने लगी। इन रसायनों ने पैदावार तो बढ़ाई लेकिन मिट्टी को कमजोर और फसलों को जहरीला बना दिया है। इतना ही नहीं, ये कीटनाशक पर्यावरण को भी दूषित करने लगे। इन दुष्परिणामों का असर इंसान ही नहीं पशुओं की सेहत पर भी पड़ रहा है। आज जब देश उत्पादन के मामले में नित नए रिकॉर्ड बना रहा है, तब खेती में रसायनों का इस्तेमाल कम करने की बात की जाने लगी है। जैविक खेती इसी सिद्धांत पर आधारित है। भारत सरकार इस तरह की खेती को अपनाने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है। जैविक खेती एक ऐसी विधि है जिसमें रसायनों की जगह गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जीवाणु कल्चर और जैविक खाद के उपयोग पर जोर दिया जाता है। इससे न

0: करने की सलाह देते हैं।
1: आइए जानेंगे किस तरीके से हम जैविक खेती कर सकते हैं। उससे पहले सुनते हैं एक सुंदर से भीली गीत को।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जैविक खेती का सबसे मुख्य फायदा ये है, जो भी हमें कृषि उत्पाद मिलता है जैविक विधि से उगाए गए, चाहे हमारे फल हैं, सब्जियां हैं, चाहे दूध है, चाहे मछली है, चाहे अंडा है, और जो हमारा कोई भी फसल का उत्पाद है, उत्पाद में जैसे हमारा ऑयल सीड भी है या पल्सिस दाल भी है हमारी, या गेहूँ है, चावल है, कॉफी है, चाय है, ये सारे उत्पाद जो है बिना किसी रसायन के उगाए जाते हैं, तो इनमें कोई भी रासायनिक का जो अवशेष होता है वो नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत से जो केमिकल डालते हैं हम, उनका कुछ अवशेष हमारे इन उत्पाद में रह जाता है, और जब इनको कंज्यूम करते हैं, चाहे हम खाएं चाहे जो पशु खाएं, तो कहीं ना कहीं वो उनके स्वास्थ्य को खराब करते हैं।
2: किसान भाइयों, अभी आप लोगों ने जाना कि किस तरीके से रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करने से वह किस तरीके से हमारी फसलों में रह जाता है और किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य पर और पशुओं के स्वास्थ्य पर दोनों पर एक बुरा प्रभाव डालता है। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, उससे पहले लेते हैं हम एक छोटा सा विराम।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: किसान साथियों, आइए जानते हैं जैविक कृषि करने से हमारी भूमि में किस तरीके से उन भूमि में बदलाव देखे जा सकते हैं।
1: तो एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो भी उत्पाद होता है जैविक विधि से उगाए गए उत्पाद में कोई भी जो हमारा रेजिड्यू होता है किसी भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड का, वो नहीं होता है, और साथ साथ जो है हमारी मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है।
3: अच्छा।
1: मिट्टी की गुणवत्ता कई तरीके से बढ़ती है, भौतिक संरचना में सुधार होता है जिससे पानी को सोखने की क्षमता बढ़ जाती है और उसकी बल्क डेंसिटी जो है कम हो जाती है, और इसके साथ साथ जो है मैं ये भी बताना चाहूंगा कि केमिकल जो हमारे गुण हैं जिनको हम रासायनिक गुण भी कहते हैं मिट्टी के, विशेषकर जैसे न्यूट्रिएंट की उपलब्धता है या पीएच मान है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इनके में भी काफी सुधार होता है, और ऐसा देखा गया है यदि हम लगातार जैविक खेती करते हैं तो हमारा जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है मिट्टी में वो बढ़ जाता है, काफी बढ़ जाता है, और हम भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पिछले करीब 15-16 साल से लगातार बासमती धान गेहूं का फसल चक्र अपना के, हमने देखा कि हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट जिसको हम आत्मा मानते हैं मिट्टी का, तो वो जो है मतलब काफी बढ़ गया है, और मिट्टी जो है हमारी पहले भुरभुरी थी अब काली मिट्टी हो गई है, और इसके साथ साथ जो है हमारी जो हमारी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है यानी कि जीवाणु है मिट्टी के अंदर, चाहे हमारे माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिन, ये सारे बढ़ जाते हैं, अर्थवर्म जो हम केंचुआ कहते हैं।
3: किसान साथियों, जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना किस तरीके से जैविक खेती करने से हमारी मिट्टी में भिन्न भिन्न बदलाव देखे जा सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी मिट्टी को पुनः उपजाऊ मिट्टी बना सकते हैं, कार्यक्रम को जारी रखेंगे, उससे पहले सुनते हैं एक सुंदर से भीली गीत को।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: हाँ देखिए, फल जो आम के लिए जो कीड़े लगते हैं उसके बारे में तो मैं इतना विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप नीम का जो ऑयल आता है उसका 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो काफ़ी हद तक जो है आपके कीड़े रुक जाएंगे। आम के लिए ऑर्गेनिक यदि आम उगा रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक आम की काफ़ी डिमांड बढ़ रही है, हमारे देश में ही नहीं जैसा सुपर मार्केट है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, लेकिन साथ साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आम की जो जैविक विधि से उगाए गए आम है उनकी काफी डिमांड बढ़ रही है। सो नीम का जो है आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं या नीम की पत्तियों को उबाल के उसका जो है हमारा अर्क बनता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कीड़ों को रोकने के लिए आम के अंदर।
2: जैविक पद्धति से उपजाए हुए फलों की मांग भी काफी है और इसके भाव भी काफी अच्छे मिलते हैं। हम चर्चा कर रहे थे जैविक कृषि के माध्यम से हम अपनी मिट्टी में किस तरीके से सुधार ला सकते हैं। आइए थोड़ा और इस बारे में और थोड़ा और जानकारी लेते हैं।
1: कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की गली छड़ी खाद डालते हैं तो क्योंकि इससे जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट यानी कि हमारा जीवांश पदार्थ जो मिट्टी के अंदर बढ़ जाता है तो वो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। मिट्टी भुरभुरी होने के कारण जो है मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है और पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है इसके साथ साथ हमारे जो जीवाणु हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं मिट्टी के अंदर। जैसे हम कुछ भी खा लें अपने पेट के अंदर जो है अच्छा भोजन, लेकिन यदि हमारा पेट का जो है माइक्रोबायोम काम नहीं कर रहा है तो हमारा जो है खाद्य पदार्थ खाया हुआ वेस्ट चला जाता है। इसी तरह मिट्टी के अंदर जो है जीवाणुओं का एक्टिव होना बहुत जरूरी है और जो हम जैविक खेती करते हैं उसमें जो है मिट्टी के अंदर जो भी जीवाणु होते हैं चाहे हमारे बैक्टीरिया है या फंगस है या हमारे और दूसरे जैसे दूसरे जो भी मित्र कीट है वो काफी एक्टिव हो जाते हैं और वो जो है इसको डिकम्पोज भी करते हैं। जो हमारे ऑर्गेनिक सोर्सेज न्यूट्रिएंट के होते हैं, चाहे हरी खाद डालें चाहे गोबर की खाद डालें, चाहे हम जो है कोई इस तरीके से और भी हरी खाद भी 2-3 तरीके की होती है जैसे मिट्टी के अंदर उगा के या मिट्टी के अंदर मिलाते हैं खेत उसी खेत के अंदर, लेकिन कुछ जो है हम हमारे मैंड पे या बंड पे उगाते हैं दूसिनिया वगैरह तो उसको जो है उसकी पत्तियों को टहनियों को काट कर लाके मिट्टी के अंदर मिलाते हैं उसको जो हम एक्सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग कहते हैं। तो इस तरीके से जो है मिट्टी की जो ओवरऑल सोयल की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। तो हम मैं ये कह सकता हूँ हमारे परीक्षण के आधार पर जो पिछले हम करीब 15-16 साल से जो है ऑर्गेनिक की खेती कर रहे हैं पूसा संस्थान में बासमती धान गेहूं के अंदर, तो मिट्टी की जो है भौतिक संरचना में और इसके साथ साथ जो है हमारे जो हमारे रासायनिक गुण है उन गुण धर्म है मिट्टी के उनमें भी सुधार हुआ है और साथ साथ जो है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज उनमें भी सुधार हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट जो है पहले 0.5 के आसपास था, जो 0.9 और 1% के आसपास ऑर्गेनिक के अंदर आ गया है और जो हमारा जीवांश पदार्थ है यही जो है सबसे बड़ा न्यूट्रिएंट का रिसोर्स माना जाता है मिट्टी के अंदर। तो इस तरीके से यदि खेती करते हैं किसान भाई तो उसमें 2-3 फायदे और भी हो सकते हैं, पानी कम देने की जरूरत पड़ती है।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: और जैविक खेती का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता घटती चली जा रही है, पहला फायदा तो ये है मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाती है। दूसरा फायदा ये है कि जो भी हम उत्पाद लेते हैं खेती करके जैविक विधि से तो वो उत्पाद जो है उसमें किसी भी तरीके का जो हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं पशुओं के स्वास्थ्य को खराब करते हैं कोई भी ऐसा केमिकल का रेजिड्यू नहीं रहता है। और तीसरी बात यह है वातावरण जो हमारा शुद्ध होता है वातावरण में, क्योंकि जब हम केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं तो उससे जो है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन होता है या हमारा जो है अमोनिया गैस बहुत रिलीज होती है क्योंकि एकदम फर्टिलाइजर डाला हमने और हाई टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी भी है और मिट्टी भी इतनी सही नहीं है तो अमोनिया गैस बनकर उड़ जाती है, वो भी जो है हमारा ग्रीन हाउस गैस में एक तरीके से कंट्रीब्यूट करती है। और तीसरी बात यह है कि हमारा जो वातावरण के साथ साथ सबसे बड़ा आज का जो सवाल है किसानों की आमदनी बढ़ाना, तो आमदनी बढ़ाने के लिए चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा खर्चा शुरू में तो ज्यादा आता है, लेकिन बाद में जब हम 3-4 साल के बाद में करना शुरू करते हैं फिर खर्चा इतना ज्यादा नहीं आता है। तो उस तरीके से जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डालने से मिट्टी में जो डालते हैं उससे हमारा उत्पादन लागत बढ़ जाती है और जो हमारा रिटर्न मिलता है वो कम मिलता है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का जो है डिमांड मार्केट में बढ़ रही है और इसका जो है प्रीमियम प्राइस भी मिलता है, क्योंकि यदि हम सामान्य विधि से कोई भी क्रॉप को उगाते हैं उसका मार्केट में उत्पाद लेकर जाते हैं तो उसका उतनी कीमत नहीं मिलती है जितनी जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मिलती है। और विशेषकर मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा जो हमारा नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो होता है वो इसमें ही ऑर्गेनिक के अंदर ज्यादा आता है, अर्थात यदि हम 1 रुपया लगाते हैं तो उसमें करीब 2-2.5 रुपया मिल जाता है, जबकि कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में इतना नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से किसानों की आय भी बढ़ती है, मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और पर्यावरण भी अच्छा होता है, शुद्ध पर्यावरण रहता है। तो ये सारे फायदे हैं मिट्टी की।
3: डॉक्टर शिवे, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर कृषि लागत की तुलना की जाए तो रासायनिक खेती की तुलना में जैविक खेती में कितनी लागत आती है?
1: हाँ देखिए, जैविक खेती में लागत इससे शुरू में थोड़ी यूँ ज्यादा आती है, क्योंकि हम ज्यादा जो है FIM डालते हैं, जो गोबर की गली छड़ी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, वो थोड़ी ज्यादा डालने की जरूरत पड़ती है शुरू में। बाद में थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि बाद में हम क्रॉप रेजिड्यू भी रिसाइकिल करते हैं और फिर इंटरक्रॉपिंग भी अपनाते हैं, जो सह फसली खेती है उसको भी करते हैं और उसमें ऐसा भी हम प्रोविजन करते हैं कि जो हरी खाद की फसलें हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट किया जाए और कोई भी हम रेजिड्यू बाहर नहीं लेकर जाते, वहीं रिसाइकिल करते हैं अपने फार्म। तो इस तरीके से जो है शुरू में थोड़ी 20 से करीब 25% जो है उत्पादन लागत बढ़ जाती है, लेकिन आगे आने वाले समय में 4-5 साल के बाद में जो है उत्पादन लागत इतनी ज्यादा नहीं रहती, बल्कि उत्पादन लागत घट जाती है। और उसका कारण यही है कि हम हरी खाद का इस्तेमाल करते हैं और जो कोई भी क्रॉप रेजिड्यू है उसको हम बाहर नहीं लेकर जाते, वहीं पे उसको रिसाइकिल करते हैं। और जो पशु पालते हैं उनका भी जो है हमारा गौमूत्र होता है या हमारा गोबर की खाद होती है उसका रिसाइकिल करते हैं। और हमारी आत्मनिर्भरता जो है वो हमारे जो रिसोर्सेज है उस पर ज्यादा बढ़ती है, न कि हम बाहर से ला के फर्टिलाइजर डालें या इंसेक्टिसाइड डालें या पेस्टिसाइड डालें। और दूसरे हम बीज भी जो है ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट करते हैं अपने घर पे ही उगाते हैं या किसान उगाते हैं उसी का इस्तेमाल करते हैं, हम बाजार से बार बार जो है बीज को लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से शुरू में थोड़ी लागत 20 से 25% ज्यादा आती है, लेकिन 3-4 साल के बाद में 5 साल के बाद में लागत में कोई ज्यादा वो नहीं होता, लेकिन बाद में फिर जो हमारा उत्पाद का कीमत मिलती है बाजार के अंदर वो बहुत अच्छी मिलती है। और आजकल जो है जो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर है, सुपर मार्केट है और जो हमारे बड़े शहर है जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, सब देखिए आप हर एक जगह कहीं भी जाएंगे, कहीं भी डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जो अलग से ही जो जैविक उत्पाद की अलग से ही सेल्फ बनी होती है और जो कंज्यूमर है जो उपभोक्ता है वो कभी ये नहीं देखता कि इतनी कीमत क्यों है, वो तुरंत लेकर चल देता है, क्योंकि उसको ये एश्योरेंस है कि इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हर्बिसाइड का अवशेष नहीं बचा हुआ है या है नहीं।
3: आजकल सेहत को लेकर जागरूक होने लगे हैं जी, और ऐसे में अगर अच्छी चीज उन्हें कुछ ज्यादा कीमत पर भी मिल रही है तो वो गुरेज नहीं करते हैं लेने में, इसलिए जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी मांग काफी बढ़ने लग गई है।
0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम काफी समय से रसायनों का प्रयोग हमारी भूमि में करते आ रहे हैं और अब एकदम से उसको बदल कर हम जैविक कृषि की ओर अगर हम रुख करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से पोषक तत्व जो हमारी मिट्टी के लिए ज़रूरी होंगे, जैविक खेती के अनुसार कौन कौन से पोषक तत्व हमें उनको देना चाहिए, आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
2: हाँ देखिए, पोषक तत्व प्रबंधन पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो 17 पोषक तत्व हैं और जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर जो हमको द्वितीय पोषक तत्व कहते हैं और कुछ हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिसमें जिंक है, मैग्नीशियम, कॉपर है, आयरन है। तो इनको प्रबंधन करने के लिए जैविक खेती के अंदर सबसे अच्छा स्रोत जो है हम मानते हैं वो गोबर की गली सड़ी खाद है, वर्मी कम्पोस्ट है, बायो फर्टिलाइजर्स है, क्रॉप का जो शेष बचा हुआ है उसको हम रिसाइकिल करके खेत के अंदर ही या तो हम जो है उसको मिट्टी के अंदर मिला भी सकते हैं और साथ साथ जो है कुछ हम ऐसे फंजाई या बैक्टीरिया डालें जिससे उसका डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाए तो उससे पोषक तत्व का उपलब्धि हो जाती है। और इसके साथ साथ जो हम ये बताते हैं ऑर्गेनिक खेती के अंदर, जैविक खेती के अंदर, कि हम क्रॉप रोटेशन जरूर अपनाएं।
1: किसान साथियों, अभी आपने पोषक प्रबंधन को जाना, अब लेते हैं हम छोटा सा विराम यहाँ पर और इस विराम के बाद हम जानेंगे फसल चक्र से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ, झाबुआ की आवाज
3: ले लो।

0: ಸಾಮುದಾಯಿಕ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೇಡಿಯೋ ಟಾಂಟ್ಯಾ ಭೀಲ್ 90.8 FM. ಆಪ್ಡೋ ರೇಡಿಯೋ ಆಪ್ಡೀ ಬಾತೇ.
1: ठंडी के फसल चक्र की बहुत बड़ी अहमियत है जैविक खेती में, क्योंकि हम इस तरीके से जो है फसलों को उगाते हैं हेर फेर करके, ताकि हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी बनी रहे और हमको जो है उससे जो आमदनी भी होती रहे. तो इस तरीके से अपनाए हम, जैसे कि सपोज हम उदाहरण के लिए जो है दाल की फसल कर रहे हैं, तो दाल की फसल का करना बहुत जरूरी है जैविक खेती के अंदर. उसके बाद हम तिलन ले सकते हैं, उसके बाद हम सब्जी ले सकते हैं. तो इस तरीके से फसल चक्र को अपनाएं ताकि मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहे. और यदि हम फसल चक्र अपनाते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े भी कम आते हैं और साथ साथ जो हमारे खरपतवार आते हैं उनकी भी जो है कमी हो जाती है. तो फसल चक्र का जो है जैविक खेती में बहुत बड़ा महत्व है. मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जैविक खेती में, जहां भी आप जैविक खेती कर रहे हैं, वहां पे इस तरीके का फसल चक्र अपनाएं जहां पे जो है हमको दो दाल वाली फसलों को जरूर रखना पड़े. जैसे कि हमारी मूंग बीन है, उड़द बीन है, काउपी है, या इसके साथ साथ जो हमारा चना है, मटर है, मसूर है, अरहर है, ऐसी फसलों को जो है आप अपने जैविक खेती के फसल चक्र में जरूर रखें. तो इसके साथ साथ आप कुछ क्षेत्र में सीरियल भी उगा सकते हैं, धान गेहूं, इस तरीके का फसल चक्र अपना सकते हैं उसके साथ साथ. लेकिन हरी खाद भी आप 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में, जैसे ढेंचे की है या हमारी जो सनई की है, इस तरीके की जरूर रखें. और साथ साथ जो हमारा और भी क्रॉप रेजिड्यू होता है तो उसको जो है कहीं बाहर ना लेके जाएं, मिट्टी के अंदर ही मिलाएं. तो फसल चक्र का ये सबसे बड़ा फायदा जो है मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना और हमको जो है जो हमारे अपने कंजम्पशन के लिए तो है ही है, लेकिन आमदनी अच्छी दे, तो इस तरीके से फसल चक्र को अपनाना चाहिए. और मार्केट को पहले देख लें नजदीक कि किस फसल की जो है डिमांड ज्यादा है, कौन सी सब्जी की आपके जहां फसल जैविक खेती करना चाहते हैं, तो इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा अच्छा फायदा होगा. और मैं समझता हूं कि बहुत से किसान जो है फसल चक्र को ध्यान में रख के ही.
2: किसान साथियों, जैसा कि अभी आप लोगों ने अभी सुना किस तरीके से फसल चक्र का होना बहुत जरूरी है, किस तरीके से ये हमारे लिए फायदेमंद है, हमारी कृषि भूमि के लिए फायदेमंद है और किस तरीके से हम आने वाली फसलों में इसका लाभ उठा सकते हैं. दोस्तों, चर्चा को हम जारी रखेंगे, उससे पहले हम सुनते हैं एक सुंदर से भीली गीत को.

किसान साथियों, खेती किसानी कार्यक्रम में आप लोगों ने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, किस तरीके से हम जैविक खेती कर अनेकों लाभ कमा सकते हैं, साथ ही फसल चक्र के बारे में भी हमने सुना, और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को अपने इस प्रोग्राम के थ्रू आपने जाना है। आइए सुनते हैं एक और प्यारे से भिली गीत को।

0: किसान साथियों, अभी आपने सुना एक सुंदर से भीली गीत को। अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त पर। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप रेडियो अपनी बातें।
2: હું છે આરજે રાકેશ
3: અને હું છે આરજે કમતા ડામોર
2: તમુ હાંભળી રહ્યા છે કાર્યક્રમ
3: ખેતીવાડી
2: આપણા ઝાબવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર। નમસ્કાર કિસાન ભાઈઓ, સ્વાગત છે તમારો સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM છાબવાની આવાજ પર। હું છે આરજે રાકેશ અને રોજની જેમ તમારી વસમાં આજ ફેર કાર્યક્રમ ખેતીવાડી લઈને હાજર થયો છે। અને કિસાન ભાઈઓ, હું રોજ તમારી વસમાં ખેતીવાડી દેખા જોડાયેલા મુદ્દા, ખેતીવાડીની સમસ્યાઓ અને તેના સમાધાનની વાતો લઈને રોજ એના સમય પર હાજર થામશે। તો કિસાન ભાઈઓ, આજના ખેતીવાડી કાર્યક્રમમાં આપણો ચર્ચાનો નવો વિષય રહેવાનો છે મછલી પાલન, એટલે માછલા પાળવાની વાતો। બધી વાતો આપણને બતાડે કૃષિતા જોડાયેલા વિશેષજ્ઞ અને એવા કિસાન ભાઈ જ્યાં માછલા પાલન કરીને ઘણો અસલ અને મોટો મુનાફો કમાઈ રહ્યા છે। તો કિસાન ભાઈઓ, ઘણો મહત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમ છે, જાજો મતી કહેતા અમલતા રહેજો કાર્યક્રમ ખેતીવાડી।
4: बार का कृषि विशेष हम आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे देश के दक्षिणी छोर पर बसे राज्य तमिलनाडु से। तमिलनाडु वैसे तो अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति भी अन्य राज्यों से काफी भिन्न है। जहां पूर्वी तट पर ये एक समतल प्रदेश है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें उत्तरी और पश्चिमी भाग की, तो ये पर्वतीय क्षेत्र में विभाजित हो जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु की कोस्ट लाइन भी काफी लंबी है, जो कि 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। और इसके पीछे वजह है, पूर्वी तट पर जहां यहां बंगाल की खाड़ी है, वहीं दक्षिण में यह अरब सागर से घिरा हुआ है। इसीलिए यहां के लोगों के जीवन की बात करें तो उनके जीवन और आजीविका का माध्यम है समंदर। आज हम बात करेंगे कि कैसे तमिलनाडु में मत्स्य पालन को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है और नई तकनीक से कैसे मछुआरों और किसानों के जीवन में बदलाव आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की, जिसमें हम बात करेंगे आय की गारंटी मछली पालन।

0: आज के समय में बढ़ती आबादी की वजह से कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है, जिस कारण कम समय में अधिक उपज ले पाना भी बहुत ही मुश्किल होने लगा है। इस तरह की समस्याओं के लिए कुछ अलग तरह की कृषि का चयन एक बेहतर विकल्प हो सकता है, ताकि कम समय में अधिक पैदावार प्राप्त कर मूल्य भी अच्छा प्राप्त किया जा सके। ऐसा ही एक व्यवसाय है मछली पालन। इस व्यवसाय में मुनाफे वाले सभी गुण मौजूद हैं। यह एक उच्च कोटि खाद्य पदार्थ व्यवसाय है। देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में मत्स्य पालन का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही मछली पालन आर्थिक रूप से पिछड़ी आबादी के एक बड़े वर्ग के लिए आजीविका का साधन भी है। यह क्षेत्र रोजगार, पोषण सुरक्षा और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी सहायक है। मछली उत्पादन भारत को सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गिना जाता है। कारण है यहाँ के दक्षिणी राज्य। भारत में सामान्य तौर पर तीन देशी कतला, रोहू, मृगल और तीन विदेशी सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प मछलियों का पालन किया जाता है। बीते कुछ वर्षों में मत्स्य पालन क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए किसानों की रुचि भी मछली पालन की ओर बढ़ी है। देश के किसान या मछली पालक वैज्ञानिकों की सलाह पर नई तकनीकों के माध्यम से मछली पालन के व्यवसाय को अपनाकर उत्पादन में वृद्धि कर पोषक और संतुलित आहार की मात्रा को लोगों तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं और अपनी आय को दुगुना करने में भी प्रयासरत हैं।
1: मछली पालन आय की गारंटी में आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि वर्तमान में तमिलनाडु में मछली पालन या फिर कहें मत्स्य पालन क्षेत्र की स्थिति क्या है, इसको लेकर सरकार की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं।
0: तमिलनाडु के समुद्री राज्य को 1076 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 41,412 किलोमीटर दो महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्र के साथ 1.9 लाख वर्ग किलोमीटर के विशेष आर्थिक जोन का आशीर्वाद प्राप्त है, जो 5.95 लाख टन समुद्री मछली उत्पादन में योगदान देता है। ये 5,830 मशीनीकृत और 45,685 पारंपरिक मछली पकड़ने वाले शिल्पों के माध्यम से 10.48 लाख समुद्री मछुआरों को आजीविका का समर्थन करता है, जो सक्रिय रूप से मछली पालन में लगे हुए हैं। तमिलनाडु के पास 3.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। प्रभावी अंतर्देशीय जल संसाधनों में जलाशय प्रमुख सिंचाई टैंक, लघु सिंचाई टैंक, छोटे मौसमी टैंक, तालाब, नदियाँ, बैक वाटर और परित्यक्त जल निकाय शामिल हैं। अंतर्देशीय मछुआरों की आबादी 2.35 लाख है। 56,000 हेक्टेयर का अनुमानित खारा जल क्षेत्र मत्स्य पालन और 6,115.68 हेक्टेयर क्षेत्र है, तटीय जलीय कृषि उत्पादन के अंतर्गत है। मुख्य रूप से झींगा जलीय कृषि, तमिलनाडु समुद्री खारे पानी और अंतर्देशीय मत्स्य संसाधनों से समृद्ध है, जो मत्स्य पालन और संवर्धन के लिए उपयुक्त है। तमिलनाडु सरकार द्वारा मत्स्य संसाधनों के आर्थिक और सामाजिक आयामों पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। मत्स्य पालन क्षेत्र बड़ी संख्या में मछुआरों को आजीविका प्रदान करके संबंध क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करके देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात करें उत्पादकता की तो आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 में देश का कुल मछली उत्पादन 16.24 मिलियन मीट्रिक टन था। भारत दुनिया में मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और अंतर्देशीय मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। मत्स्य पालन क्षेत्र देश की जीडीपी में 1% योगदान देता है। देश के कुल समुद्री मछली उत्पादन में तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। तमिलनाडु ने 2021-22 के दौरान 1.14 लाख मीट्रिक टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया और 6,559.64 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की। राज्य की प्रति व्यक्ति मछली की खपत भी 2020-21 के दौरान 9.3 किलोग्राम से बढ़ गई है। केंद्र सरकार मत्स्य उत्पादन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चला रही है। इस योजना को मछली उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता से लेकर प्रौद्योगिकी, कटाई के बाद की बुनियादी ढांचे और विपणन तथा मत्स्य मूल्य श्रृंखला में बेहतरी के लिए डिजाइन किया गया है। इस
2: इसका उद्देश्य मूल्य श्रृंखला को आधुनिक बनाना और मजबूत करना है। मत्स्य योजना का मकसद नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कुल अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना में केंद्र की हिस्सेदारी 9,407 करोड़ रुपए है, जबकि राज्यों की हिस्सेदारी 4,880 करोड़ रुपए है और लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5,763 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य मछली उत्पादन को साल 2024-25 तक 220 लाख मीट्रिक तक बढ़ाने का है। इस महत्वाकांक्षी योजना से निर्यात आय दूनी होकर 1,00,000 करोड़ रुपए हो जाएगी और इस योजना के माध्यम से मछली पालन के क्षेत्र में लगभग 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने की संभावना है। इस योजना में कई नई गतिविधियों और क्षेत्रों जैसे जेनेटिक सुधार कार्यक्रम, एक्वा कल्चर स्टार्टअप, मछली की खपत के लिए प्रचार गतिविधियों, तटीय मछली पालन ग्रामों का विकास और अत्याधुनिक थोक मछली बाजार आदि पर ध्यान केंद्रित करना है। सरकार के द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों और नई नई योजनाओं के फलस्वरूप ही हमारे किसान भाई और मछली पालक अपने क्षेत्र में सफल हो पा रहे हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाएं हैं, जिससे मत्स्य पालन के क्षेत्र को अधिक बल मिल रहा है, जिसके कारण हमारे देश के मछली पालक पहले से और भी ज्यादा मजबूत और सुदृढ़ तरीके से काम कर रहे हैं और अपने कल को संवार रहे हैं।
1: तो आपने जाना कि कैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से हमारे मछुआरों को लाभ हो रहा है और उनकी आजीविका भी सुनिश्चित हो रही है। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा, कहीं मत जाएगा। इस बार का कृषि विशेष हम आप तक पहुँचा रहे हैं तमिलनाडु के मंडपम से।

0: पारंपरिक तरीके से समुद्र में फिशिंग यहाँ के लोगों की आय का मुख्य साधन रहा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में मछलियों की संख्या तटीय क्षेत्रों में घटने लगी, जिसकी वजह से मछुआरों की आय पर भी आशंका के बादल मंडराने लगे। आइए अब आपको बताते हैं कि सरकार की तरफ से जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं उससे मछुआरों को किस तरह से लाभ हो रहा है और इसको लेकर वो क्या कहते हैं।
1: खेती हो या फिर मछली पालन का क्षेत्र, सरकार इन्हें मजबूत बनाने के उद्देश्य से नित नई योजनाएं लेकर आती रहती है, जिसके फलस्वरूप किसान और मछुआरे आत्मनिर्भर होकर अपने कार्य में सफल हो रहे हैं।
2: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கேன், திருவான வட்டம் தொண்டி புதுக்குடியில் மீனவராக இருக்கேன். நான் வந்து முன்ன வந்து படகு நாட்டு படகு வச்சுருந்தேன், அது இப்போ மீனவர் இதிலேருந்து எனக்கு போட்டு தந்திருக்காங்க, பிரதமர் திட்டத்திலேருந்து எனக்கு வந்து போட்டு தந்திருக்காங்க. இப்போ முன்ன வந்து சராசரி ஒரு நாளைக்கு 500 வருமானம் வந்தது, இப்போ வந்து 1000 பரவலமாக வருமானம் வருது. இந்த வசதி பண்ணி தந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப நன்றி. மீன் வளத்துறைக்கு ரொம்ப நன்றி.
0: மச்சலி பாலன் கே கை பிரகார் ஹே ஆர் உன்ஹி மே சே ஏக் ஹே ஆதுனிக் தக்னீக் சே மச்சலி பாலன் யானி கேஜ் கல்ச்சர். केज कल्चर की बात करें तो ये पर्यावरण के अनुकूल है और ये खुले समुद्र में ही किया जाता है, जहां पर लहरों की गति कम होती है। इसके अलावा एक और फायदा है केज कल्चर का। जी हां, केज कल्चर की मछलियों की कीमत बाजार में अच्छी प्राप्त होती है, यानी इन्हें कभी भी बाजार में बेचा जा सकता है और अच्छी आय अर्जित की जा सकती है।
1: किसी भी व्यवसाय को सफल बनाने में नई और आधुनिक तकनीक बेहद उपयोगी साबित होती है। मछली व्यवसाय के लिए भी नई तकनीकों का अपना ही फायदा है। इस क्षेत्र के लिए नई तकनीक किसी क्रांति से कम नहीं। नई तकनीकों के माध्यम से मछली पालकों को काफी लाभ हो रहा है और उनकी आमदनी में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। अब उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं और वैज्ञानिक इसमें मददगार बन रहे हैं। मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी बेहद लाभदायक तकनीक है केज कल्चर। ये मछली पालन की नई तकनीक है, जिसमें जलाशयों में निर्धारित जगह पर फ्लोटिंग ब्लॉक बनाए जाते हैं। सभी ब्लॉक इंटरलिंक रहते हैं। जाली में 100-100 ग्राम वजन की मछलियां पालने के लिए छोड़ी जाती हैं। मछलियों को प्रतिदिन आहार दिया जाता है। फ्लोटिंग ब्लॉक का लगभग 3 मीटर हिस्सा पानी में डूबा रहता है और 1 मीटर ऊपर तैरते हुए दिखाई देता है। केज कल्चर में पंगेशिस प्रजाति की मछली का पालन होता है। 100-100 ग्राम की मछलियां 10 महीनों में 1.25 किलो की हो जाती हैं। बीते कुछ वर्षों से मछली पालक इस कल्चर को ज्यादा अपनाने लगे हैं और उन्हें लाभ भी मिल रहा है। मछली पालन के क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं भी देखी जाती हैं। एक तो जमीन और जलीय संसाधन में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा हो गई है और लागत भी काफी बढ़ गई है। इसके अलावा विदेशी प्रजातियां पालन से मूल किस्मों पर बुरा असर पड़ रहा है और बहुत अधिक बीज संवर्धन करने के कारण बीमारियां भी फैल रही हैं। ऐसे में नई तकनीकों को चुनना ही सरल उपाय है, जिसमें से एक है बायोफ्लॉक तकनीक। इस तकनीक के सहारे कम क्षेत्र में मछलियों का अधिक उत्पादन किया जा सकता है। बायोफ्लॉक दरअसल शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ, अनुपयुक्त खाना और मछली मल से बना होता है। इसमें 60-70% कार्बनिक और 30-40% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। बड़े बायोफ्लॉक नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। मछली पालन में बाहर से दिए गए फीड का 20-30% हिस्सा ही मछलियां उपयोग करती हैं, बाकी बचे पानी में ही रह जाते हैं। इन्हीं बचे हुए कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को बायोफ्लॉक विशेष सूक्ष्म जीवों के जरिए फिर से खाने लायक बना देती है। इस तकनीक से लगातार पानी में ऑक्सीजन मिलता रहता है।
0: मत्स्य पालन तकनीक कई प्रकार की होती है और तटीय क्षेत्र में खेती के लिए सबसे आदर्श है, लेकिन इसे और विकसित करने के लिए और नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हैचरी का विकास भी बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि हैचरी के विकास के लिए कौन कौन से नवाचारों को मत्स्य पालन से जोड़ा जा रहा है।

0: और इससे कौन से नए आयाम मत्स्य पालन के क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं।
1: मछली पालन करने के साथ ही मछली बीज उत्पादन हैचरी लगाकर भी किसान भाई अच्छी कमाई कर सकते हैं। बढ़ते मछली पालन के कारण आजकल मछली बीज की अच्छी खासी मांग है। ऐसे में मत्स्य बीज उत्पादन स्वरोजगार का अच्छा माध्यम बन सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार अनुदान भी दे रही है। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान मंडपम के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश कुमार ने इसके बारे में जानकारी दी।
2: Here my discipline is veterinary pathology. I am taking care of fish health status in hatchery as well as in the cage system. So fish is totally depending upon the water environment. So at any stages from larviculture to broodstock, nursery and larvae and grow-out stages, at any stages disease will come. So the water, we have to keep it, the water environment very neat and clean. So the feed return, it is play a major role. So we have to take the feed return properly. Otherwise, there will be getting chances of ammonia formation. So in the rearing system, the larviculture and the nursery system, ammonia formation is the main thing, getting chances of mortality. From the larvae to broodstock, many diseases are coming, disease and disorders are coming. Particularly in hatchery system, they are getting chances of parasitic infestation. There is getting chances of ciliates, protozoal, and other crustacean parasites are the parasitic infestation which affecting in the hatchery system. So for that one, water is the main thing. We have to prevent the ammonia formation. So the other water parameters like temperature, dissolved oxygen, ammonia and salinity, that and all for suit, we have to keep it the water in the suitable for the fish culture. So in cage system, once after completion of the nursery phase, we used to stock in the cage system. When it is going to the open system, getting chances of many infections. So we have to give more more immunity or more immune boosting supplements to the fishes in larviculture. So for that, we are giving any vibriosis kind of vaccination.
1: नई नई तकनीकों का फायदा अब केवल खेती में नहीं बल्कि आधुनिक तकनीकों का साथ लेकर मछली पालक भी निश्चित ही सफलता हासिल कर सकते हैं, साथ ही अच्छी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं।
0: यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्या है CMFRI की भूमिका, कैसे नई तकनीक से हमारे किसान, हमारे मछली पालक मछली पालन को नए आयाम तक ले जा रहे हैं। जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।

0: मत्स्य पालन के क्षेत्र में CMFRI की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि समंदर की कई ऐसी मछलियों की प्रजातियां हैं जो कि विलुप्ति की ओर हैं। ऐसे में CMFRI की तरफ से ऐसे अनुसंधान किए जा रहे हैं और ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इन प्रजातियों को बचाया जा सके और हमारे मछुआरों की इनकम में वृद्धि भी हो सके। आइए जानते हैं कि इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का क्या कहना है।
1: भारत सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन 3 फरवरी 1947 को केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई और बाद में वर्ष 1967 में संस्थान को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिवार से जोड़ दिया गया। स्थापना के बाद लगभग 65 वर्षों के दौरान संस्थान विश्व में ही अग्रणी उष्णकटिबंधीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान बन गया। बीते सालों में संस्थान ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। CMFRI की मुख्य उपलब्धि 8000 किलोमीटर से अधिक होने वाली तट रेखा से मत्स्य की पकड़ एवं प्रयास का आकलन करने के लिए विशेष तरीका, जिसे स्ट्रेटिफाइड मल्टी स्टेट रैंडम सैंपलिंग मेथड कहा जाता है, का विकास एवं शोधन है। इस प्रणाली से संस्थान भारत के सभी समुद्रवर्ती राज्यों से पकड़ी गई 1000 से अधिक प्रजातियों से संबंधित 9 मिलियन पकड़ एवं प्रयास के डाटा रिकॉर्डों सहित कई राष्ट्रीय समुद्री मत्स्यिकी आंकड़ा केंद्र का अनुरक्षण कर रहा है। समुद्री संवर्धन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसमें MFSC और PhD पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। समुद्री संवर्धन में मानव संपदा का भी सफलतापूर्वक विकास किया गया। CMFRI ने नए क्षेत्रों जैसे समुद्री पखमछली पालन, जैव प्रौद्योगिकी और जैव विविधता में अनुसंधान कार्य शुरू किए हैं। मत्स्य पालन के क्षेत्र में केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान मंडपम के निदेशक ने संस्थान की भूमिका और आने वाले सालों में किन किन मुख्य कार्यों पर संस्थान का फोकस रहेगा, इसके बारे में विस्तार से बताया। आइए जानते हैं।
2: The ICAR Central Marine Fisheries Research Institute is one of the premier fisheries research institute of the Indian Council of Agricultural Research. The CMFRI was initially started at Madras in the year 1947 and subsequently it was shifted to Mandapam camp in the year 1949, and then it continued to function as the CMFRI headquarters till 1971, and in 1971 the headquarters was shifted to Kochi in Kerala. In 1967, this institute, CMFRI, came under the aegis of the Indian Council of Agricultural Research. Now, Mandapam Regional Center is one of the oldest and the largest regional center of ICAR, Central Marine Fisheries Research Institute.
1: संस्थान ने तटीय आवास तंत्र और मछुआरों पर बुरा असर डालने वाले जलवायु परिवर्तन मुद्दों का संबोधन किया। समुद्री प्रग्रहण एवं पालन मत्स्यिकी में संस्थान के बहुविषयक पहल से विश्व के किसी भी सुव्यवस्थित समुद्री प्रयोगशाला की तुलना में अग्रणी संस्थान की मान्यता प्राप्त हुई है।
2: The center has achieved significant breakthrough in breeding two very important commercially important food fishes. One is the cobia, Rhachicentron canadum, and the silver pompano, Trachinotus blotchi. So these are the two important fishes which the center has bred. And we continue to work on standardization of captive breeding and seed production of many of the commercially important food fish resources. The center also focuses on the studies on fishery environment and also on marine biodiversity, particularly on the coral reef ecosystem, the mangrove ecosystems, and also on the protected species, the marine protected species. Another important aspect is when we talk about the seaweed farming as well as the captive breeding for seed production of commercially important food fishes, because the grow out of food fishes is mainly done in marine cages, the open sea cages. So along with that, we are trying to integrate the seaweed farming, which is popularly called as the integrated multi-trophic aquaculture, that is rearing fishes in open sea cages. And so in association to that, we are also having the rafts of seaweeds, so that a combination of fish rearing and seaweed farming is done. The focus for the next 1 year would be in the front of capture fisheries. We'll be focusing on the stock assessment and population dynamics of some of the important commercially food fishes and shellfishes which are not attempted so far. And in fishery environment and biodiversity, like we are working on the jellyfish swarming dynamics. We have been working, this particular project has been on for the last 6 years, and we continue to work on the swarming dynamics of jellyfishes.
1: केंद्रीय समुद्री मत्स्यकी अनुसंधान संस्थान मंडब के निदेशक ने बताया कि यह संस्थान नई तकनीकों पर काम कर रहा है, जो कि किसी भी संस्थान को आगे बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण है.
0: पारंपरिक तरीके से समुद्र में फिशिंग यहाँ के लोगों की आय का मुख्य साधन रहा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में मछलियों की संख्या तटीय क्षेत्रों में घटने लगी, जिसकी वजह से मछुआरों की आय पर भी आशंका के बादल मंडराने लगे. आइए अब आपको बताते हैं कि सरकार की तरफ से जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, उससे मछुआरों को किस तरह से लाभ हो रहा है और इसको लेकर वो क्या कहते हैं.
1: इस संस्थान द्वारा विलुप्त हो रही मछलियों को बचाने के उद्देश्य से कई कार्य किए जा रहे हैं. ब्रूडस्टॉक प्रबंधन के माध्यम से यहाँ कार्य कर रहे वैज्ञानिक इन प्रजातियों को सुरक्षा दे रहे हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.
3: फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर कोबिया एंड सिल्वर पंपानो वर डेवलप्ड हियर एंड दीज फिशेस दे हैव अ वेरी हाई एंड फास्ट ग्रोथ रेट एंड ऑल्सो इट हैज अ वेरी गुड मार्केट. सो वी प्रोड्यूस द सीड्स एंड द फार्मर्स are taking the seeds from us and they are farming in their cages and the coastal ponds. This is a endemic species of this Gulf of Mannar and Park Bay. We carry out this activity to enhance the stock in the wild. We produce the host larvae and ranch them in the Gulf of Mannar and Park Bay, which is the natural environment for this shrimp, and they grow in their natural environment and they are caught by the fishermen.
1: मत्स्य पालन क्षेत्र 2,80,00,000 लोगों को रोजगार दे रहा है. इसमें समुद्र से मछलियां पकड़ने वाले मछुआरे भी शामिल हैं और तालाबों में मछली पालन कर रहे किसान भी. मछली उत्पादन व्यवसाय दिनों दिन लोकप्रिय होता जा रहा है, कारण अपार संभावनाएं. दुनिया भर में लगभग 500 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए मत्स्य पालन पर निर्भर हैं. बीते वर्षों में मछली उत्पादन में वार्षिक बढ़ोतरी देखी गई है. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे देश में मछली व्यवसाय का भविष्य उज्जवल है.
4: हूँ से आरजे राकेश
5: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
4: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती वाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर. तो किसान भाइयों हमने आपकी बात हामली मछली पालन एतरे मासला पालवानी बातियों બધી વાતો આપું કૃષિ થા જોડાયેલા વિશેષજ્ઞ અને અનુભવી લોકોએ વતાડી. હાથે હાથ એક એવા કિસાન ભાઈએ તીનુંની સ્ટોરી આપણી વસમાં સાજા કરી કે કેવી રીતે માછલા પાળવાની ખેતી કરીને ત્યાં ઘણો અસલ અને મોટો મુનાફો કમાઈ રહ્યા છે. કિસાન ભાઈઓ જેવી રીતે પાણી પડી ગયો છે અને નાના નાના બાંધમાં પણ આપું માછલાના

0: के एक साल का ईयरलिंग बनाना पड़ता है, तो उसके बाद स्टॉकिंग पॉन्ड में हम लोग स्टॉक करते हैं, तो 6-8 महीने में वो एक मार्केटेबल साइज हो जाता है।
1: सफलता की इस दास्तां को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं मछली पालन पर एक खास रिपोर्ट के बारे में।
2: मछली भारत में भोजन, पोषण, रोजगार व आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मछली पालन क्षेत्र संभावनाओं से भरा है। प्राथमिक स्तर पर ये क्षेत्र करीब 2.8 करोड़ से अधिक मछुआरों और मत्स्य पालकों को आजीविका, रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करता है। मछली उत्पादन पिछले 75 वर्षों में 22 गुना की वृद्धि के साथ एक व्यावसायिक उद्यम में बदल गया है। साल 1950 से 51 में मात्र 7.5 लाख टन से शुरू हुआ भारत का कुल मछली उत्पादन 2021 से 22 में रिकॉर्ड 162.48 लाख टन प्रति वर्ष तक पहुंच गया है। भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी के साथ तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है।
1: कि देश हमारा मछली पालन के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ रहा है, कैसे किसान भाई इस क्षेत्र से जुड़कर भी अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, चलिए कार्यक्रम की तरफ वापस रुख करते हैं और जानते हैं रोहित जी की तालाब में मछली पालन के नई तकनीकों के बारे में।
2: रोहित जी करीब 40 एकड़ में मछली पालन कर रहे हैं, जिसमें इनका हर तालाब करीब 1 एकड़ का है। उनके तालाब में मछलियां महज 5 से 6 माह में ही तैयार हो जाती हैं, क्योंकि सही विकास के लिए वो हेचरी से मछलियों का बीज लेते हैं। इसके बाद उन्हें 1 साल तक पॉन्ड में रखते हैं, और जब इन मछलियों के वजन करीब 100 ग्राम तक हो जाते हैं तो इन्हें मुख्य तालाब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां से मछलियां 6 माह में 1 से 1.5 किलो वजन ले लेती हैं, और यही वो समय होता है जब ये बाजार भेजने के लिए तैयार है। लेकिन इन सारी प्रक्रिया के बीच इनके आहार का खास ख्याल रखा जाता है, साथ ही उन सारे पहलुओं को अपनाया जाता है जिससे मछलियों में बीमारी ना फैले।
0: इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं आता है, आर्गुलस का कभी कभी प्रॉब्लम, हाई डेंसिटी स्टॉकिंग करते हैं तब आता है प्रॉब्लम, है तो फिशरीज वाला थोड़ा मदद करते हैं। 6-8 महीने में वो एक मार्केटेबल साइज हो जाता है, साइज 1 किलो 1.5 किलो तक हो जाता है, और मार्केट 150 केजी पर

0: Gracias.
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि झींगा पालन को लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मछली पालकों को ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे उनका उत्पादन भी बढ़ेगा और उनकी आय भी बढ़ेगी।
2: रोहित जी मछली पालन के साथ साथ झींगा पालन भी करते हैं। हालांकि झींगों के लिए उन्होंने अलग से तालाब बनवाए हैं। करीब 5 हेक्टेयर के एरिया में झींगे पल रहे हैं, जिसमें एक एक हेक्टेयर का एक तालाब है। वो बताते हैं कि झींगा पालन के लिए उन्होंने जमीन लीज पर ली है, क्योंकि जिन तालाब में मछली पालन किया जा रहा है वहाँ झींगे नहीं पाले जा रहे। रोहित इसके पीछे रख रखाव के तरीकों में अंतर को वजह बताते हैं। उनके तालाब में टाइगर प्रजाति की झींगों को पाला जा रहा है, जिनकी बाजार में अच्छी मांग है।
3: जिला कलेक्टर 5 हेक्टर मेरे को जमीन लीज पे दिया हुआ है 20 साल के लिए। उसमें हम झींगा उच्छेद की प्रवृत्ति कर रहे हैं।
4: रोहित भाई के फार्म पे झींगा फार्मिंग चलता है। इधर टाइगर झींगा है, उसका प्रोसेसिंग 4 महीने जितना है, 4 महीने में पाकर तैयार हो जाता है, बाद में हार्वेस्टिंग होता है। इधर में 10 तालाब है। एक तालाब 100 मीटर बाई 100 मीटर का है। एक तालाब में कम से कम 6 एरेटर लगा हुआ है। वो पूरा पानी का सर्कुलेशन करता है, बाद में खुराक डालने का पहले सेंटर में जो कचरा जमा होता है उसको पंप से निकाल देते हैं, बाद में खुराक डालते हैं। ऐसा करके 4 महीने का प्रोसेस है झींगा फार्मिंग का। तो युवा लोग के लिए बहुत अच्छा है, इनकम के लिए ये सारा ये बिजनेस बहुत अच्छा है झींगा फार्मिंग का।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और झींगा पालन को लेकर कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में जान लेते हैं।
2: हमारे देश में इसे शुरू करने के लिए स्थान का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होता है। हालांकि हमारे देश में तटीय इलाकों और तालाबों में इनका पालन आसानी से किया जा सकता है, लेकिन तकनीकों की सहायता से अब किसान इसे खेतों में भी कर सकते हैं। विशेषज्ञ की माने तो एक बार के पालन में 3 से 4 लाख प्रति हेक्टेयर का मुनाफा कमाया जा सकता है। झींगों को भोजन के रूप में 80% शाकाहारी और 20% मांसाहारी भोजन देना फायदेमंद होता है।
3: झींगा कल्चर में उसको 4 टाइम खाना देना पड़ता है और 4 टाइम उसका चैप्टर देखना पड़ता है। और फार्म में कोई एंटर करेगा तो उसको KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट से बात लेना पड़ता है।
2: इसे छोटे पैमाने पर शुरू करने के लिए सबसे पहले तालाब की नर्सरी तैयार करनी होती है। इसके लिए तालाब का पूरा पानी निकालकर उसको अच्छी तरह से सुखा ले। इसके बाद एक जुताई कर तालाब में 1 मीटर की गहराई तक पानी भरे। इसके बाद नर्सरी में लगभग 20,000 बीज डालें। हालांकि इनका संचयन मुख्य रूप से अप्रैल जुलाई माह में ठीक रहता है। साथ ही इस समय भोजन के रूप में सूजी, मैदा व अंडा को

0: एक साथ मिलाकर दें। इस तरह बीज से निकलने वाले लार्वों को करीब 45 दिनों तक रहने दें। इस दौरान ये लार्वा शिशु झींगों में बदल जाते हैं और इस समय इनका वजन करीब 3 से 4 ग्राम तक का हो जाता है। बस यही वो समय होता है जब इन शिशु झींगों को मुख्य तालाब में छोड़ा जा सकता है। इस दौरान किसान या पशुपालक चाहे तो झींगों के साथ देसी मछली पालन भी कर सकते हैं।
1: एक हेक्टर बनाने के लिए 1.5 लाख तक खर्चा, वो बनाने का खर्चा हो जाता है। उसके बाद आउटलेट, इनलेट और एरेटर का ऐसा 3-3.5 लाख तक का एक तालाब बनाने में खर्चा लग जाता है। और हम लोग, हमारा खाड़ी खनाई क्रिक पड़ता है, इधर सिचुएशन के हिसाब से हमको फरवरी में स्टॉक करना पड़ता है और बारिश आएगा उसके बाद हम लोग हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो 4 महीने का हार्वेस्टिंग कल्चर है, उसमें एरेटर, लेबर और फीड सीड का ये सब खर्चा मिलके 20% तक मिल जाता है।
2: दोस्तों, मछली पालन हो या झींगा पालन हो, तालाब में ऑक्सीजन का लेवल बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं रोहित जी से कि मछली पालन के और झींगा पालन के इस क्षेत्र में उन्होंने अपने तालाबों में ऑक्सीजन का लेवल कैसे मेंटेन किया है और बाकी किसानों के लिए वो क्या कुछ सलाह दे रहे हैं। अगर आप भी मछली पालन करना चाहते हैं तो इस चीज पर आपको बहुत बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है।
0: स्थित इन तालाबों के किनारे आप जो मशीनें देख रहे हैं, इन्हें एरिएटर कहते हैं। ये तालाब में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं। आमतौर पर एरिएटर को समय समय पर चलाते रहना चाहिए, लेकिन अगर आसमान में बादल छाने पर तालाब में जाकर देखें कि मछलियां पानी से बाहर मुंह तो नहीं निकाल रही, अगर ऐसा है तो ये पानी में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण है। ऐसे में तालाब में ऊंचाई से पानी गिराएं या ऑक्सीजन एरिएटर दिन में 2 से 3 बार चलाएं। इसका एक और फायदा है कि अगर तालाब में गंदगी एकत्रित हो गई है तो एरिएटर की सहायता से उसे आसानी से निकाला जा सकता है। इसके साथ ही मछली पालकों को चाहिए कि तालाब में जल स्तर को बनाए रखें, जिससे मछलियों को तैरने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके।
1: ट्रैक्टर देखने के बाद हम लोग एरेटर चलाते हैं, ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करने के लिए एरेटर चलाते हैं। 4 टाइम फीड डालते हैं और उसके बाद वो कितना कंज्यूम हो गया वो देखने के बाद फिर एरेटर चलाते हैं। एरेटर घूमता है तो उसका स्लज सेंटर एरिया में जमा हो जाता है, वो हम स्लज पंप से फिर बाहर निकालते हैं।
2: दोस्तों, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कैसे एक सफल मछली पालक मछली पालन क्षेत्र से जुड़कर कितना मुनाफा कमा सकता है और रोहित जी सालाना कितना मुनाफा कमा रहे हैं। आप बने रहें।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मछली पालन में अपार संभावनाएं हैं, अच्छा खासा मुनाफा किसान भाई से कमा सकते हैं। आइए अब जानते हैं रोहित जी के सालाना मुनाफे के गणित के बारे में।

0: इतने बड़े पैमाने पर मछली व झींगा पालन करने के लिए रोहित जी ने कई लोगों को काम पर रखा है, जो तालाब में आहार डालने से लेकर इन्हें बाजार भेजने तक की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। रोहित बताते हैं कि उनके यहाँ तैयार मछलियाँ बाजार में करीब 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची जाती हैं। एक तालाब से उन्हें 2 से 2.5 क्विंटल तक उत्पादन मिल जाते हैं। इसके अलावा झींगा पालन से भी बढ़िया आय हो जाती है। सालाना आय को देखा जाए तो रोहित जी की आय करीब 1.5 करोड़ जाती है। माल बेचने के लिए भी रोहित को मशक्कत नहीं करनी पड़ती। उनका माल सप्लायर के माध्यम से एक्सपोर्ट किया जाता है।
1: मार्केट तो एक्सपोर्ट क्वालिटी है, इसलिए एक्सपोर्टर को ही देना पड़ता है। हम लोग फार्मर है, इसलिए कल्चर करके उसको सप्लायर को देते हैं, सप्लायर फिर एक्सपोर्टर को देते हैं। गत साल हम लोग हार्वेस्टिंग किया था, उस टाइम 460 का रेट मिला था। हाँ, उसमें थोड़ा प्रॉफिट 50% तक रहता है, और एक टन में 3 टन तक, 3-4 टन ऐसा प्रोडक्शन निकलता है, और 150 रेट पर केजी मिलता है। और दूसरा हमारा फार्म है फ्रेश वाटर का, यहाँ हम फिश का कल्चर करते हैं, और उसके लिए जो छोटा बच्चा है वो हम हेचरी से लेके आते हैं, और उसको पहले 1 साल तक एक पॉन्ड में रखता है, और 100 ग्राम का हो जाएगा उसके बाद उसको कल्चर पॉन्ड में ट्रांसफर करते हैं। वहाँ 6 महीना तक उसको फीडिंग कराना पड़ता है, और पानी का लेवल मेंटेन करना पड़ता है, तो 6 महीने में वो 1 किलो तक हो जाता है। हमारे पास अभी 40 पॉन्ड है, लेकिन 20 पॉन्ड में ही हम लोग कल्चर कर पाते हैं, क्योंकि पूरा साल हमारे पास पानी का दूसरा कोई सोर्स नहीं है, कैनाल वाटर का फैसिलिटी नहीं है, बोर में थोड़ा सलाइन वाटर है, इसलिए बारिश का पानी से ही हम लोग फ्रेश वाटर फिशरी मछली पालन कर रहे हैं। और बनाने का तो खर्चा 1.5 लाख तक हो जाता है एक पॉन्ड बनाने में, और उसमें इनलेट आउटलेट और फीस का सीड और फीड लेबर सब मिला के इतना 50% तक रह जाता है, तो एक तालाब में 3-3.5 लाख 4 लाख तक का प्रोडक्शन होता है।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें। आइए दोस्तों, आज की टैलेंट, आज की प्रतिभा, आज की सिंगर, बहुत मजा आने वाला है उनसे बातचीत करके, उनसे कुछ सीख के और उनके संगीत का लुत्फ उठा के। हमारे साथ हैं चित्रा मैडम। बाकी मैं बहुत ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं हूं, आई एम नॉट अ पोजिशन टू यू नो डिस्क्राइब हर, तो मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा। चित्रा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज हमारे सारे सुनने वालों को आप ही बताओ, कौन हो आप, कहाँ हो आप, क्या करते हो आप?
1: थैंक यू सो मच सविर जी, आई एम सो

0: excited ki I will be on this show. Well, to know me, yes, as you said, I'm Chitra. Main ek educator hoon school mein and I'm also a co-curricular coordinator. So I deal with children and I'm in the profession that involves being with very young minds. So I believe that keeps me very, I would say very young at heart. And so that I am in Bangalore. संगीत की तरफ से देखा जाए तो आई हैव लर्न क्लासिकल फॉर ओवर 8 इयर्स लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी में देर वॉज अ पॉज एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड टू टेक इट ऑन विद अ लिटिल मोर इंटरेस्ट एंड विद गिविंग इट अ लिटिल मोर टाइम एंड सो दैट्स व्हाट हैज ब्रॉट मी हियर.
1: वाओ, थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू सो वेरी मच चित्रा जी. दोस्तों, आपको मालूम है एक चीज मेरे को सुनाई दी जो चित्रा जी ने अपने परिचय में बताई कि वो एजुकेटर हैं और साथ साथ ही कैरिकुलम एक्टिविटी डिफरेंट कैरिकुलम एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर भी हैं. आई परफेक्टली अंडरस्टैंड जो कैरिकुलर एक्टिविटीज होती हैं स्टूडेंट्स की वो होती है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग जो कि हर टीचर का एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ठीक है, बहुत हार्ड स्किल्स सिखाते रहते हैं. चलिए इससे पहले कि हम लोग चित्रा मैम को और थोड़ा सा परेशान करें उनके बारे में बताने के लिए कुछ सवाल पूछें, एक बार रुकते हैं थोड़ा सा उनका म्यूजिक का मजा ले लें और फिर आगे बढ़े. लीजिए, पेश करता हूं ये गीत जो चित्रा मैम ने खास हमारे लिए बनाए.

0: स्कूल रिलेटेड, इन टर्म्स ऑफ हमारा जो सब्जेक्ट है उस रिलेटेड, तो डेफिनेटली वी आर ऑलवेज यू नो रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग. आई थिंक वी लर्न मोर देन व्हाट वी टीच ऑन अ डेली बेसिस. लेकिन बियॉन्ड दैट ऑल्सो definitely for everybody, I think reading is something that is definitely say does a lot to your thinking.
1: Right ma'am. So this is extremely important and ये जो question मेरे दिमाग में आया दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है, गलत ना समझिएगा, मैं किसी इंजीनियर से इंजीनियरिंग की ही बात तो करूंगा, किसी टीचर से टीचिंग की ही बात तो करूंगा, और टीचर्स आर इन द बिजनेस ऑफ बुक्स. सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या आज की डेट में एजुकेटर्स बुक्स पढ़ रहे हैं. चलिए इसी बात में विचार कीजिए, हाउ मेनी, बहुत बहुत सारे एजुकेटर्स हमारे इस प्रोग्राम को भी सुन रहे हैं. जस्ट थिंक अबाउट इट. इन द मीनवाइल चित्रा मैम के गाए हुए ये दो बहुत ही प्यारे प्यारे से गीत हम सुने और इसके बाद हम वापस आते हैं.

0: बहुत खूब। ये तो बात हो गई चित्रा मैम आपके प्रोफेशनल लाइफ की, अब आपकी म्यूजिक की बात कर लेते हैं। आपने बताया था कि अभी 7 इयर्स और 8 इयर्स यू हैड गॉन थ्रू अ प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ म्यूजिक, एम आई राइट मैम?
1: करेक्ट।
0: ओके, तो क्लासिकल म्यूजिक भी आपने सीखा अच्छी तरीके से, तो यू नो इन एंड आउट ऑफ द म्यूजिक, बट हम बहुत सिंपल लोग हैं मैम जो आपकी म्यूजिक को सुन रहे हैं, गीतों को सुन रहे हैं, सो आई जस्ट लाइक टू नो हु इज योर फेवरेट सिंगर्स, मतलब दो सिंगर्स की बात कर सकते हैं, एक फीमेल एक मेल, एंड व्हाई आर दे योर फेवरेट?
1: ओके, आपने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट लाइक टू से, आपने कहा यू नो 8 इयर्स इनटू द फील्ड आपने मैंने सीखा है, तो आई मस्ट बी एन एक्सपर्ट? नॉट एट ऑल। आई थिंक संगीत एक ऐसा ओशन है, यू कैन नेवर एवर बी एन एक्सपर्ट इन इट, देर इज स्टिल सो मच मोर टू लर्न, यू नो, सो एवरी आई एम स्टिल लर्निंग विथ एवरी सॉन्ग आई सिंग। लेकिन यस, डेफिनेटली नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट माई फेवरेट सिंगर्स, I think I can divide it into two eras. Maybe I have grown up jaise listening to papa bahut gana sunte the, old gaane, to usme if I see, I think definitely Asha ji is my real you know inspiration in terms of her versatility, mujhe wo bahut bahut pasand hai. And I think if it comes coming to male singers, it's definitely Sonu Nigam. He's Sonu Nigam and KK to some extent, definitely. Wow. They are my favorites.
0: Okay. That is very interesting. दोस्तों, time and again बहुत बहुत सारे singers, और ठीक है उनकी बात गलत भी नहीं है, these are some paragons in the field of music. आशा जी की बात हो गई, लेकिन I'm really surprised, happily surprised, and I'm really really very happy to listen कि सोनू निगम के बारे में बताया मैम ने और KK के बारे में बताया, am I right मैम?
1: Absolutely.
0: Wow, that is so beautiful. चलिए, हम लोगों को लगता रहा कि बस म्यूजिक की दुनिया खत्म हो गई मोहम्मद रफी किशोर कुमार मन्ना डे मुकेश तलत महमूद के साथ, बट नहीं हैं, अभी भी सिंगर्स अच्छे हैं, सोनू निगम ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स KK, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। चलिए दोस्तों, विचार कीजिए आपके फेवरेट सिंगर्स कौन है, थोड़ा सा ऊपर उठिए रफी साहब से किशोर कुमार साहब से, और भी बच्चे और भी अच्छे सिंगर्स हमारे चारों तरफ हैं, थोड़ा सा हम आंखें नहीं कान खोलकर उन्हें सुने तो शायद हमें मिल जाएंगे। आइए तब तक इन गीतों का आनंद लें जो मैम ने हमारे लिए तैयार किए, ब्यूटीफुल।

0: बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटीफुल मैम, अमेजिंगली ब्यूटीफुल सिंगिंग. आगे बढ़ते हुए, प्लेजर इज आर्स, प्लेजर इज आर्स. इस म्यूजिक को एंजॉय करना हर शाम को, और उसके बाद बहुत पीसफुल नींद. सचमुच वी आर ब्लेस्ड कि इतने सुंदर गाने हमें सुनने को मिलते हैं. राइट मैम, चलिए थोड़ा सा आपको और समझते हैं, थोड़ा सा और अपने बारे में बताइए. आपके म्यूजिक के बारे में बात हो गई, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात हो गई. म्यूजिक के अलावा, म्यूजिक को एक सेकंड के लिए, वो तो है ही है, वो तो ऑन टॉप है, पैशन है. उसके अलावा मैम, आपका मी टाइम क्या है? आई अंडरस्टैंड आप दिन भर बहुत बिजी रहती होंगी, कॉलेज भी, स्कूल भी, चिल्ड्रन, देन योर म्यूजिक, देन घर के भी सारे काम. कुछ तो वक्त निकालती होंगी ना आप, जब आप अपना मी टाइम, आजकल की जो लैंग्वेज में कहा जाता है मी टाइम, व्हाट इज योर मी टाइम?
1: समीर जी, मेरा मी टाइम, आई लाइक पेंटिंग, सो दैट इज समथिंग आई आई डू क्वाइट ऑफन. एक्चुअली मैंने मेरा जो ग्रेजुएशन है सर, जेजे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट से किया है, जो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट है मुंबई से, सो आई एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट. सो दैट इज समथिंग आई ट्राई टू कीप गोइंग. आई कंटिन्यू टू पेंट व्हेन आई एम नॉट यू नो डूइंग एनीथिंग एल्स. उसके अलावा मुझे फिल्में देखना पसंद है.
0: Wow.
1: मुझे सीरीज, सीरियल देखना पसंद है. सो एंड थैंकफुली आजकल वी आर इन अ सिचुएशन कि हम पूरा नहीं देख सकते, तो कोई बात नहीं, कुछ देर देख के हम रोक के अगला दिन फिर उसको कंप्लीट कर सकते हैं. सो आई हैव टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट, आई डू वॉच मूवीज.
0: वाओ, ब्यूटीफुल. देखो मैम, पेंटिंग के बारे में तो मेरा हाथ थोड़ा टाइट है, तो इसलिए बहुत ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता. लेकिन वेयर इज द क्वेश्चन लाइज ऑफ मूवीज, आई ऑल्सो लव वॉचिंग मूवीज, दो ऑफ कोर्स आई ट्राई माई सेल्फ टू बी अरेंज्ड अकॉर्डिंगली सो दैट आई कैन वॉच वन और टू मूवीज इन इन टू टू थ्री डेज. फिर भी किस तरह के कि इरा की मूवीज की बात कर रहे हैं जो आपको बहुत पसंद है?
1: देखा जाए तो ब्लैक एंड व्हाइट ऑल्सो मैं देखती हूँ, देन मिड 90s, 70s, 90s के भी देखती हूँ. इनफैक्ट आजकल OTT के आने के बाद हम तो वी कैन इवन गो टू अदर कंट्रीज, मूवीज मेड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वो भी देखते हैं. You know, even and I even like after the recent movies which are made in India, I like watching Malayalam movies. I like watching so many. I mean, har ek region ke movies. So I would any movie that has a good storyline that keeps me gripped, I am okay to watch it. Aisa nahi aur all. As I said again, aaj hum aise zamane mein hai ki subtitles bhi hai, to. And I think it's all, when it comes to movies, agar emotions depict barabar kiya jata hai, if you are able to translate that to the audience, so I think that is a great thing. So I am not specific about anything, but I like movies from everywhere.
0: Can I possibly ask you, ma'am, to be slightly more specific, kisi favorite movie ka naam le sakenge aap?
1: Favorite movie, it's a little difficult to recollect. I would say many recently actually I watched Drishyam 3, and the reason I watched Drishyam 3 was kyunki mujhe 1 and 2 itna pasand aaya that I wanted to go for the third one very I really wanted to see it so badly. So I think that was Drishyam 1 was definitely one of the good movies that I came across. Agar purane zamane ke movies dekha jaye to I loved watching movies like Jaane Bhi Do Yaaro.
0: Wow.
1: It was hilarious. So these are the movies that actually keep you light-hearted at the end of the day. Movies like Jaane Bhi Do Yaaro. I think maybe those, if I just sit back and recollect, maybe a few more I can. But I think at the moment, these come to my mind.
0: You are so right. You are so very right. Ma'am, Jaane Bhi Do Yaaro is one movie which was made with lot of intelligentsia, humorous, बहुत ही appropriate humor था उसके अंदर, और बहुत intelligent mission के साथ उस movie को बनाया गया था. अगर दोस्तों

ने देखी हो याद हो दोस्तों, चलिए याद कीजिए। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट डिफरेंट कलर्स ऑफ चित्रा जी, उनके कैरेक्टर का, उनकी शख्सियत की डिफरेंट एस्पेक्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हुए अभी तो चित्रा जी के इन गानों का मजा लें एंड देन विल कम बैक।

0: बहुत खूब।
1: चित्रा जी, अपने किसी बहुत ही अच्छे से दोस्त के बारे में बताइए। मैं मानता हूं बहुत सारे होंगे और आप कहेंगी कि मैं एक का नाम लूंगी तो बाकी नाराज हो जाएंगे। तो मैं सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि दोस्तों अपनी फ्रेंडशिप डिग्री को उस लेवल पर ले जाइए जहां पर चित्रा जी चुपचाप मन में किसी एक को फेवर करने लग जाए। सो हमें बताइए ना, कौन है वो जिन्होंने आपको हमेशा मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, हमेशा आपकी हेल्प करी?
2: थैंक यू वेरी मच फॉर दैट क्वेश्चन समीर जी, लेकिन यू आर राइट, मैं इट्स नॉट अबाउट यू नो बीइंग डिप्लोमेटिक, बट हम हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में देयर हैव बीन पीपल जिससे बहुत क्लोज एसोसिएशन रहा है, विद सच लवली फ्रेंड्स, तो एक का नाम लेना डेफिनेटली इज नॉट राइट। बट आई एम वेरी लकी, आई थिंक वेरी फॉर्चुनेट कि स्कूल लेवल पे हो या कॉलेज लेवल पे हो, एंड इवन नाउ एट वर्क कॉलीग्स हैं, एट सो मेनी अदर म्यूजिक ग्रुप्स दैट आई एम अ पार्ट ऑफ, आई थिंक एवरीवेयर आई हैव बीन वेरी लकी कि इतने मोटिवेटिंग, इतने एनकरेजिंग फ्रेंड्स आई हैव हैड। सो इट इज डेफिनेटली नॉट राइट फॉर मी टू टेक वन पर्सन्स नेम, एंड बट आई एम एक्सट्रीमली, क्योंकि अभी आपने मुझसे ये सवाल पूछा, आई रिकलेक्टेड, आई रिफ्लेक्टेड ऑन द फैक्ट कि मेरे लाइफ में इतने लोग हैं जिनसे यू नो हु हैव बीन सो वंडरफुली एसोसिएटेड, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम फॉर बीइंग देयर।